0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बुधवार 16 सितंबर रेडियो मॉरिशस पर आप सभी का स्वागत हम करते हैं। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। समय हुआ है समाचार का।
2: टाइम चेक, सुबह के 6 बज रहे हैं। 16 सितंबर वेंसडे का दिन, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। दिसंबर 2024 से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने 450 मामलों की कार्रवाई चलाई। इनमें से वर्तमान में 104 मामले अदालत के समक्ष हैं, जबकि 1800 मामलों की जांच अभी भी जारी है। कुछ मौजूदा संवेदनशील मामलों के चलते एफसीसी के जांचकर्ता और निदेशक कुछ समय से सुर्खियों में हैं। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान एफसीसी के निदेशक संजय दाऊधारी ने बताया कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा है। पिछले मार्च महीने में उन्हें एक लिफाफा मिला था जिसमें 2 गोलियां थीं और धमकियों से भरा एक पत्र था। ऐसी स्थिति जांचकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पेंटागन की नई रिपोर्ट शागस समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती है, लेकिन ये जेगो गौसिया के रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती हैं। दस्तावेज में खास उल्लेख है कि ये सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर काम कर रहा है, खासकर ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के संदर्भ में। मॉरिशस, जहां यूके और मॉरिशस के बीच शागस समझौते को लागू करने पर काम किया जा रहा है, वहीं ये नई स्थिति जेगो गौसिया मिलिट्री बेस से जुड़ी सुरक्षा और निगरानी गारंटी पर असर डाल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, ओमान मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर का कहना है कि हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, जिसके बाद 2 नाविक लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 23 अन्यों को बचाया जा सका है। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि पनामा झंडे वाला ये जहाज एक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और वो नवल माइन से टकरा गया था, जिससे उसमें आग लग गई। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है, जो कल गुरुवार 17 सितंबर सुबह 10 बजे तक के लिए बरकरार रखी जाएगी। मस्कारिंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज दिन के दौरान खासकर देश के दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं, रह रहकर हल्की बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ऊंचाई वाली जगहों और सड़कों पर क्रॉसविंड वाली जगहों से गुजरते हुए खास सावधानी बरतने की मांग की जाती है। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर कुछ तटीय इलाकों और लगूनों पर भी पड़ेगा। इससे मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से खास सावधानियां बरतने और इन लगूनों और तटीय इलाकों में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 13 से 15, अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 17 से 20, अधिकतम 30 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:05 पर सूर्योदय, शाम को 6:04 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 बजे मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
4: जी हाँ, नया दिन एक नई शुरुआत ही होती है, एक नया अवसर होता है जीवन को फिर से जीने का। तो चलिए, इस नई शुरुआत के साथ यहाँ पर हम भी आ गए हैं आप सबका साथ देने के लिए। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। सुप्रभात आप सभी को। बुधवार 16 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6:05 होने को है। भोर की बेला ये कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से होती है, जहाँ कहीं से आप सभी श्रोता हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया गया, हर्षोल्लास के साथ जो है सबने भगवान गणेश की आराधना की, और भगवान गणेश की जो कृपा है, जो आशीर्वाद है, वो आप सब पर सदा बनी रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और आज ये नया दिन मिला है, तो चलिए ईश्वर की कृपा से आज का दिन भी बहुत अच्छे से व्यतीत हो आप सभी के लिए, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो और सुख एवं समृद्धि से आपका जीवन हमेशा भरा रहे। तो चलिए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि कुछ क्षणों में हम बढ़ने वाले हैं कार्यक्रम सनातन धारा की ओर, उसके बाद चंद खूबसूरत भावगीत आप सुन पाएंगे, और 6:30 समय होगा पूरा समाचार का। तो चलिए, आज है बुधवार, आज की इस भोर की बेला को हम आरंभ करते हैं सनातन धारा इस कार्यक्रम से, जिसे हम सुनेंगे श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी। तो आइए आचार्य जी को हम सुनते हैं।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय चार पुरुषार्थ। यह विषय जिसे हमने समझाना है बहुत बड़े विस्तार वाला है। अभ्युदय और निश्रेयस भारतीय संस्कृति के दो प्रमुख अंग है। अभ्युदय में प्रपंच के व्यवहारिक सुखों का वैभव का विचार है और निश्रेयस में परमार्थिक सुख और वैभव का दर्शन होता है। ये दोनों सुख और वैभव साथ साथ प्राप्त हों ऐसी आशा आशंका पुरातन समय से भारतीय जीवन पद्धति में की गई है। कठोपनिषद में अभ्युदय को प्रेय और निश्रेयस को श्रेय कहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम भारतीयों का जीवन इन दोनों रंगों से भरा हो ऐसी व्यवस्था योजना स्पष्ट रूप से नजर आती है। इसी योजना या व्यवस्था के अंतर्गत चारों पुरुष

शब्दार्थ की रचना की समझाना चाहिए, रचना को समझाना चाहिए। ये चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से धर्म और मोक्ष का संबंध निःश्रेयस से है और अर्थ एवं काम का संबंध अभ्युदय के साथ है। जो अर्थ पुरुष को प्राप्त करना है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। यहाँ पुरुष शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए हैं। यह बात पुरुष शब्द की उत्पत्ति का विचार किए बिना समझने में नहीं आएगी। पुरीशश्यांत पुरुषः, पुर अर्थात शहर और शहर में रहने वाला हुआ पुरुष। यह नौ द्वार वाला मानव शरीर ही पुर माना गया है, जिसमें रहने वाले जीव आत्मा को पुरुष नाम दिया गया है। अतः स्त्री हो या पुरुष, दोनों में जीव आत्मा या पुरुष रहता है। ऐसा कोई भेद नहीं है कि पुरुष के शरीर में रहने वाले को आत्मा और स्त्री के शरीर में रहने वाले को आत्मी कहेंगे। यदि शब्द और उसके पीछे रहने वाले संकल्पना ठीक से समझ लें तो वे शब्द भारी भरकम नहीं लगते और इसलिए फिर उनका डर भी नहीं लगता। अब अर्थ शब्द को भी समझ लेते हैं। अर्थ शब्द के एक पैसा और दूसरा मतलब, ऐसे दो अर्थ है। आपकी बात का क्या अर्थ है? यह प्रश्नवाचक वाक्य में तीसरा अर्थ नजर आता है। आपकी बात के पीछे आपकी क्या भूमिका है? ऐसा ध्वयर्थ इस प्रश्न में निकलता है, परंतु यह इस लाखों में अर्थ शब्द का अभिप्राय ऊपर बतलाए अर्थात में से कोई भी नहीं है। यह अर्थ शब्द का मतलब है प्राप्त, यह जो अर्जित करने जैसा है और जिसके अर्जित करना चाहिए उसे ही यह अर्थ कहा गया है। वही मनुष्य जन्म का वास्तविक ध्येय है। इस प्रकार चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह शब्द कर्म रचना बड़ी मामिरक या ममस्यपशी है। इसे देखते ही यह ध्यान में आएगा कि अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष के बीच धिरे हुए हैं। यह कर्म निश्चित रूप से हमें कुछ सूचित करता है और अर्थ धर्म की मर्यादा में होना चाहिए और धर्म की मर्यादा में काम मोक्ष की आड़े नहीं आता। ईमानदारी से, लगन से अभ्यास करने वाले संवेदशील साधक को ही यह महसूस होगा। हम सभी संवादशील तो जरूर है, लेकिन उसका उपयोग मान अपमान, यश अपयश जैसे बातों में ही करते हैं। चार पुरुषार्थ की यह रचना आजकल भर भारी कर गिर गई है। इनमें से अर्थ और काम की गुनाडदी इतनी बढ़ गई है कि अर्थ ने धर्म को और काम ने मोक्ष को हमारे जीवन की सीमा से बाहर कर दिया है, जीवन से दरबरर कर दिया है। उनका अगर फिर से हम पुनर्निर्माण कर पाएं तो यह एक बहुत बड़ा काम होगा। आइए अब हम इन चारों संकल्पों

को स्वरूप को समझ लें। धर्म हमें जो अर्थ ज्ञात है उससे धर्म शब्द का मूल अर्थ बहुत अलग है। धर्म शब्द के उच्चारण के साथ ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि संप्रदायों की याद हमें आती है। भारत में धर्म नामक संकल्पना का जिस समय उदय हुआ उस समय ये संप्रदाय मूलत असली तत्व में ही न होने के कारण धर्म शब्द पर हिंदुत्व संप्रदाय को आकार ही थोप दिया गया है। यह जुड़ा हुआ अर्थ यद्यपि अभ्यागत है फिर भी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उसे स्वीकार करने अलावा कोई चारा नहीं है। यदि हम उसे स्वीकार नहीं करते तो हमारे संस्कृति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएंगे। किसी वस्तु के परिवर्तनीय गुण को उसका धर्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बर्फ को लें, ठंडा होना बर्फ का धर्म है। बर्फ ठंडक के बिना रह नहीं सकते। अब इस उदाहरण से मनुष्य का धर्म कौन सा है यह समझना संभव होगा। जिस बात में मनुष्य का धर्म समाया है वही बात अगर वह छोड़ दे तो उसकी मनुष्यता क्या बाकी बच पाएगी। लकड़ी के डंड से बांधे हुए रंगीन डंडों धर्म नहीं होते। इन डंडों के बजाय डंडों पर ही आजकल के धर्म निर्भर रहे हैं। कटहार डंडों का धर्म होने का कारण उन डंडों से एक दूसरे के झंडों को फाड़ना फिर उसे कर्म से आता है। रोटी पैसा दवाएं और बंदूक जब धर्म प्रसार के साधक बनते हैं तब ऐसे धर्म मनुष्य के लिए कलंक बन जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभ।

0: श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा, सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आचार्य सुपाल मिश्रा जी ने। इस कार्यक्रम के लिए आचार्य जी को हम धन्यवाद देते हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: सवेरे के 6:18 यहाँ पर हो चुके हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीईबी वाकवा के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। वाकवा के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक रेमी ओलिये, मौसल मॉफलेरियट, गोपी लेन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर रविवार 20 सितंबर को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच यहाँ पर जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक विज्ञप्ति

0: सीबी की ओर से।
1: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
0: जी हाँ, सवेरे सवेरे अच्छे विचारों से अगर हम अपने दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतता है ना। एक अच्छा विचार हमें बहुत दूर ले जाता है, एक अच्छी सोच हमें हमारे लक्ष्य को तय करने में हमारी सहायता करता है। और कहते हैं ना कि हम जैसा विचार करते हैं हमारा जीवन वैसे ही होता है।

0: जी हाँ, भोर हो चुकी है, सवेरा हो चुका है और नया सवेरा एक नए जीवन के समान होता है। एक नया जीवन जहाँ पर नई आशाएं, नई उम्मीदें, नए सपने होते हैं और हर एक दिन अपने आप में ईश्वर का दिया हुआ वरदान होता है और ईश्वर की अपार कृपा आपके जीवन में हमेशा रहे, ऐसी कामना हम करते हैं।
1: भोर की बेला ताजगी भरी शुरू।

और चले भोर की बेला इस कार्यक्रम में अब इस अगले गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं 6:30 बजे के पूरे समाचार की ओर। मिलेंगे हम आपसे सुबह का नजराना इस प्रोग्राम में, तो ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर साथ देते रहिए। एक बार फिर से आप सभी को शुभ दिन हमारी ओर से, धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाइए, सुबह की ठीक 6:30 बज रही है। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। पेंटागन की नई रिपोर्ट शागस समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती, लेकिन ये जेगोगोसिया के रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती है। स्कूली छात्रों के लिए सार फिर से नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नामक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 2 हफ्तों के लिए ये पायलट स्तर पर होगा, जिसमें मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा की सरकारी और प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों के 200 छात्र शामिल होंगे। अक्टूबर महीने से पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारियों और मालिक वर्ग का योगदान टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इस फंड के अंतर्गत उपलब्ध 11 सुविधाओं में बदलाव लाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, जिसके बाद 2 नाविक लापता बताए जा रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। दिसंबर 2024 से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने 450 मामलों की कार्रवाइयां चलाई हैं। इनमें से वर्तमान में 104 मामले अदालत के समक्ष हैं, जबकि 1800 मामलों की जांच अभी भी जारी है। कुछ मौजूदा संवेदनशील मामलों के चलते FCC के जांचकर्ता और निदेशक कुछ समय से सुर्खियों में हैं। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान FCC के निदेशक संजय दाउधारी ने बताया कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ा है। पिछले मार्च महीने में उन्हें एक लिफाफा मिला था, जिसमें 2 गोलियां थीं और धमकियों से भरा एक पत्र भी था। ऐसी स्थिति जांचकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करते हैं। संजय दाउधारी को सुनते हैं।
2: Et quand vous guettez, il y a une photo de la case depuis là-haut. Un jour, elle s'est même fait des avis contre moi parce qu'il s'est compté drone pour faire les tours contre moi là.
1: पेंटागन की नई रिपोर्ट शागस समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती है, लेकिन ये जेगोगोसिया के रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती है। इस दस्तावेज में खास उल्लेख है कि ये सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब के तौर पर काम कर रहा है, खासकर ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के संदर्भ में। जहां मॉरिशस और UK शागस समझौते को लागू करने पर काम कर रहे हैं, वहीं ये नई स्थिति जेगोगोसिया मिलिट्री बेस से जुड़ी सुरक्षा और निगरानी गारंटी पर असर डाल सकती है।
3: नतीजा साफ है, हिंद महासागर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी के लिए जेगोगोसिया बहुत जरूरी बना हुआ है। पेंटागन के इंस्पेक्टर जनरल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये बेस अमेरिकी नौसेना के लिए समुद्री लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा केंद्र बन गया है। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमलों के बाद वाशिंगटन को अपनी कुछ सप्लाई लाइनों को फिर से व्यवस्थित करना पड़ा और इस ढांचे में जेगोगोसिया का महत्व और बढ़ गया है। हालांकि कानूनी जरिए से इससे मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए समझौते में कोई बदलाव नहीं आता है। मॉरिशस अभी भी शागस पर अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल करेगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम के पास जेगोगोसिया बेस को चलाने के लिए जरूरी अधिकार बने रहेंगे, जिसका इस्तेमाल अमेरिका भी करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट रणनीतिक संदर्भ को बदल देती है। जैसे जैसे संधि को लागू करने पर बातचीत चल रही है, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जेगोगोसिया से जुड़े सुरक्षा, निगरानी और सैन्य पहुंच के मुद्दों पर और भी ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। हालांकि इस चरण में पेंटागन की रिपोर्ट समझौते में किसी बदलाव की मांग नहीं करती। मध्य पूर्व के मौजूदा हालात में अमेरिकी सैन्य अभियानों के जरिए जेगोगोसिया बेस और भी ज्यादा अहम हो गया है।
1: स्कूली छात्रों के लिए जल्द ही एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जो मिलिट्री अनुशासन से प्रेरित होगा। इस साल फिर से नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस नामक ये प्रोग्राम शुरू होगा। इसके तहत 2 हफ्तों के लिए ये पायलट स्तर

0: पर चलाया जाएगा, जिसमें मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा के सरकारी और प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों के 200 छात्र शामिल होंगे। इस प्रोग्राम का मार्गदर्शन सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार ओंग बुन हुई करेंगे, जिनका सैन्य क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। वे अनुशासन, सहनशीलता, सहन शक्ति, दृढ़ता, नियमों के पालन और टीम वर्क जैसे मूल्यों पर बल देंगे। छात्रों के अलावा शिक्षकों को भी जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि 2 हफ्तों के प्रोग्राम के बाद भी वे स्कूल में छात्रों के बीच इन सिद्धांतों को प्रोत्साहित कर सकें। इस पर शैक्षिक सलाहकार रितेश राव पोलिया अपना विचार दे रहे हैं।
1: ये प्रोजेक्ट, जिसको हम नागरिक मूल्य, सिविक वैल्यूज या नागरिक शिक्षा, सिविक एजुकेशन कहते हैं, बहुत अच्छा है हमारे देश और विशेष रूप हमारे स्कूलों बच्चों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों जरूरी है? हमने ये समझना है कि जरूरत है कि आज के समय में मोरल वैल्यूज जो पहले बच्चों को घर पर मिल रहे हैं, अब वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि आज के परिवारों में माता पिता दोनों काम कर रहे हैं और हमें देखा है कि बच्चे के इन संस्कारों को खोने लगे हैं। ये मॉरिशस के संस्कृति के मूल आधारों से जुड़ा है, इसलिए इसका होना महत्वपूर्ण है। वातावरण, स्थिति और उद्देश्य, ये पहले जिस 14 दिनों के एक पायलट प्रोजेक्ट को रूप में शुरू कर रही है, जिसमें हर 100 लड़के और 100 लड़कियां शामिल है। लेकिन इसके हमें ये समझना है कि मदद मिल रही है कि ये प्रोजेक्ट को भविष्य में बदला जा सकते हैं। इसका कारण ये है कि सिंगापुर में सिविक एजुकेशन का प्रोजेक्ट बहुत सफल रही है। सिंगापुर आज दुनिया में अपने डिसिप्लिन, नैतिक मूल्यों और स्कूलों बच्चों को संस्कारों के लिए जाने जाता है।
0: कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उसके डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में भारतीय सरकार की तरफ से समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को नए उपकरणों के इस्तेमाल के लिए तैयार करने के वास्ते प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुरक्षित माहौल में बंदरगाह के अलग अलग कामों की प्रैक्टिस के लिए अगले अक्टूबर महीने से उनके लिए एक सिम्युलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इस ट्रेनिंग का मकसद है उनकी प्रतिभाएं बेहतर करना और उन्हें बंदरगाह सेक्टर में होने वाले बदलावों के लिए तैयार करना। विधिमासी बुरान
2: नू पे अपस्किल नू बन एम्प्लॉयी नू पे ट्रेन नू बन प्रोपर एम्प्लॉयी डायर ल गवर्नमेंट इंडियन इन फे एन डोन ग्रास एन डिमांड डे सा डे डू प्रीमियर मिनिस्टर एन डोन डे सिम्युलेटर।
3: हम अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की मांग पर भारत सरकार ने एक सिम्युलेटर दान में दिया है, जो अक्टूबर महीने में पहुंचेगा। इस सिम्युलेटर की बदौलत हर तरह की बंदरगाह कार्रवाई की जा सकेगी। हम खुद अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे, हम इसमें निवेश करेंगे। डिजिटलाइजेशन के स्तर पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसके माध्यम से गुजरना ही पड़ेगा। उद्देश्य ये है कि जनवरी 2028 में जब उपकरण आएंगे, तब हमने बंदरगाह को पूरी तरह आधुनिक बना दिया है।
2: Nous pe faire autre point conscience qui nous permet l'autre choix. Nous obliger passeport là et moi l'objectif c'est en janvier 28 quand les équipements arrivent, nous modernise le port totalement.
0: याद रहे कि बंदरगाह के लिए नए क्रेन की खरीद के वास्ते कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन ने 7 सितंबर को पोर्ट लुइस में कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए 2.7 बिलियन रुपयों के निवेश की घोषणा की गई है। इस परियोजना के लिए दूसरा चरण भी निर्धारित है, जिसके तहत नए उपकरणों की खरीद की जाएगी और उसका पूरा खर्च भारतीय सरकार वहन करेगी। विधि मासी बोरन
3: पहला चरण 2.7 बिलियन रुपए में पूरा हुआ है। दूसरे चरण में 1 मेगामैक्स, 8 OTG, 8 रिच टैकर और 26 ट्रेलर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। भारतीय सरकार पूरी तरह से दूसरे चरण की फाइनेंसिंग करेगी। अच्छी खबर ये है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है।
0: यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के शोधकर्ताओं ने मॉरिशन समंदर में उतारे गए जहाजों के मलबों पर एक अध्ययन चलाया है। ये बात सामने आई है कि मलबे समय लंबे समय तक पानी में रहने वाले मलबे मछलियों का आश्रय बनते हैं, जबकि नए उतारे गए मजबूत मलबे कोरल्स के विकसित होने के लिए उचित जगह बनते।

हैं। शोधकर्ताओं ने ये भी देखा है कि किस प्रकार इस्तेमाल न किए जा रहे जहाज़ों को समंदर में स्थापित किया जाए ताकि जैव विविधता के संरक्षण में भी प्रयोग में लाए जा सके। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान देना आवश्यक होगा, जैसा कि प्रोफेसर रंजीत बागुली बताते हैं। जो मलबे कम गहराई में हैं और जिनमें पर्याप्त रोशनी है, वे ज्यादा इकोलॉजिकल हैं। हमने देखा है कि जो मलबे हमारे समंदर में लंबे समय से मौजूद हैं, उनकी स्थिति समय के साथ खराब पड़ती जा रही है। ऐसे मलबों में ज्यादा मछलियाँ होती हैं, जबकि जो नए मलबे होते हैं और जिनका ढांचा अभी भी मजबूत है, उनमें ज्यादा कोरल्स पाए जाते हैं। नए मलबों में ज्यादा कोरल्स विकसित होते हैं क्योंकि उनका ढांचा मजबूत होता है, जबकि जो जहाज लंबे अरसे से पानी में हैं, वे मछलियों के रहने के लिए उचित जगह और माहौल बनाते हैं। इनका अध्ययन करने से हमें पता चल पाएगा कि हमें कैसी परिस्थितियां पैदा करनी होंगी जिससे हम ऐसे जहाजों के मलबे समंदर में उतार पाए जिनका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। इससे उनका उचित पुनः इस्तेमाल हो पाएगा। अक्टूबर महीने से पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारियों का योगदान टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में दोगुना होकर मासिक तौर पर 20 रुपए से 40 रुपए होगा। एम्प्लॉयरों के लिए ये कंट्रीब्यूशन 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए होगा, जबकि स्वतंत्र कलाकारों का योगदान 80 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए किया जाएगा। इसके साथ ही इस फंड के अंतर्गत उपलब्ध 11 सुविधाओं में बदलाव लाए जाएंगे, जिसके लिए 14.5 मिलियन रुपयों का बजट निर्धारित किया गया है। ये ग्रांट्स शादी, मृत्यु, शिक्षा, रिटायरमेंट और विदेश में चिकित्सा सहायता जैसे खर्चों के लिए उपलब्ध हैं। सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एक मेंबरशिप कार्ड और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू करेगा। शैली नियबन की रिपोर्ट। ये बदलाव सिर्फ योगदान यानी कंट्रीब्यूशन तक ही सीमित नहीं है। बढ़ाई गई सुविधाओं में शादी के लिए दिए जाने वाले ग्रांट को बढ़ाकर 7,000, मृत्यु पर मिलने वाली वित्तीय सहायता 15,000 और मृतक के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली सहायता राशि 10,000 रुपए हो गई है। छात्रवृत्ति ग्रांट 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए हो गया है, जबकि शिक्षा के लिए मिलने वाला ग्रांट एससी के लिए 7,500 और एचएससी के लिए 15,000 रुपए हो गया है। रिटायरमेंट ग्रांट दुगुना होकर 15,000 रुपए हो गया है और विदेश में इलाज के लिए विशेष मेडिकल सहायता 50,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए हो गई है। पेरेंटल गिफ्ट यानी माता पिता के लिए मिलने वाला तोहफा ऐसी सुविधा है जिसके लाभार्थियों की अनुमानित संख्या सबसे ज्यादा यानी 600 लोग हैं। इसकी तुलना में शादी के लिए ग्रांट के लाभार्थी 450 और रिटायरमेंट ग्रांट के लाभार्थी 200 हैं। कुल मिलाकर इन 11 सुविधाओं पर 14.5 मिलियन रुपए का खर्च आता है। टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एक ऐसा कार्ड भी लॉन्च कर रहा है जिससे कुछ खास पर्यटन स्थलों और होटलों में खास दरों यानी प्रेफरेंशियल रेट्स का फायदा मिल सकेगा। साथ ही सदस्यों को जानकारी देने और उनके आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप भी लाया जा रहा है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ओमान मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर का कहना है कि हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, जिसके बाद दो नाविक लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 23 अन्यों को बचाया जा सका है। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि पनामा के झंडे वाला ये जहाज एक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और वो नेवल माइंस से टकरा गया था, जिससे उसमें आग लग गई। आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है, जो कल गुरुवार 17 सितंबर सुबह 10 बजे तक के लिए बरकरार रहेगी। मास्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज दिन के दौरान खासकर देश के पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर

घिरे रह सकते हैं, रह रहकर बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। इनका असर कुछ लगूनों और तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। इससे समुद्री गतिविधियों में संलग्न ऑपरेटरों और मछुआरों तथा आम जनता से मांग की जाती है कि इन लगूनों और तटीय इलाकों में भी न जाएं। तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 13 से 15, अधिकतम 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 17 से 20, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:05 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:04 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पेंटागन की नई रिपोर्ट सागर समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती, लेकिन ये जेगो गार्सिया के रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती है। स्कूली छात्रों के लिए इस साल फिर से नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नामक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। माध्यमिक स्कूलों के 200 छात्र इसमें शामिल होंगे। अक्टूबर महीने से पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारियों और मालिक वर्ग का योगदान टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में बढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, इसके बाद दो नाविक लापता। देश विदेश की खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फैजान हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। प्लाटो रोड गुडलैंड्स में 79 साल की 79 years old श्रीमती कुलमती बदाय, पैदाशी नाम आलगू, जो बर की मामा बदाय नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और हमारी सहयोगी निर्मला की माँ थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके बेटे श्री विदेश बदाय के मकान प्लाटो रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे आफ्टरनून। तागो लेन एस्पेरेंस कॉटिये मिलिते अमे 40 साल की 40 years old श्रीमती वरुणा बर्ना, पैदाशी नाम रघुनंदन, जो वरुणा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके ससुर श्री सूरज बर्ना के मकान तागोलेन एस्पेरेंस कॉटिये मिलिते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्देमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड थ्रियोले में 64 साल के 64 years old श्री अभिदानंद पारला की जो राजेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता पारलाकी के मकान महात्मा गांधी रोड थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12 PM। मॉर्निंग ग्लोरी लेन बेलवी मोरल में 83 साल की 83 years old श्रीमती लीलावती बिहारी, पैदाशी नाम बख्तवर, जो बलफाम नीनेत नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे मकान मॉर्निंग ग्लोरी लेन बेलवी मोगल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। ऑचर्गियम गली बोवालो में 76 साल की 76 years old श्रीमती देवीवंती बलोराम, जो सोनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे के मकान ओशोयम गली बोवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो में बाकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM। डॉक्टर बेनेडिक रोड लेस्पेरेंस पीतो में 78 साल के 78 years old श्री प्रेमदत्त चरण, जो प्रभु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह नौ बजे इनके बेटे श्री कवि चरण के मकान डॉक्टर बेनेडिक रोड लेस्पेरेंस पीतो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 9 AM। महाराणा प्रताप रोड पे चिराफे में 90 साल की 90 years old श्रीमती जसमत सिंचन, पैदाशी नाम बिशेसर, जो जयंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान महाराणा प्रताप रोड पे चिरा फसी उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। प्रिंसेस मार्गरेट लेन पेचित रिवियामे, प्रिंसेस मार्गरेट लेन पेचित रिवियामे 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड। श्रीमती बिदौती शांतो, श्रीमती बिदौती शांतो जो शांति भगमर नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन की 10:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन की 10:30 बजे इनके बेटे श्री किशन लाल भगमर के मकान प्रिंसेस मार्गरेट लेन पेजी त्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैंपिया बॉम्बो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू 10:30 AM। इबिस्कुस रोड लागोलेट में, इबिस्कुस रोड लागोलेट में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री बीकू इसराम, श्री बीकू इसराम जो गौसो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री जोशन इसराम के मकान इबिस्कुस रोड लागोलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे at 11 AM। क्रिमिशन रोड कांतोरेल में, क्रिमिशन रोड कांतोरेल में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड श्री धनपत गनोरी, श्री धनपत गनोरी जो दीपलाल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री सत्येंद्र गनोरी के मकान क्रिमिशन रोड कांतोरेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांतोरेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 11 AM। शैनफील्ड रोड रिविया जोंपा में, शैनफील्ड रोड रिविया जोंपा में 93 साल के 93 ईयर्स ओल्ड श्री रामचंद्र जोय, श्री रामचंद्र जोय जो जोय चेकमैन से अंति नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 3:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती कल्याणी जॉय के मकान शैनफील्ड रोड रिविया जोंपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। बंते अवाकुआ में, बंते अवाकुआ में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की कुमारी रूमिला राम, कुमारी रूमिला राम जो बरोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके भतीजे श्री भवेश राम के मकान बंती अवाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमरावती आदोंकली, श्रीमती अमरावती आदोंकली पैदाशी नाम गजाधर जो शीला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 10:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन की 10:30 बजे लशा पेलौदों तिलियन सन्स रॉयल रोड बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10:30 AM। रॉयल रोड बॉशेरी में, रॉयल रोड बॉशेरी में

0: 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड श्री अजय देव सिंह गोपाला, श्री अजय देव सिंह गोपाला जो अजय नाम से ज़रा जाने जाते थे और बॉशेई चाय कारखाने के पूर्व सरदार थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान रॉयल रोड बॉशेई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। परमिशन टू डे आफ्टरनून कादियाबा वाले इन लिस्कालिये में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की कुमारी चंद्रावती प्रेमचंद, श्रीमती चंद्रानी प्रेमचंद जो प्रतिमा नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे इनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे इनकी माँ श्रीमती दमयंती प्रेमचंद के मकान कादियाबा वाले इन लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आर्सेनल और लिवरपूल कराबाओ लीग कप के अगले राउंड में पहुंचे, दोनों की जीत हुई। लिवरपूल में अनुभवी खिलाड़ियों का शो रहा तो आर्सेनल में युवा सेंसेशन डोमन का जलवा। इप्सविच 2 आर्सेनल 4, युवा स्टार खिलाड़ी मैक्स डोमन 2 गोल स्कोर कर पाया। इस सीजन यह उसका पहला मैच था, केवल 16 साल का है पर मैदान में पटाखा आई कैचिंग परफॉर्मेंस। बाकी 2 गोल माडुएके और मेरिनो के नाम। आर्सेनल की तरह लिवरपूल भी चौथे राउंड में पहुंचा टोटनहम हॉटस्पर को 3-1 से हराकर। यहां मंजे हुए अनुभवी खिलाड़ियों का मैच रहा। 3 लाजवाब गोल, पहला अलेक्सी मैकअलिस्टर का, फिर कोडी गाकपो का गोल रहा। उसके बाद टोटनहम हॉटस्पर के लिए इस सीजन का पहला गोल ये स्कोर किया कोनो गलागर ने। इसके बाद गोलकीपर मामोदाशविली के सुंदर सेव पर लिवरपूल बचा। मामोश का खतरा था पर मैच के स्टॉपेज टाइम में जोबोस्लाई का टिपिकल मार्की शॉट अला जेरार। लिवरपूल 3 टोटनहम हॉटस्पर 1। बाकी नतीजे, पीटरबोरो 3 बार्न्सले 3, पेनाल्टी पर पीटरबोरो की टीम क्वालिफाई। वेस्टहैम 2 फुलहैम 3, इप्सविच 2 आर्सेनल 4, लिवरपूल 3 टोटनहम हॉटस्पर 1, रेडिंग 1 ब्रेंटफोर्ड 2। आज कराबाओ लीग कप के मैच एवर्टन वुल्व्स, फ्लीटवुड टाउन, शेफील्ड यूनाइटेड, कोवेंट्री सिटी, एस्टन विला और 11 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन। इसके बाद ड्रॉ निकाले जाएंगे चौथे राउंड के लिए। स्पेन के ला लीगा में रायो वालेकानो 2 स्पैनियल 1, अलावे 0 वेलेंसिया 1। रियल मैड्रिड को जमीन आसमान 1 करना पड़ा एल्चे को हराने में। 3-2 से जीत हुई रियल मैड्रिड की। एक ऑन गोल एम्बापे का एक गोल और कार्लोस एस्पी ने इंजुरी टाइम में रियल मैड्रिड को जीत दिलाई। आज के मैच एटलेटिको मैड्रिड ओसासुना, डिपोर्टिवो सेविला, बार्सिलोना रेसिंग सांतांडर का स्वागत करेगा लेवेंटे एथलेटिक क्लब। कोपा इटालिया में जेनोआ ने सुल टिरोल टीम को हराया। फ्लोरेंटिना 3 पिसा 0। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में फाल्कर्क 2 हार्ट्स 1, हिबेनियन 0 किलमोनोक 1, मदरवेल 0 अबर्डीन 4। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में ब्रिस्टल सिटी 0 लिंकन सिटी 1, मिडल्सब्रो और मिलवॉल के बीच मैच ड्रॉ 2-2। मैनचेस्टर डर्बी गोल विवाद पर बात जारी है, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। रेफरी चीफ हॉवर्ड वेब ने स्वीकार किया कि वह एंजो फर्नांडेज के ऑफसाइड को नहीं देख पाया। वेब ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह अलोन के पोजीशन पर सुपर फोकस्ड हो गया था, एंजो को भूल गया। फिल फोडेन के रेड कार्ड पर वेब ने रेफरी के फैसले को सही कहा और उसी एक्शन में ब्रूनो फर्नांडेज के लात से मारने के पेट्रुट को पेट्रुलेंट कहा। नो एक्सेसिव फोर्स और ब्रुटालिटी, मतलब ज्यादा हिंसक मार नहीं

0: पेटुलेंट मतलब चिड़चिड़ा, बदमिजाज, ये ठीक है, येलो कार्ड भी नहीं मिला, वह सही नहीं है, रेफरी सही है, रेफरी चीफ सही है, सोचने वाली बात है, फुटबॉल में कुछ ऐसा भी होता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का 15 साल का प्रोडिजी जे गैब्रियल, जिसे आने वाले सालों का स्टार खिलाड़ी कहा जाता था, कहा जा रहा है, द रेड डेविल्स को छोड़ना चाहता है। गैब्रियल ने इस फैसले से यूनाइटेड वाले शॉक में हैं। कहा जा रहा है कि गैब्रियल जाना चाहते हैं क्योंकि उसको खेलने का ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। क्रिकेट एक और आसान जीत, भारतीय टी20 टीम के नाम, अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया, केवल 15 ओवर में 7 विकेट से भारतीय टीम की आसान जीत। टॉप स्कोरर रहा संजू सैमसन, 57 रन। भारतीय टीम ये फ्रेंडशिप कप जीतती है जिसे अफगानिस्तान ने ऑर्गेनाइज किया, पर मैच दिल्ली में खेले जा रहे हैं और एक मैच खेलना बाकी है। ब्राजीलियन जिजुत्सु का वर्ल्ड चैंपियन हमारा हमवतन मॉरिशस का अजमल बुजल, कल धूमधाम से उसका स्वागत किया गया, टोक्यो में अजमल बुजल चैंपियन बना था। इसके अलावा मॉरिशस की टीम अपने साथ 3 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल ले पाई, टोटल 13 मेडल, बधाई हो सभी को, खासकर अजमल बुजल को। इधर को साफा अंडर-20 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए हमारे युवा फुटबॉल खिलाड़ी मोजाम्बिक में गए हुए हैं। और अंत में ये अजीब घटना, श्रीलंका के जावलिन वर्ल्ड चैंपियन रुमेश तरंगा के 4 जावलिन हवाई जहाज में टूट गए। डायमंड लीग और वर्ल्ड चैंपियनशिप में चैंपियन बनने के बाद वो कोलंबो लौट रहा था, ट्रांजिट के साथ के दौरान उसके जावलिन टूट गए, जिस जावलिन से उसने अपना रिकॉर्ड बनाया था, मतलब 93 मीटर 62 सेंटीमीटर, वो भी नहीं बचा। श्रीलंका की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ऐलान किया कि सरकार के खर्च पर उसके जावलिन दिए जाएंगे, जावलिन हीरो को नए प्रोफेशनल जावलिन दिए जाएंगे। कहते ना कि टूट बियाँ कि फिनी बियाँ, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, और भला तभी हो जब हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सो अपने स्वास्थ्य को ठीक तरह से देखिए, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
3: बुधवार 16 सितंबर सवेरे के 7:03 रेडियो मॉरिशस पर हमारे सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं। सुप्रभात, सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। यहाँ पर एक बार फिर हम आप सबके साथ जुड़ चुके हैं सुबह का नजराना इस प्रोग्राम को लेकर, आपकी सेवा में अभी से लेकर सवेरे के 9 बजे तक। चलिए, दिन का आरंभ बहुत अच्छे से हुआ है और पूरा दिन बहुत अच्छे से बीते, ऐसी आशा हम करते हैं। ऐसे जहाँ कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार का दिन है और कल छुट्टी का दिन था और आज कामकाज पर हर कोई जा रहे हैं, अपने अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप सभी को हम शुभ दिन कहेंगे। आज का ये दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, और खुशियाँ इतनी जो कभी समाप्त ना हो, और यहाँ पर हमारा और आपका साथ यूँ ही बना रहे। तो चलिए चिंतन से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चिंतन को हम सुनेंगे डॉक्टर जमन की प्रस्तुति में।
4: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
5: नर्क में रहना अच्छा है, परंतु दुष्चरित्रों के घर में रहना अच्छा नहीं है। नरक भोग से पाप नाश होता है, परंतु वह दुष्चरित्र के घर में रहने से बढ़ता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: जी हाँ, ये जीवन है और जीवन के कई रंग होते हैं, जीवन के कई रूप होते हैं, और कभी कभार जीवन के इन रंगों में, इन रूपों में हमें अपने आप को ढालना ही पड़ता है। सवेरे के 7:08 हो चुके हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ सुन लीजिए। सीईबी तमारे के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। तमारे के खासकर इन इलाकों में रहने वाले ग्राहक, मौसलमा कॉलर्स, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 17 सितंबर को सुबह के 8:30 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहां पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, रोजिल के खास कर मौसलमा मुंबई और आसपास के इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक

0: यहाँ पर आपको सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 16 सितंबर को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच, सुबह के 9 से दोपहर के 1 बजे के बीच यहाँ पर भी ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही बेलिया के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, बेलिया के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक, बेलिया के खासकर पिची शेमे, क्लेंजी रोड, रॉयल रोड, एमसीबी के पास शेमे गाराज, यहां पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहां पर कल गुरुवार 17 सितंबर को सुबह के 9 से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ विज्ञप्तियाँ सीईबी की ओर से।
1: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।

कहते हैं प्यार ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है और जीवन के हर शय से हमें प्यार करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। सबके प्रति प्यार करते हुए, सबके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए कभी कभी हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो जितना हम औरों का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, है ना। चलिए, यहाँ पर 7:16 हो रहे हैं और अब बारी है आपको बताने की कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। अभी के लिए यह है सुबह का नजराना, हमेशा की तरह खूबसूरत तराने आपके लिए हम चला रहे हैं। कुछ ही देर में आपके डेडिकेशंस हम शामिल करेंगे जिसके लिए सवेरे से हमें फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे हैं। 4028085 पर आपके फ़ोन कॉल्स और आपके मैसेजेस 5251700005 पर। 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 से हम लेकर आएंगे आ खेल खेले हम, एक छोटा सा क्विज। फिर 8:50 पर आप हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे किरण जानकी जी से। 9 बजे होगा समाचार और 9 बजे के समाचारों के बाद आप आज की चर्चा इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। 10 बजे होगा समाचार, उसके बाद हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी से। दिन की 11 बजे आप सुन पाएंगे समाचार और 11 बजे के समाचारों के बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा। दोपहर के 12 बजे सौंदर्य लाहिरी इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा में वंदना से। 12:30 बजे प्रीति प्रस्तुत करेगी मराठी भाषा में प्रोग्राम। दोपहर के 1 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आरुषी द्वारा। 2:15 बजे गुजराती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे अमिता की प्रस्तुति में। 2:30 बजे से उषा आपका साथ देगी आपकी पसंद इस कार्यक्रम में। 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंदीदा कार्यक्रम जारी रहेगा। दोपहर के 4 बजे आप श्रीमती धर्मिया की प्रस्तुति में सुन पाएंगे मराठी भाषा में कार्यक्रम विविधा। 5 बजे फारे की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे खेती बाड़ी पर आधारित प्रोग्राम। 5:15 बजे से रोशन और उषा आपका साथ देंगे अंताक्षरी इस कार्यक्रम में। 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। 6 बजे के समाचारों के बाद यानी कि 6:30 बजे आप हाका भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे डेविड द्वारा। 7 बजे आप तमिल भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे पुवना की प्रस्तुति में। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी ग्रीषालिनी। 7:50 पर मराठी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे गीत गंगा नितिन बापू द्वारा। 8:10 पर आप रोशनी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे भजली प्रभु का नाम कार्यक्रम। 8:40 पर अविनाश की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम महफिल शब। 9 से 11 बजे के बीच प्रताप आपका साथ देंगे भोजपुरी तड़का इस प्रोग्राम में। 11:00 बजे आप सुन पाएंगे सुनहरे पल इस प्रोग्राम को गिनीशा की प्रस्तुति में। और 12:00 बजे से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की और 7:20 यहाँ पर होने को है। गानों का ये जो कारवा है इसे आगे ले जाते हैं और इस गाने से हम आगे बढ़ते हैं मुकेश साहब और लता जी की आवाज़ों में।

0: ये मौके को हमें कभी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये जो मौके होते हैं, ये जो अवसर होते हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बहुत कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो इन अवसरों का हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सा मौका, कौन सा अवसर, कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारी किस्मत को बदल दे, है ना।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
0: चलिए, सुबह का नजराना ये प्रोग्राम चल रहा है, खूबसूरत गानों के साथ ये कारवां आगे बढ़ रहा है। 7:25 अब बारी है इस अगले एवरग्रीन तराने की।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। यकीनन जीवन में किसी साथी का, किसी हम सफ़र का, अपनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी का ये सफ़र कभी कभार अकेले काटना मुश्किल हो जाता है ना। कोई होता है जिससे हम अपने सुख दुख की बातें कर पाए, कोई हो जिससे हम दिल की हर बात बेझिझक कह पाए, कोई हो जिसे हम अपनी सारी कमियां बताए तभी भी वो हमें कभी किसी बात पर जज ना करे, हम पर संदेह ना करे और आँख मूंद कर हम पर विश्वास करे। अगर ऐसा साथी, ऐसा हम सफ़र, ऐसे दोस्त, ऐसे अपने अगर आपके जीवन में हैं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। ऐसे लोगों को हमेशा, ऐसे अपनों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। और अभी के लिए हमें आपका प्यार मिल रहा है, आपका विश्वास मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। आपका प्यार तो बस सवेरे से यहाँ बरस ही रहा है और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं अभी भी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का ये जो पावन पर्व है, बहुत से लोग भगवान गणेश की प्रतिमा को जो है अगले सप्ताह तक, जो है अगले वीकेंड जो है भगवान गणेश का विसर्जन करेंगे। तो पूजा अर्चनाएं अभी भी चल रही है, बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ पर अभी भी हमें मिल रही है और सभी श्रोता जो जुड़ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो है उन्होंने गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास

के साथ मनाया। और चलिए भगवान गणेश जो है आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे, आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर करे, आपके जीवन से सभी विघ्नों को दूर करे, ऐसी ऐसी प्रार्थना हम करते हैं और आपका साथ यूं ही हमें मिलता रहे।

चलिए यहाँ पर 7:40 और यहाँ से शुरुआत होती है आपके डेडिकेशंस की, और आपके डेडिकेशंस के लिए, आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो सवेरे से हमें यहाँ पर मिल रहे हैं।

चले आज अगर आप या आपके अपने जन्मदिन मना रहे हैं, कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, कोई शादी की सालगिरह है, कोई विशेष तिथि है, पर्व है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी खुशियों में हम भी यहाँ पर शामिल है और हमें अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए यहाँ पर साकुन जी रोजबेल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पुराने गाने जो सवेरे से चल रहे हैं उन्हें बड़े अच्छे लग रहे हैं। अगला गाना इनकी ओर से ईवा और शेन के नाम, सभी जीवन परिवार के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभा जी वाकवा से साथ दे रही है, कहती है कि गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और अभी भी जो है भगवान गणेश की पूजा अर्चनाएँ हो रही हैं, तो वो सबको शुभकामनाएँ दे रही है। गाना जाएगा इनकी बेटियों के नाम, श्रवीना है, अनुषा है, खासकर इनके पति के लिए भी और सभी पूरन परिवार जो हमेशा की तरह आज भी हमें जुड़े हैं हमारे साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। अगला गाना आपकी ओर से हमारे लिए भी। इसके लिए लीला जी बौशेरी से साथ दे रही है, कह रही है कि कल बहुत ही अच्छे से और भक्तिभाव से इन्होंने भगवान गणेश की पूजा की, अर्चना की, फिर उनका विसर्जन किया और उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा। कह रही कि भगवान गणेश ने इनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। तो चलिए बहुत अच्छी बात है लीला जी, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बॉम्बू से जो है लक्ष्मी जी की आवाज़ भी हम तक पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रही कि कल थोड़ी सी थकावट हो गई थी, शाम को ये लोग फ्लिकॉफ्ला गए थे विसर्जन देखने के लिए, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए, और अभी काम पर जाने की तैयारी कर रही है। तो जाते जाते सभी को शुभ दिन कह रही है और ढेर सारी शुभकामनाएँ दे रहे हैं। यहाँ पर एक और मैसेज आया है माला जी की ओर से कटरबोन से, आशा है गणपति बाप्पा आप तथा आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद ज़रूर दिया होगा। बिल्कुल माला जी, भगवान गणेश ने जो है सबको आशीर्वाद दिया है। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत पल वही होते हैं जब जहाँ हम थोड़ा सा रुक कर खुद को सुकून देते हैं। चलिए आपके इस सुंदर मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माला जी। आपको भी हम शुभ दिन कहेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपने अपना नाम नहीं लिखा, देवी जी। ओके देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सवेरे जो गाना चला आपको बहुत अच्छा लगा और आपको भी हम शुभ दिन कहते हैं। ऐसे ही हमारा और आपका साथ बना रहे तो 4028085 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या तो अपने मैसेजेस जो है हम तक पहुंचा सकते हैं 5251705 पर। अभी के लिए खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम।

अजी जन्मों का तो नहीं पता, लेकिन जब भी मौका मिलेगा यहाँ पर हम आपका साथ देने के लिए आ जाएंगे। अभी के लिए 7:47 जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं, आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं एमबीसी रेडियो रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से। चलिए, यहाँ पर पति विजय अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं कल, तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में आपकी पत्नी संगीता की ओर से विजय जी, साथ में आपके बच्चों की ओर से यशवीर है, इश्नेशा है, सभी रीगा परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार, ढेर सारे बेस्ट विशेस विजय जी आपके नाम। और चलिए यहाँ पर एक और जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं मामा सुनीता को, उनके सभी बच्चों की ओर से, श्रवण है, संदीप है, प्रिया है, सभी बिहारी परिवार की ओर से, दागोचिया से नानी विद्वंती की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, और बेटी सुनीता को ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन के अवसर पर। सभी सूरत परिवार क्यूपिप से आपको बधाई भेज रहे हैं, और सुनीता जी जन्मदिन की शुभकामनाएं, आज का ये दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और ये जन्मदिन का अवसर अपनों का साथ बना रहे। और अगला मैसेज मौदालबिया से रानी तुलसी की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है वो वंदना तुलसी को, फ्रॉम पति अनिल, बेटी है शाह परी शनाया क्रिस्टी, साथ में है दिव्या, कवि युवराज, लिटिल नातिन है चेश्वी का, सभी तुलसी परिवारों की ओर से वंदना आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी सुनने वाले अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए चल पड़ा।

चलिए, खूबसूरत गानों के बीच आपके डेडिकेशंस यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज यहाँ पर सुबी जी की ओर से आया है, वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। कह रही है कि नाइस सिलेक्शन, काम पर जा रही है, साथ में हमारा साथ भी दे रही है। और गणेश चतुर्थी जो इन्होंने कल मनाया उसके बारे में अभी भी सोच रही है, और सभी को, सभी पर भगवान गणेश का आशीर्वाद रहे ऐसी शुभकामनाएँ वो दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुबी जी आपके इस सुंदर मैसेज के लिए, आपको भी हम शुभ दिन कहेंगे। और यहाँ पर अनीता जी मौदालबिया से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही कि आज मौसम बहुत ही सुहाना है। चलिए अच्छी बात है, कल तो मौसम काफ़ी तेज़ हवा थी, रह रहकर बरसात हो रही थी। उम्मीद करते हैं कि कई जगहों पर आज शायद मौसम सुधर रहा होगा। चलिए ऐसे बदलते मौसम में आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो अगला गाना अनीता जी आपके नाम, आपकी ओर से करुणा के लिए, साथ में अमृता है, आपके सभी दोस्तों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विद्या जी यूनियन पार्क से हमारे साथ जुड़ी है और सभी को शुभ दिन कह रही है। विद्या जी आपको भी शुभ दिन हम कहेंगे। ग्रॉ ग्रुप की सुनीता जी हमेशा हमारे साथ जुड़ती है, तो शुभ दिन आपको भी सुनीता जी, आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। माला जी भी हमेशा हमारे साथ जुड़ी

जुड़ी हुई रहती है, गानों को पसंद करती है, हमारे सभी प्रोग्रामों में हमेशा हमारा साथ देती है। साकुन जी भी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ती है, तो साकुन जी आपको भी हम नहीं भूले हैं। तो चलिए इस अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 8 बजे के भोजपुरी समाचार की ओर, और इसी गाने को हम आफिस जी आपके लिए भी करते हैं, हमें पता है आप हमें सुन रही हैं। तो चलिए आप सभी को शुभ दिन, इस गाने के साथ आप बढ़ेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचार और शुभ समाचार की ओर, और मिलते हैं हम आपसे सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में आपके प्यार भरे साथ के लिए। धन्यवाद।

0: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन खरी मिला जा पजर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। दिसंबर 2024 से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन 450 गो मामला की कार्यवाही चलैले बाटे। एकर में से वर्तमान में 104 गो मामला अदालत के समक्ष चलता, जबकि 1800 मामला की जांच अभी भी जारी है। मौजूदा संवेदनशील मामला के चलते FCC की जांचकर्ता और निदेशक थोड़ा बखत से निशाना पर हवन जाए। एगो प्रेस सम्मेलन के दौरान FCC के निदेशक संजय दाउधारी बतैलन कि उनकरा धमकी के सामना करे के पड़ेला। गल मार्च महीना में उनकरा एगो लिफाफा मिलल रहल, जेकर में दुगो गोली रहल आर धमकी से भरल एगो पत्र रहल। ऐसन स्थिति जांचकर्ता लोग के सुरक्षा के लेके सवाल खड़ा करेला। पेंटागन के नवा रिपोर्ट अगस्त समझौता में कानूनी तौर पर ही कोनो बदलाव नहीं करता। बकीर ई जेगो गौसिया के रणनीतिक महत्व के आर मजबूत करता। ई दस्तावेज में खास उल्लेख है कि सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना खातिर एगो महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब के तौर पर ही काम करता, खासकर ईरान के संगे संघर्ष के संदर्भ में, जहां मॉरिशस आर यूके स्वागत समझौता के लागू करे खातिर काम करता। हुई परी ई नवा स्थिति जेगो गौसिया मिलिट्री बेस से जुड़ल सुरक्षा निगरानी गारंटी परी असर डाली सकी। स्कूली छात्र लोग खातिर हाल ही एगो नवा प्रोग्राम शुरू करल जाए, जे मिलिट्री अनुशासन से प्रेरित रही। ई बरिस फिरो से नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एडुकेशन नामक ई प्रोग्राम शुरू करल जाता है। एकर तहत 2 हफ्ता खातिर ई पायलट स्तर पर ही चलावल जाए, जेकर में मॉरिशस रोड्रिग्स आर अगालेगा कि सरकारी और प्राइवेट माध्यमिक स्कूल के 200 गो छात्र लोग शामिल हुई जाए। प्रोग्राम के मार्गदर्शन सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार ओंग बुन हुई चलैन, जिनकरा सैन्य क्षेत्र में लंबा अनुभव बाटे। वो अनुशासन, सहन शक्ति, दृढ़ता, नियम के पालन और टीमवर्क जैसन मूल्य पर ही बल दीहन। छात्र लोग के अलावा शिक्षक लोग के भी जरूरी प्रशिक्षण देवल जाए, जिनमें 2 हफ्ता के प्रोग्राम के बाद भी लोग स्कूल में लड़का लोग के बीच इस सिद्धांत के प्रोत्साहित कर सकें जा। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के ओकर डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में भारतीय सरकार देने से समर्थन मिलता। एकर तहत कर्मचारी लोग के नवा उपकरण के इस्तेमाल खातिर तैयार करे खातिर प्रशिक्षण देवल जाता। सुरक्षा माहौल में बंदरगाह के अलग अलग काम की प्रैक्टिस करे खातिर आवत अक्टूबर महीना से ओलोग के एगो सिम्युलेटर उपलब्ध करावल जाए। इस ट्रेनिंग के मकसद है ओलोग के प्रतिभा जस्ती अच्छा करे के और ओलोग के बंदरगाह सेक्टर में हुए होला बदलाव खातिर तैयार करे के। याद रहे कि बंदरगाह खातिर नवा क्रेन के खरीद के वास्ते कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन 7 सितंबर के पोर्टली में एगो कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर ले है। एकर खातिर 2.7 बिलियन रुपया के निवेश की घोषणा करल गया है। इस परियोजना खातिर एगो दूसर का चरण भी निर्धारित बाटे, जेकर तहत नवा उपकरण के खरीद खातिर ओकर पूरा खर्च भारतीय सरकार वहन करी। अक्टूबर महीना से पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारी लोग के योगदान टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में दुगुना हो जाए। मासिक तौर पर ही 20 रुपया से 40 रुपया होए। एम्प्लॉयर लोग खातिर ई कंट्रीब्यूशन 60 रुपया से बढ़ के 80 रुपया करावल जाए, जबकि स्वतंत्र कलाकार लोग के योगदान 80 रुपया से बढ़ा के 120 रुपया करल जाए। एकर संगे ही ई फंड के अंतर्गत उपलब्ध 11 सुविधा में बदलाव आनल जाता, जेकर खातिर 14.5 मिलियन रुपया के बजट निर्धारित करल गल है। इस सब ग्रांट शादी, मृत्यु, शिक्षा, रिटायरमेंट आर विदेश में चिकित्सा सहायता जैसन खर्च खातिर उपलब्ध करावल जाला। सदस्य लोग के जस्ती अच्छा सेवा देवे खातिर टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एगो मेंबरशिप कार्ड आर एगो मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू करी।

0: दूसरा देश की खबर में ओमान मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर बोला था कि हॉर्मुज जलमार्ग में कालेगो तेल टैंकर पर ही हमला करल गल जेकर बाद दूगो नाविक लोग लापता होल हवन जा जबकि तेज गो अन्य के बचावल गल है। दूसरा दे ने ईरान दावा कर ले बाते कि पानामा के झंडा हुलाई जहाज एगो खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर ले रहल और उ नावल माइन से टकरा गल रहल जेकर से उकर में आग लगल रहल। ते रहल भोजपुरी के समाचार तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मरनी की खबर सुना जा। प्लाटो रोड गुडलैंड्स में 79 बरिस के 79 वर्ष के श्रीमती कुलमती बदाय, श्रीमती कुलमती बदाय पैदाशी नाम आलगू जेबर की मामा बदाय नाम से जैसे जान जा रलर और हमनी के सहयोगी श्रीमती निर्मला की माँ रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर बेटा श्री विदेश बदाय के मकान प्लाटो रोड गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाल जाए। तागोलेन एस्पेरेंस कौचे मिलते में 40 बरिस के कांगतों के श्रीमती वरुणा बरना पैदाशी नाम रघुनंदन जे वरुणा नाम से जैसी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर ससुर श्री सूरज बरना के घरे तागो लेन लेस्पेरेंस कौचे मिलते से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मिजिन कौन मास की श्मशान भूमि ले जाल जाए। महात्मा गांधी रोड त्रियोले में 64 बरिस के श्वासन का थौके श्री आबेदानंद परलाकी श्री आबेदानंद परलाकी जे राजेश नाम से जैसे जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती सुनीता परलाकी के घरे महात्मा गांधी रोड थियोले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्यामी न्यूज थियोले की श्मशान भूमि ले जाल जाए। मॉर्निंग ग्लोरी लेन बेलवी मोगल में 83 बरिस के 83 वर्ष के श्रीमती लीलावती बिहारी पैदाशीना बख्तवर जे बुलफाम लीनित नाम से जैसी जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर घरे मॉर्निंग ग्लोरी लेन बेलवी मोगल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर अमोही के श्मशान भूमि ले जाल जाए। ऑन्टेरियम गली बोवालों में 76 बरिस के 76 वर्ष के श्रीमती देवीवंती बालोराम जे सोनी नाम से जैसे जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटियाज दिन के 10 बजे उनकर घरे ऑन्टेरियम गली बोवालों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तो भूमि पर के श्मशान भूमि ले जाल जाए। डॉक्टर बेनेडिक रोड लिस्वे हॉस्पिटल में 78 बरिस के 77 वर्ष के श्री प्रेम दत्त चरण जे प्रभु नाम से जैसे जान रात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज फजर के 9 बजे उनकर बेटा श्री कवि चरण के घरे डॉक्टर बेनेडिक रोड लिस्वे हॉस्पिटल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पहल मुगुलेंस की श्मशान भूमि ले जाल जाए। महाराणा प्रताप रोड पेचेराफ्रे में 90 बरिस के 90 वर्ष के श्रीमती जसमत सिंचन पैदाशी नाम विशेषर जे जयंती नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घरे महाराणा प्रताप रोड पेचेराफ्रे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दाहुची के श्मशान भूमि ले जाल जाए। प्रिंसेस मोगारेट लेन पेचित रिवियर में 89 बरिस के 89 वर्ष के श्रीमती बिदौती शांतो जे शांति बागमर नाम से जैसे जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज फजर के 10 बज के आधा उनकर बेटा श्री किशन लाल बागमर के घरे प्रिंसेस मोगारेट लेन पेचित रिवियर से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोदाइन सैंप ये बॉम्बू के श्मशान भूमि ले जाल जाए। इबिस्कस रोड लागोलेट में 77 बरिस के 77 वर्ष के श्री बीकू इसराम जे गौसो नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी

आज दिन के 11 बजे उनका बेटा श्री जोशन इस्लाम के घरे इबिस्कुस लेन इबिस्कुस रोड लागोलेट से उठा के अंतिम संस्कार खातिर रिवियन वॉक के शमशान भूमि ले जाल जाए। क्रिमिशन रोड कांतोरल में 92 बरिस के 92 के श्री धनपत गनोरी जे दीपलाल नाम से जसी जान जाते रहन गुजर गए हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा श्री सत्येंद्र गनोरी के घरे क्रिमिशन रोड कांतोरल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुई के शमशान भूमि ले जाल जाए। शनफील रोड रिविया जोआ पॉमी 93 बरिस के 93 के श्री रामचंद्र जोई जे जोई चेकमैन से अंति नाम से जस्ती जान जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 3 बज के आधा उनकर माटी आज दिन के 3 बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती कल्याणी जोई के घरे शनफील रोड रिविया जोआ पॉ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पंदिलास कौके शमशान भूमि ले जाल जाए। बनते वाकुआ में 66 बरिस के 86 के कुमारी रूमीला राम जे बरोज नाम से जस्सी जान जात रहलन गुजर गए हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर भतीजा श्री भवेश राम के घरे बनते वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जाल जाए। 77 बरिस के 67 के श्रीमती अमरावती आदुंकली पैदाशी नाम गजाधर जे शीला नाम से जसी जान जात रहलन गुजर गए हवन उनकर माटी आज फजर की 10 बज के आधा उनकर माटी आज फजर की 10 बज के आधा लाशा पहला दौत एलियन सन्स रॉयल रोड बुबासन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड बॉशेरी में 61 बरिस के 61 के श्री अजय देव सिंह गोपाला जी अजय नाम से जसी जान जात रहलन आर पहले बॉशेरी चाय के कारखाना के पूर्व सदौर रहलन गुजर गए हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर घरे रॉयल रोड बॉशेरी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुई के शमशान भूमि ले जाल जाए। कादिया बाबा ले इन लिस्कालिये में 50 बरिस के 57 के कुमारी चंद्रानी प्रेमचंद जे प्रतिमा नाम से जैसी जान जाते रहन गुजर गए हवन उनकर माटी आज फजर की 9 बज के आधा उनकर माटी आज फजर की 9 बज के आधा उनकर माँ श्रीमती दमयंती प्रेमचंद के घरे कादिया बाबा ले इंग्लिस काली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर प्लेन मानियो की शमशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डूबली सब परिवार लोग के संगे हमनी की संवेदना है।

819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस

चलिए जी हाँ, सुबह का नजराना का यह दूसरा घंटा है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं, जहाँ कहीं से भी आप साथ जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत होती है एक छोटे से क्विज की, आ खेल खेले हम, तो आप तैयार हैं? हमें पता है आप तैयार है। ये एक क्विज छोटा सा होता है, लेकिन आप बड़े ही प्यार से जो है इसमें हमारा साथ देते हैं। तो चलिए, हमारा प्रश्न भी बिल्कुल तैयार है और आज का हमारा जो प्रश्न कुछ ऐसा है। आज एक बहुत ही पॉपुलर राइटर लिरिसिस्ट का जन्मदिन है। जी हाँ, बहुत ही पॉपुलर राइटर लिरिसिस्ट का जन्मदिन है। और इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी कम समय में काफ़ी नाम कमाया है। वो एक प्रसिद्ध कवि है, गीतकार है, लेखक है, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर भी है। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भी इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट है, फिल्मों में आने के पहले ये एडवर्टाइजिंग के दुनिया में काम करते थे और बचपन ही से इन्हें लिखने का बड़ा शौक रहा है। ये महज 17 साल के थे तब इन्होंने अपनी पहली किताब मैं और वो लिखी थी, प्रकाशित की थी। और इसके बाद इन्होंने कविता और अन्य कई रचनाएं भी इनकी प्रकाशित हुई हैं। और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में इन्होंने काफ़ी कमाल किया है। और फिल्मों की बात करें तो 2001 की फिल्म लज्जा से इन्होंने फिल्मों में कदम रखा गीतकार के रूप में। और इसके बाद इन्होंने हम तुम, फना, रंग दे बसंती, तारे ज़मीन पर, दिल्ली सिक्स, भाग जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं ये। तो आज इनका जन्मदिन है, तो आज किस पॉपुलर जो है स्क्रीन प्ले

0: डायलॉग राइटर का जन्मदिन है आप हमें बताएं, 4028085 है नंबर हमारा। और लज्जा इस फिल्म से इन्होंने जो है अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के गाने इन्होंने लिखे थे साल 2001 में जो है ये फिल्म आई थी, और वहीं पर रंग दे बसंती इस फिल्म ने इनके करियर को एक अलग आयाम दिया था। रंग दे बसंती ये फिल्म 2006 में आई थी। इस फिल्म में इन्होंने गीत ही नहीं लिखे थे बल्कि इस फिल्म के डायलॉग्स भी इन्होंने लिखे थे। और इस फिल्म में जो इनकी डायलॉग राइटिंग थी उन्होंने युवाओं की सोच को काफ़ी प्रभावित किया था। देशभक्ति को जागृत करने में जो है लोगों के दिलों में जो है इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। रंग दे बसंती ये फिल्म लोगों ने बहुत पसंद भी की थी। वहीं पर तारे ज़मीन पर इस फिल्म के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म में तारे ज़मीन पर इस फिल्म के गानों लिरिक्स को इन्होंने लिखा था, इसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। तो चलिए जल्दी जल्दी आप हमें इस आर्टिस्ट का नाम बताएं 4028085 पर। लग रहा है कि आज का सवाल हमारा थोड़ा सा कठिन है क्योंकि अब एक फ़ोन आया। चलिए देखते हैं कौन है लाइन पर और मिलते हैं इनसे। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते,
0: आपका स्वागत है जी। कौन बोल रही है?
1: मैं आशा हाईलैंड से।
0: कैसी है आशा जी?
1: ठीक हूँ।
0: आपकी आवाज़ बड़ी धीरे धीरे आ रही है। हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताइए क्या है जवाब?
1: प्रसून जोशी।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस जवाब के लिए। प्रसून जोशी के बारे में कुछ जानती है, कुछ जोड़ना चाहेंगी?
1: वो एक पोएट है
0: जी। चलिए कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बनी रहे, थोड़ी देर में बताएंगे कि सही जवाब क्या है। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और चलिए यहाँ पर एक और श्रोता है, इनसे हम मिलते हैं। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्ते
0: जी, कौन है?
2: मैं इंदिरा मेबेक से।
0: कैसी है इंदिरा जी?
2: अच्छे हैं, आप कैसे हैं बहना?
0: बिल्कुल ठीक है हम इंदिरा जी, और बताइए क्या है जवाब?
2: जवाब है राज सांडिलिया।
0: फिर से बताइए।
2: राज।
0: ओके, चलिए आपके जवाब को भी हमने नोट कर लिया है, आपने साथ दिया, आपने भाग लिया, इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पर चलिए हम उस आर्टिस्ट का नाम ढूंढ रहे हैं जिनका आज जन्मदिन है। ये एक पोएट है, राइटर है, काफ़ी फिल्मों में इन्होंने गाने लिखे हैं, डायलॉग्स लिखे हैं, और तारे ज़मीन पर इस फिल्म के लिए लिरिक्स के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद इन्हें एक और फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ था, चिटागोंग। ये फिल्म जो है इसके लिए भी गीतों को लिखने के लिए इन्हें जो है अवार्ड मिला था। और गीतों की खासियत इनकी ये होती है कि ये काफ़ी सरल शब्दों में जो है गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, यानी कि इनके गाने ऐसे होते हैं जो दिल को छू लेते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप हमें इनका नाम बताएं। आज हमें वाकई में लग रहा है कि हमारा जो प्रश्न है थोड़ा सा कठिन है क्योंकि बहुत कम लोगों के फ़ोन आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश कर सकते हैं। और इन्हें जो है नेशनल अवार्ड्स के साथ साथ कई अन्य फिल्मों के लिए भी अवार्ड मिले हैं, जैसे फिल्म फेयर की ओर से इन्हें बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था 2007, 2008 और 2014 में। भाग मिल्खा भाग इस फिल्म के लिए भी इन्होंने लिरिक्स जो है लिखे हैं। उसके अलावा भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में योगदान के लिए और इनका जो एडवर्टाइजिंग होती है, जो विज्ञापन ये बनाते हैं, जो एड्स हम टीवी में देखते हैं, फिल्मों के बीच में, सीरियल्स के बीच में, वो एडवर्टाइजिंग ये बनाते हैं। तो इनका जो एडवर्टाइजिंग की जो शैली होती है ना, काफ़ी सामाजिक संदेश होते हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी होती है, इसलिए इनके एड्स काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं। इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े कैंपेन में काम किया है। चलिए यहाँ पर एक और जवाब हमें आया है इंदिरा लौटन जी की ओर से। नहीं, इन्होंने जवाब नहीं लिखा है। चलिए यहाँ पर अभी तो फरमाइश या डेडिकेशन नहीं चल रहा है, लेकिन आपके मैसेज के लिए धन्यवाद। लग रहा है कि आज जवाब हमें ही देना पड़ेगा। तो चलिए जी हाँ, सिर्फ एक कॉलर ने सही जवाब दिया, प्रसून जोशी। प्रसून जोशी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 16 सितंबर 1971 को इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में। ये एक प्रसिद्ध कवि है, गीतकार है, लेखक है, स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर है जैसे कि हमने आपको बताया। और इन्होंने अपनी जो है किताब भी लिखी थी जब ये महज 17 साल के थे, और काफ़ी बेहतरीन फिल्मों में अपना योगदान इन

के लिए इन्हें नवाजा भी गया है, और रंग दे बसंती, लज्जा, तारे ज़मीन पर जैसे फिल्मों में इन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। तो चलिए अभी के लिए तारे ज़मीन पर फिल्म का ये तराना हो जाए, और इस फिल्म में लिरिक्स के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ था। जितने लोगों ने भाग लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस। यकीनन जिंदगी में बहुत कुछ हम खोते हैं, बहुत कुछ हम पाते हैं, बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। ज़िंदगी लेकिन चलते रहती है, तो हमें भी चलते रहना चाहिए। अफसोस होता है, कभी दुख होता है, कभी परेशानी होती है, लेकिन इन सब के बीच ज़िंदगी हमें बहुत खुशियाँ भी देती है, है ना। तो चलिए अभी के लिए इस गाने के साथ आगे बढ़ते हैं। कल हो ना हो फिल्म का ये तराना आप सभी के नाम

यकीनन हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, आने वाला कल किसके लिए क्या लेकर आए किसे पता। तो अपने हर एक पल को हमें भरपूर जीना चाहिए, ताकि कल को हमें अफसोस न करे कि जो कुछ करना था नहीं कर पाए।

0: चले इन्हीं गाने तराने सुनने के बीच अभी के लिए समय हो चला है कि हम बढ़े हमारी धरोहर इस कार्यक्रम की ओर, जिसे हम सुनेंगे किरण जानकी जी से। तो चलिए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की ओर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आप सबको के स्वागत बा। हमने देश भर में बहुत धूमधाम से गणेश चतुर्थी के व्रत रख के

ई परब मनाई लीजा, ई त्योहार, ई महोत्सव मनाई लीजा। और गणेश चतुर्थी एगो ऐसन परब है जहाँ पर पूजा के साथ साथ सांस्कृतिक जोन रीति रिवाज बा वो भी निभावल जाला। और यहाँ पर एगो बहुत ही मशहूर रिवाज बा, बहुत मशहूर नृत्य बा, जेकर नाम है जाकरी। वो मॉरिशस में एकदम एगो नवा आयाम ले ले, ले बा, लेकिन ये एगो बहुत पुराना प्रथा है महाराष्ट्र के। जाकरी ऐसन मशहूर लोक नृत्य है, फोल्क सॉन्ग, फोल्क डांस जेके बोली ला जा, जो गणेश चतुर्थी और गौरी पूजा के बखत गावल जाला, नाचल जाला। ये नृत्य महाराष्ट्र के बलिया डांस से बहुत मेल खाला। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जाकरी भारत के कौन हिस्सा से आल बा, और यहाँ आके वो कैसे बसकल बा, और मॉरिशस में आके वो कैसे नवा रूप ले ले बा, कैसे अदाप्ते होल बा। जब भारत के शर्तबंद मजदूर लोग मॉरिशस में आ रंजा, मुख्य रूप से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाका से, जैसे कोंकण, रत्नागिरी, सावंतगिरी, तो वो लोग अपन संगे हर दूसर कौम के लोग की तरह अपन सांस्कृतिक धरोहर, अपन धार्मिक ग्रंथ, अपन जो रीति रिवाज बा, अपन सभ्यता, पूर्वज लोग के मूल्य, वो सब संगे अलन सा और एक जीवित रखलन सा, एक जीलन सा। और ये सब में जाकरी नृत्य एगो हा। 1870 के बरिस में मराठा लोग के देश के अलग अलग इलाका से यहाँ पर शुगर एस्टेट, शक्कर प्रतिष्ठान में आन के काम करे खातिर रखा गल। तो ये लोग यहाँ पर आके अलग अलग कोना में जाके बस गए लन जा, ख़ास तौर पर ब्लैक रिवर डिस्ट्रिक्ट में, और हुआ के जो गोश बा, हुआ के लागुलत इलाका, मतलब कि ऐसा ऐसन इलाका जहाँ पर पानी भीरी में रही, जहाँ पर समुंदर भीरी में रही। कुछ मराठा परिवार सतकास्काद में जाके बस लन जा, और हुआ के जो निवासी लोग हवन जा, काहे वो लोग पानी के भीरी गए लन जा, काहे कि महाराष्ट्र में वो लोग समुंदर के भीरी रहत रहन सा। वो लोग के वेशभूषा, वो लोग के जो कास्टी है, ये सब वो लोग के जिए के एगो तरीका रहल, काहे कि वो लोग मछेरा समुदाय के रहन सा, और वो लोग के नाव में चढ़े उतरे में आसानी हो ऐसा कपड़ा पहनत रहन सा, और ऐसा जगह पर बसल रहन सा। यहाँ पर वो लोग अपन परंपरा, धर्म, संस्कृति, भाषा, सभ्यता के जीवित रखे के पूरा कोशिश कर लन सा। और एक अंतर्गत दशावतार डांस ड्रामा भी शामिल बाई में, और रात भर गणेश चतुर्थी के अंतर्गत वो लोग जाकरी के नृत्य करत रहन सा। जाकरी नृत्य के परंपरा वो लोग हर पीढ़ी तक पहुँचे लन जा। आज भी जाकरी परफॉर्म करल जा रहा, बल्कि आज जस्ती धूम के साथ नवा पीढ़ी एक अदाप्ते करके, एकर में नयापन आन के एक बहुत खूबसूरती से परफॉर्म करे लन जा। एकर में कोरियोग्राफी, पहनावा, जो संगीत के सास बा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो ढंग से गावल जाला, बजावल जाला, नाचल जाला, ये सब के नवा पीढ़ी लोग सीख सीख के अपन अंदाज में आज परफॉर्म करे लन सा। आगे के समय में जाकरी खाली ढोलकी और झांझ बजा के नाचल जात रहा, लेकिन आज चिमटा और अन्य पर्क्यूशन भी इस्तेमाल करा जा रहा। आगे के समय में पुरुष और महिला लोग अलग अलग नृत्य करत रहन सा, लेकिन आज युवा पुरुष और नवयुवक संगे ई नृत्य करे लन जा, जाकरी नाचे लन जा, और एगो बड़ा गोल बना के ई लोग ओकर चक्कर काटे लन जा। संगीतकार लोग भीतरे रहे लन सा, और बाकी परफॉर्मर्स बाहर। एक महीना आगे से जाकरी के तैयार करल जा रहा, ताकि गणेश चतुर्थी के बखत सुंदर नृत्य परफॉर्म करल जाए। और अभी गणेश चतुर्थी में आप लोग देख ले हुई बजा कि जाकरी नृत्य खाली अब मराठी समुदाय नहीं, हर दूसर समुदाय के लोग एक पसंद करे लन जा, और एक परफॉर्म करे के कोशिश भी करत हवन जा, सीखत भी हवत हवन जा। कार्यक्रम के ध्यान से सुन ल, बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलब जा, नमस्ते।

चलिए किरण जानकी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी धरोहर इस कार्यक्रम के लिए, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो इतनी सारी जानकारियाँ जो देती हैं उनके लिए भी। और इसी के साथ सुबह का नजराना ये कार्यक्रम खत्म होने को चला। सवेरे के 6 बजे से अभी तक हमारा और आपका साथ रहा। जाते जाते इस अंतिम भोजपुरी गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। ये कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर तो चलेगा ही, साथ ही इसका सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर भी। तो हमारी आपकी मुलाकात दोबारा होगी 10 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। जी हाँ, समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं अदिति, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते।
2: नमस्ते, श्रोताओं को भी नमस्कार। पेंटागन की नई रिपोर्ट शागस समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती, लेकिन ये जेगोगस या में के रणनीतिक महत्व को और मजबूत करती हैं। दस्तावेज

0: इतिहास में खास उल्लेख है कि ये सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब के तौर पर काम कर रहा है, खासकर ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के संदर्भ में। मॉरिशस और यूके शागर समझौते को लागू करने पर काम कर रहे हैं। वहीं ये नई स्थिति जगोग और श्याम मिलिट्री बेस से जुड़ी सुरक्षा और निगरानी गारंटी पर असर डाल सकती है। स्कूली छात्रों के लिए जल्द ही एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जो मिलिट्री अनुशासन से प्रेरित होगा। इस साल फिर से नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नामक ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 2 हफ्तों के लिए ये पायलट स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा के सरकारी और प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों के 200 छात्र शामिल होंगे। इस प्रोग्राम का मार्गदर्शन सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार ओंग बुन हुई करेंगे, जिनका सैन्य क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। वे अनुशासन, सहन शक्ति, दृढ़ता, नियमों के पालन और टीम वर्क जैसे मूल्यों पर बल देंगे। छात्रों के अलावा शिक्षकों को भी जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि 2 हफ्तों के प्रोग्राम के बाद भी वे स्कूल में छात्रों के बीच इन सिद्धांतों को प्रोत्साहित कर सकें। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उसके डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में भारतीय सरकार की तरफ से समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को नए उपकरणों के इस्तेमाल के लिए तैयार करने के वास्ते प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुरक्षित माहौल में बंदरगाह के अलग अलग कामों की प्रैक्टिस के लिए अगले अक्टूबर महीने से उनके लिए एक सिम्युलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इस ट्रेनिंग का मकसद है उनकी प्रतिभाएं बेहतर करना और उन्हें बंदरगाह सेक्टर में होने वाले बदलावों के लिए तैयार करना। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, ओमान मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर का कहना है कि हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, जिसके बाद 2 नाविक लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 23 अन्यों को बचाया जा सका है। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि पनामा के झंडे वाला ये जहाज एक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर गया था और वो नवल माइन से जा टकराया, जिससे उसमें आग लग गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: सितंबर बुधवार का दिन, आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं हूं रत्ना, आ पहुंची हूं आपका साथ देने के लिए। जी हां, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर अभी आप सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ एमबीसी के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे अभी थोड़ी ही देर में। और बिल्कुल इस कार्यक्रम को रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को याद दिला दें कि बिल्कुल 23 सितंबर को मनाया जाएगा विश्व आयुर्वेद दिवस, और इसी उपलक्ष में आज का ये कार्यक्रम आधारित रखा जाएगा। और हम आपको ये भी बताते चले कि हमने पिछले कई दिनों में हमने कई सारे ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो आयुर्वेद पर आधारित है। बिल्कुल आयुर्वेद ये जो है पद्धति, ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है। इतना ही नहीं, ये एक स्वास्थ्य रक्षा, रोग निवारण और साथ ही साथ जीवन को सही ढंग से जीने का एक तरीका है। ये बहुत ही प्राचीन और शाश्वत मार्ग है और बिल्कुल इसी पर आधारित ही रहेगा आज का कार्यक्रम। और आज हमारे साथ अभी थोड़ी ही देर में जुड़ेंगी डॉक्टर पूजा सबरवाल। पूजा सबरवाल जी जो आयुर्वेदिक चेयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ हाईकॉम इंडिया के सहयोग से वे यहाँ पर स्थित है मॉरिशस में। और अभी थोड़ी ही देर में हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलेंगे। फिलहाल हमारे जो मेहमान हैं बस रास्ते में हैं, आ रहे हैं, और अभी थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको ये भी याद दिलाते चले कि आज हमारी तकनीक पर हमारा सहयोग देंगे फैज़ान, और साथ ही साथ हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट पूजा बिल्कुल उरुसा, और हमारे साथ जुड़ेंगी रत्नमाला जी जो हमारे साथ बनी रहेंगी कार्यक्रम के अंत तक। तो बस कहीं मत जाइएगा, हमारा साथ दीजिएगा। बेहतरीन गीतों के साथ भी इस कार्यक्रम को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एक गीत का ब्रेक लेते हैं, अभी थोड़ी ही देर में जैसे ही हमारे मेहमान आ जाते हैं कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

0: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम में पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर पूजा सब्रवाल, जो कि आयुर्वेदिक चेयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हाई कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। और बिल्कुल आज हम बात करेंगे विश्व आयुर्वेदा दिवस पर, यानी आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, उसका महत्व क्या है, इस साल का थीम क्या है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या आज के आधुनिक समय में भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ पाई जाती हैं, और क्या लोग आयुर्वेदा को आज भी उतना ही मान देते हैं, उतना ही उसमें विश्वास रखते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर पूजा जी से, पहले तो उनका स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, डॉक्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर जी, आज हम बात करेंगे विश्व आयुर्वेदा दिवस, तो पहले तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगी कि ये कब मनाया जाता है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है।
1: नमस्कार रत्ना जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में मुझे इनविटेशन के लिए। जैसा कि आपने पूछा, आयुर्वेदा डे जो है वो कब मनाया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो आयुर्वेदा डे है वो 2025 ऑनवर्ड्स जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उनकी तरफ से एक दिन जो है वो निर्धारित किया गया है, 23rd सितंबर। तो 23rd सितंबर को आयुर्वेदा डे का सेलिब्रेशन होता है। इस साल भी हम 23rd सितंबर को आयुर्वेदा डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से अनाउंसमेंट्स भी हो चुकी हैं और प्रमोशन एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी स्टार्ट कर दी गई हैं। तो 23rd सितंबर को आयुर्वेदा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, और वो ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाएगा। भारत में तो सेलिब्रेट किया ही जाएगा, थ्रू आउट ग्लोब जो है उसका सेलिब्रेशन होगा। और इस बार जो आयुर्वेदा डे का जो थीम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जो निर्धारित किया गया है वो है आयुर्वेदा फॉर हेल्दियर टुमारो। ये इसका जो है वो बेसिक थीम है, आयुर्वेदा फॉर हेल्दियर टुमारो। मतलब किस तरह से हम अपना जो आने वाला समय है उसको हम हेल्दी रख सकते हैं, मतलब एक हेल्दियर कम्युनिटी की तरफ हम जा सकते हैं। वन हेल्थ वन फ्यूचर, ये उसका सब थीम है, वन हेल्थ वन फ्यूचर और आयुर्वेदा फॉर हेल्दियर टुमारो। और उसके आगे इंटीग्रेटिव मेडिसिन, एविडेंस, इन सब चीज़ों को क्रिएट करना, इसका जो इस थीम को लेके इस बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुर्वेदा डे को सेलिब्रेट कर रही है। और मॉरिशस में एज हाई कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ समय पहले ही, लास्ट मंथ ही, एक कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया, विच इज़ लीडिंग टुवर्ड्स आयुर्वेदा डे 2026, नो आयुर्वेदा कैंपेन। मतलब कि आइए और आयुर्वेद को जानिए। और उस कैंपेन के तहत हमने कुछ आउटरीच एक्टिविटीज़ हाई कमीशन ऑफ इंडिया के बैनर के अंडर, नो आयुर्वेदा कैंपेन के अंडर कुछ आउटरीच एक्टिविटीज़ करी हैं। जैसे 2-3 जगहों पर हमने कुछ वर्कशॉप्स करी हैं, यूनिवर्सिटी में हमने स्टूडेंट वर्कशॉप करी है, एक आयुर्वेदा वॉक करी है, और इसी के साथ साथ हमने एक वुमेन हेल्थ पे एक वर्कशॉप करी, फोकस किया है। तो इस तरह से कुछ एक एक्टिविटीज़, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, कुछ आउटरीच एक्टिविटीज़ जो हैं वो आयुर्वेदा डे को लेते हुए, करते हुए, ध्यान में रखते हुए वो कैंपेनिंग स्टार्ट करी है। और 23 सितंबर को एक बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको उसके लिए इन्वाइट भी करती हूँ, IGCIC में, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में
0: जी,
1: हाई कमीशन की तरफ से हम एक आयुर्वेदा डे का बहुत अच्छा एक सेलिब्रेशंस कर रहे हैं,
0: जहाँ
1: पर ओपन टू, हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पर कई तरह की जो हैं वो एग्जीबिशंस होंगी, टॉक्स होंगी, आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स होंगे उसमें, कुछ एक यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ मिनिस्ट्री से एक्सपर्ट्स होंगे, तो एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर अलग अलग तरह की एकेडमिक टॉक्स भी रहेंगी, एग्जीबिशंस भी रहेंगी, और बहुत अच्छा एक कार्यक्रम होगा। तो ये हम 23 सितंबर को मॉरिशस में भी आयुर्वेदा डे इस बार जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: तो डॉक्टर पूजा जी, आप यहाँ पर हैं, तो आप क्या बता सकती हैं कि भारत में ये किस तरह से मनाया गया था, और बिल्कुल आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि मॉरिशस में ये किस तरह से मनाया जाए?
1: जी जी, तो एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि ये हर साल मनाया जाता है, इसकी शुरुआत

0: जो है वो 2016 में हुई थी, तो ये 11th आयुर्वेदा डे जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार, और हर वर्ष भारत में इसको मनाया जाता था धनतेरस के दिन।
1: बिल्कुल,
0: जब धनतेरस होता था तो
1: धनवंतरी
0: क्योंकि धनवंतरी जी जो हमारे आयुर्वेद के जो है वो
1: देव
0: माने गए हैं है ना, तो इसलिए ये हर धनतेरस को मनाया जाता था भारत में भी और हर जगह बाहर भी। तो लास्ट ईयर से क्योंकि इसकी हर बार डेट फ्लक्चुएट करती थी, तो इसकी एक फिक्स डेट जो है वो कर दी गई निर्धारित मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। तो हर तरह की तरह ही इस बार भी भारत में 11th आयुर्वेदा डे, जो मैंने थीम बताया आयुर्वेदा फॉर हेल्थियर टुमारो, वन हेल्थ वन फ्यूचर, उस थीम के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ भारत में शुरू हो चुकी हैं, जिसमें कि कई तरह की वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, क्विज और कॉम्पिटिशन्स है ना, लेके अमंग स्टूडेंट्स ऑल्सो उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि आप भी आयुर्वेद डे को सेलिब्रेट करिए। अलग अलग वहाँ के जितने कॉलेजेस हैं, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, सब जगह जो है वो आयुर्वेदा डे का सेलिब्रेशन एक महीना डेढ़ महीना पहले स्टार्ट हो चुका है, और जो मेन इवेंट है वहां पर भी वो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। उसी तरह से हम उन्हीं की डायरेक्शंस को, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मॉरिशस में भी हम आयुर्वेदा डे को बहुत अच्छे तरीके से हाई कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक इवेंट हम कल यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं जिसमें हम एक आयुर्वेदा इन्फॉर्मेशन कॉर्नर एस्टेब्लिश कर रहे हैं लाइब्रेरी में, और उसके साथ कुछ एक एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, वो अपना टॉक देंगे। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज़ हम मॉरिशस में भी कर रहे हैं, आयुर्वेदा डे को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: ओह दैट्स रियली, मैं समझती हूँ यहाँ पर मॉरिशस में भी कई सारे लोग परिचित तो हैं आयुर्वेदा को लेकर। और मैं डॉक्टर जी से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर जी जब आयुर्वेदा की हम बात करते हैं, हालांकि आज आधुनिक दौर चल रहा है और बिल्कुल जो हमारी जो यूथ है, जो नवयुवक पीढ़ी है, नवयुवा पीढ़ी है, वो बिल्कुल डॉक्टर बनना चाहती है तो अपना रुख करती हैं वो मेडिकल साइंस की ओर, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की ओर, मॉडर्न थेरेपीज़ की ओर। तो क्या आज के समय में भी यूथ एनकरेज होते हैं इस तरफ, यानी आयुर्वेदा की ओर झुकाव देने के लिए?
0: देखिए ऐसा है, यूथ को लेके मैं इस माध्यम से मैं एक अपना मैसेज ज़रूर कन्वे करना चाहती हूँ। सिर्फ आयुर्वेद, देखिए एक तो है प्राइमरली आपने क्या सब्जेक्ट लिया, ठीक है, कि आपने 12th के बाद या जहाँ यहाँ पर मॉरिशस में HSC जो है उसके बाद आपने अपना करियर क्या चूज़ किया, आप मेडिकल जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं, जैसी जो भी आपकी स्ट्रीम है। बट एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, अगर आपने अपना प्राइमरी जो सब्जेक्ट है वो आयुर्वेद नहीं भी लिया, तब भी आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं उसकी एक आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो यूनिवर्सिटी में अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज भी है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, फैकल्टी ऑफ आईटी है,
1: जी
0: ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब आयुर्वेद के अंदर इतना स्कोप है कि आप अपनी जो अपनी फैकल्टी है, अपनी स्ट्रीम है, उसको मत छोड़िए। उसके साथ साथ उसमें रहते रहते आपके लिए इतनी सारी स्टूडेंट्स के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है। अब आप देखिए जो आयुर्वेद है उसके अंदर प्लांट रिसर्च है, तो एग्रीकल्चर के अंदर ही बायोटेक्नोलॉजी का भी एक स्ट्रीम है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है वो आयुर्वेद क्या एक जो सब्जेक्ट है जिसको हम प्लांट्स का रिसर्च बोलते हैं, उसमें अगर वो कुछ अपना इंटीग्रेटिव फॉर्म में रिसर्च करता है या करती है, जैसे कि प्लांट्स को लेके फाइटोकेमिकल स्टडी करना, बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से स्टडी करना, एक ये उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी है। अगर एग्रीकल्चर की बात करती हूँ तो फूड साइंसेज, इनोवेशन इन फूड साइंसेज, उसमें आयुर्वेद का जो बेसिक है उसको लेके स्टडी की जा सकती है। अगर आईटी की बात करूँ तो आईटी में ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, जैसे इन्फॉर्मेटिक्स, साइंस ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स है, तो साइंस ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स या फिर मशीन लर्निंग है, आजकल AI का जमाना है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग को लेके उसको अप्लाई करना आयुर्वेदा साइंस पे, कोर्सेज हैं ऐसे बहुत सारे जिसको फर्दर करके वो सुपर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं इसमें, क्योंकि बेसिक तो AI और IT का फील्ड है ही, उसके अंदर आयुर्वेद में वो कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो सब चीज़ों को लेके करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। फिर उसके बाद स्टार्टअप्स हैं, वेलनेस इंडस्ट्री है, टूरिज़म इंडस्ट्री है, जिसमें स्टूडेंट्स अपना स्ट्रीम मत छोड़ें, ठीक है ना, मल्टीमीडिया स्टूडेंट्स हैं आजकल, देखिए आयुर्वेद से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, ठीक है, तो उसमें जो मल्टीमीडिया एक्सपर्ट्स है वो इस फील्ड में आ सकते हैं। तो इस तरह से वर्सटाइल डायनामिक फील्ड है जिसमें

0: यूथ जो है वो अपना स्ट्रीम, जो बेसिक स्ट्रीम है, उसको
1: कंटिन्यू
0: रख के उसको अप्लाई करे आयुर्वेदा फील्ड में.
1: तो यानी आगे चलकर मतलब बैलेंस, जैसे कह सकते हैं कि पैरेलल आप कर सकते हैं. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप प्राचीन पद्धति को इस नए स्टाइल में या नए तरीके तौर तरीकों में आप डाल सकते हैं.
0: प्राचीन पद्धति प्राचीन ही रहेगी, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते. बट उसको जो है, अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो यूथ है उसको कैसे आज के टाइम में, क्योंकि हमें देखिए अपने आप को अपडेट रखना होता है, ऐसा तो है नहीं हमें टाइम के अकॉर्डिंगली नई नई, अगर हम, मैं ये कहूँ कि हम पुराना ही मोबाइल लेके चलेंगे, हम नहीं स्क्रीन वाला मोबाइल लेंगे, हम नहीं यूज़ करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम जमाने के हिसाब से आगे चल पाएंगे. तो हमें उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना होता है और उसी हिसाब से हमें अपने आप को अपडेट भी करना होता है.
1: बिल्कुल सही. और जी हाँ, जैसे जब हम वर्ल्ड आयुर्वेदा डे की बात कर रहे हैं, भले ये पद्धति प्राचीन है पर इस प्राचीन पद्धति के साथ भी बिल्कुल एक ठोस आपको गारंटी भी दी जाती है कि किस तरह से आप अपने शरीर को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपने जीवन शैली को ढंग से रखते हुए, क्योंकि आज जहां पर हम बिल्कुल एक ऐसे तनाव भरे जीवन के साथ जीवन को आगे लेते हुए जा रहे हैं और इसी शैली के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पर बीमारियाँ एक करके एक बढ़ती जा रही हैं, आपने देखा होगा विश्व भर में आज बीमारियाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, पर इसके लिए अगर हमें अपने आप को तैयार करना है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे डॉक्टर जी ने हमें बताया, बस इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होना और इसके साथ साथ हमें सीख कर आगे बढ़ना, यही एक तरीका है कि हम आयुर्वेदा को भी नई पद्धतियों के साथ अपनाते हुए आगे बढ़े. चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए.

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा सब्रवाल, जो कि खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हुई हैं। वैसे हमने पिछले कई कार्यक्रम ऐसे किए हैं जहाँ पर हमारे साथ पूजा जी जुड़ी थी और आयुर्वेदा पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की, जीवन शैली पर, ऋतु के परिवर्तन पर और किस तरह से हमारे जीवन में आयुर्वेदा का रोल होता है। और बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड आयुर्वेदा डे पर, और साथ ही साथ आज मॉरिशस की यूनिवर्सिटीज़ में भी आयुर्वेदा को लेकर कई सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं ताकि हमारी जो नवयुवा पीढ़ी है, युवक जो हैं, वो अगर इस फील्ड में जाना चाहें तो बिल्कुल कई सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जिस पर, आइए जानते हैं पूजा जी से। पूजा जी, आज यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस कौन कौन से ऐसे आयुर्वेदा को लेकर कोर्सेज दे रही हैं, प्रदान कर रही हैं, उसके बारे में हमें
2: जी बताएं। जी जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूथ के लिए आयुर्वेद में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चल के की जा सकती हैं। देखिए, आयुर्वेद का जो एक इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली है कि अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी। जैसे अंडर ग्रेजुएशन 5.5 ईयर का कोर्स होता है, 5.5 साल का बीएमएस जिसे बोलते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिनल सर्जरी। और उसके बाद फिर एमडी होता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो 3 ईयर्स का होता है।
1: अच्छा।
2: ये हमारा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में एक वेल इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चरल प्रोग्राम है, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ
1: जी।
2: और मॉरिशस में ऐसा है कि देखिए, हर कंट्री की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, अपना अपना एजुकेशन सिस्टम होता है। और मॉरिशस में सबसे अच्छी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक वेलनेस जो है, वहाँ पर एक टीएमबी एक्ट है, ट्रेडिशनल मेडिसिनल बोर्ड है, जिसके अंतर्गत आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं और सब। तो अगर एजुकेशन की बात करूँ और उसकी बात करूँ तो अभी मॉरिशस में, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में कुछ एक स्टैंड अलोन मॉड्यूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा एंड इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक डायटिक्स, जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में उसको पब्लिसाइज किया गया है, ओपन है अभी, रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टिल इट इज़ ओपन। तो वेरी सून वी आर गोइंग टू ऑफर दैट कोर्स, दैट इज़ मीन्स लाइक ऑलरेडी इन पब्लिक, और जो भी चाहे उसमें। ये थोड़ा सा अभी फुल फ्लेज्ड वो कोर्स नहीं है, जो स्ट्रक्चरल जो इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस है, जो 5.5 ईयर का बीएमएस या फिर एमडी या फिर पीएचडी, वो हम धीरे धीरे यहाँ का इंट्रोड्यूस करेंगे। बट उससे पहले कुछ एक स्टैंड अलोन कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं यूनिवर्सिटी में। इसके साथ साथ जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है यहाँ पे, उनका जो है वो एम्फसाइज ज़्यादा करते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज पे, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के थ्रू बहुत जल्द कुछ माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज जो हैं वो अलग अलग यूथ के लिए, जैसे जो जिस स्ट्रीम में, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बात की कि चर्चा की कि आईटी सेक्टर में जो एक स्टूडेंट जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है या बीएससी साइबर सिक्योरिटी कर रहा है या बीएससी एआई में कर रहा है, वो किस तरह का माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स आयुर्वेदा से रिलेटेड ऐसा कोई कोर्स करे जिसको, जो आगे चल के उसके करियर में उसको काम आए। तो इस तरह के माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज इन एसोसिएशन विद फैकल्टी, जो जिस फैकल्टी में मैं हूँ, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज, और इन कलेबरेशन विद यूनिवर्सिटी में एक सिल है, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उनके साथ एसोसिएट करके अलग अलग

0: के साथ हम लोग कुछ एक माइक्रो क्रेडेंशियल्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं यूथ के लिए, जो कि बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, जो आगे फर्दर इन कोर्सेज को, इन माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज को करके फर्दर अपना उसको जो है कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने करियर को इन्हांस करने के लिए. तो एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे एक तो हमारा स्टैंडअलोन कोर्स है इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा एंड इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक डाइटिक्स. इसी तरह से फर्दर हम लेके आ रहे हैं कुछ एक स्टैंडअलोन माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज, जैसे कि आयुर इन्फॉर्मेटिक्स. आयुर इन्फॉर्मेटिक्स है आयुर्वेदा और इन्फॉर्मेटिक्स को जोड़ के, तो इस तरह. और उसका प्रॉपर हम एक्रेडिटेशन प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे, आगे फर्दर जो है वो उस तरह से उसको फॉलो करके बिल्कुल उसको बढ़ा के प्रॉपर एक्रेडिटेशन उसका करके, उसको जो भी यहाँ का एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का है या मॉरिशस के एजुकेशन सिस्टम का है, तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज लाएं और फिर फर्दर जो है वो फुल फ्लेज्ड जो हमारा आयुर्वेद का सिस्टम है उसको धीरे धीरे धीरे धीरे उसको भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें.
1: यानी जितना मैं समझ पाई हूँ, जो लोग, जो स्टूडेंट्स बीएससी के कोर्सेज करेंगे जो हेल्थ रिलेटेड होंगे, तो क्या उनके सिलेबस में या उनके कोर्स में कोई ऐसा मॉड्यूल रहेगा जो आयुर्वेदा को लग कर होगा?
0: वो भी कोशिश करेंगे हम कि उनके जो कोर्सेज में कुछ मॉड्यूल भी हम इंट्रोड्यूस करें, बट एक सेपरेट जो है वो माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्सेज, जिसको माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स बोलते हैं हैक की तरफ से, जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से
1: थोड़ा डिटेल होगा
0: जो कि शॉर्ट कोर्सेज ही होंगे, बट वो अगर वो करते हैं तो उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो अपनी फील्ड को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आयुर्वेद को आगे. मतलब
1: यानी इसमें कोई डिप्लोमा कोर्सेज भी होंगे जैसे
0: वो भी कोशिश कर रहे हैं हम लाने की, डिप्लोमा कोर्सेज भी लाने की कोशिश कर रहे हैं,
1: क्योंकि कई सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है कि छोटा सा मतलब उसके बारे में जानकारी ही भले उनको मिल जाए, या तीन साल का जो कोर्सेज होता है
0: वो भी अंडर प्रोसेस है, वो भी जल्द हम कोशिश करेंगे कि डिप्लोमा कोर्सेज भी लेके आएं.
1: बिल्कुल, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आयुर्वेदा में इंटरेस्ट रखते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ओर से ये कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को अब्रॉड जाकर इसके बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है. पर जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि ऑनगोइंग प्रोसेस है और बहुत सारी ऐसी जानकारी, बिल्कुल अभी थोड़े ही समय में हो सकता है कि आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी जो खासकर जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले के तरह आगे अब्रॉड जाकर पढ़ाई करके वापस आते थे, हो सकता है कि अब मॉरिशस में ही ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल होने लगे. और जैसे ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और जैसे डॉक्टर जी ने अभी भी बताया कि बिल्कुल इस पर काम किया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेदा को लगकर आप सीख सकते हैं मॉरिशस में और आने वाले समय में, जहाँ पर एआई का पूरा उपयोग लगभग कहते हैं ना कि अब तो ज़िंदगी एआई के द्वारा ही हम आगे बढ़ा पाएंगे. और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो नई तकनीकों को आप प्राचीन पद्धतियों के साथ जोड़ के किस तरह से एक इनोवेशन ला सकते हैं, समाज में किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है. और जब स्वास्थ्य की बात आती है और जहाँ पर आयुर्वेद बिल्कुल एक गारंटीड पद्धति है जो बिल्कुल अपनाई जाए जीवन शैली को बदलने के लिए, तनाव से मुक्त होकर जीवन किस तरह से जिया जाए, ये सारी चीज़ों को हम नई पद्धतियों के साथ जोड़कर एक नया जीवन किस तरह से जन्म ले सकता है, इस पर बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं. और आज आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर जी ज़रूर हमारे श्रोताओं को ये बताते चले, अब जैसे मॉरिशस में कुछ दिनों से जोरों की ठंडी हवाएँ चल रही है, ऋतु में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, तो ऐसे परिवर्तन जीवन परिवर्तन में किस तरह से दिनचर्या को आप ढाल सकते हैं जब आप एक आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, तो आज के समय में आयुर्वेदा क्या मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी यही है कि भाई गोली खाओ और अपने दुख अपने जो शरीर के रोग है उसे दूर भगाओ, पर आयुर्वेदा इस पर किस तरह से बिल्कुल अमल करता है.
0: आपने एक बात बोली कि ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे जो आयुर्वेद संहिताएं हैं उसमें इसको बोला गया है ऋतु संधि. ऋतु संधि मतलब कि एक ऋतु से जब हम दूसरी ऋतु में जाते हैं, तो मॉरिशस में अभी वही वक्त चल रहा है,
1: सही,
0: है ना,
1: सही.
0: तो उसकी वजह से क्या है, कभी तो हमें सर्दी लगती है और कभी हमें लगता है नहीं नहीं अभी पंखा चला सकते हैं, ठीक है, अभी गर्मी है. तो ये जो सीज़न होता है ना, ये एक इनवाइटिंग सीज़न होता है जिसको बोलते हैं कि डॉक्टर सीज़न भी बोल सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे कि फीवर होना या फिर हेडेक्स होना, मेटाबॉलिज्म भी जो बॉडी का होता है, डाइजेशन जो होता है, डाइजेस्टिव पावर जो होती है, ऋतु संधि चाहे वो किसी भी देश में हो, वो एक साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो वो एक ट्रांजिशनल फेज़ होता है.

0: जैसे कि उस ट्रांजिशनल फेस में हमारी बॉडी जो है वो इंक्लाइंड होती है टुवर्ड्स कि हमारी डाइजेस्टिव फायर कम होती है. डाइजेस्टिव फायर कम होने की वजह से क्या होता है कि हमें भारी खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए. यूजली आयुर्वेद में ये बोला गया है कि ईजीली डाइजेस्टेबल जो फूड होता है ऋतु संधि के टाइम पे, हमें वो सबसे पहला टिप मैं इस माध्यम से यही देना चाहूँगी श्रोताओं को कि बिल्कुल ईजीली जो डाइजेस्टेबल फूड होता है इस सीज़न में पर्टिकुलरली, कंसिडरिंग कि हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है फायर है वो लो होती है, मेटाबॉलिज्म हमारा इतना फास्ट काम नहीं करता है, इसलिए हमें जितना इजीली जो डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें हैं वो खानी चाहिए. ठीक है,
1: बिल्कुल.
0: दूसरा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना या कोल्ड बीवरेजेस ये सब लेना वो इस सीज़न में हमें अवॉइड करना चाहिए. नॉर्मल जो है वो वाटर उसका इनटेक करना चाहिए. तीसरा जो है कुछ एक जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करने वाली जो हर्ब्स होती हैं, किचन हर्ब्स होती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा हमें साथ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए. जैसे कि जिंजर है, ठीक है, जिंजर को ले सकते हैं, है ना. हल्दी तो हम लेते ही हैं, हल्दी का सेवन तो करते ही हैं,
1: इसी तरह से
0: लौंग भी. हाँ जी, और फेनिल जो है सौंफ, है ना, वो डाइजेशन को अच्छा रखती है. तो फेनिल सोक्ड वाटर जो है या फिर बॉइल्ड फेनिल के साथ जो बॉइल्ड वाटर है अगर हम वो डेली लेते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अगर हम अजवाइन डाल दें, वो डिपेंड करता है किसी को बहुत ज़्यादा अगर गर्मी नहीं अंदर होनी चाहिए तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो या कुछ हो तो हल्की मात्रा में अगर हम अजवाइन और सौंफ का पानी बॉयल करके लेते हैं तो वो भी हमारे डाइजेस्टिव फायर को ठीक रखता है. कोशिश करें कि पेट साफ रहे, कॉन्स्टिपेशन हमें नहीं हो, ठीक है ना. तो फाइबर रिच जो है वो फूड जो है वो लेना चाहिए. तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम जैसे कि खट्टी चीज़ें या जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, थोड़ा सा इस मौसम में हमें फास्टिंग की तरफ भी जाना चाहिए. मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो श्रोताओं को कि इस सीज़न में थोड़ा सा फास्टिंग की तरफ भी अपना रखें. अगर हफ्ते में एक बार भी अगर आप फास्ट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसका रिजुविनेशन हो जाता है.
1: डॉक्टर जी, यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि मॉरिशस में जिस तरह का ईटिंग हैबिट्स है, कई बार फास्टिंग जब हम बात करते हैं लोगों को ये लगता है कि मतलब फास्टिंग मतलब कुछ भी हो मीठा खा सकते हैं.
0: फास्टिंग का मतलब पर आप थोड़ा सा बताएं. फास्टिंग का मतलब है कंप्लीट एब्सोल्यूट रेस्ट टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम.
1: बिल्कुल,
0: ठीक है. मैं ये नहीं कहती कि आप फास्टिंग को पूरा सुबह से लेके रात तक आप कुछ नहीं खाएं. अगर आप शाम को 6 बजे 7 बजे कुछ खाया है तो नेक्स्ट डे तक अगर आप दिन के 12-1 बजे तक भी कुछ नहीं खाते हैं तो आप ये सोचिए कि शाम के 6 बजे का खाया हुआ नेक्स्ट डे आप 12-1 बजे अगर कुछ खा रहे हैं तो आपने कितना रेस्ट अपनी बॉडी को दिया.
1: सही.
0: जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आपके स्टमक को, लिवर को, पैनक्रियास को कितने खुश हो जाएंगे वो कि हमें रेस्ट मिल गया है, हमें कुछ करने को
1: काम नहीं
0: करना पड़ रहा. तो वो जितना भी है वो उससे क्या है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलती है, आपके जो एंजाइम्स हैं वो और अच्छे से काम करते हैं. तो एब्सोल्यूट आप मत करिए, क्योंकि रात भर तो आप सोए हैं. उसके बाद 12-1 बजे तक तो मुझे लगता है कि हम इजीली कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं. और फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप फास्टिंग वाली जो पदार्थ है वो और ओवरलोड अपने आप को कर लीजिए, ठीक है ना. एब्सोल्यूट फास्टिंग का मतलब है एब्सोल्यूट फास्टिंग. 12-1 बजे तक फास्टिंग कीजिए, उसके बाद वन टाइम जो है वो एक हल्की डाइट जो है वो लीजिए. इस सीज़न में खिचड़ी, दलिया, ऐसी चीज़ों को लेना जो है वो जो इजी डाइजेस्टिबल हैं. तो आप देखिए, आपको कई ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेडिसिन्स की.
1: सही.
0: अनटिल एंड अनलेस कोई एक्यूट एमरजेंसी इशू नहीं है, आपको कोई भी एंटा एसिड्स, सर दर्द की दवाई, फीवर की दवाई, पेन किलर्स, पेन्स भी, हमें ऐसा लगता है पेन का क्या लेना देना हमारे खाने से, इन सब चीज़ों का लेना देना होता है. पेन्स भी आपकी जो है वो बॉडी में अगर हैं किसी और, हाँ मतलब कोई पैथोलॉजिकल पेन है या किसी गंभीर बीमारी से है वो एक अलग बात है. एक होता है ना एक जनरलाइज फटीग रहना बॉडी में, ठीक है, मतलब एक
1: लेथार्जिक
0: फील होना, लो एनर्जी फील होना, इसमें ये बहुत सिंपल टिप्स हैं. आप अपनी डाइट ठीक रखिए, आप अपनी नींद ठीक रखिए, आप अपना लाइट कोई एक्सरसाइज डेली, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 पिलर्स ऑफ लाइफ जो आयुर्वेद में बताए गए हैं. आहार मतलब डाइट, निद्रा मतलब स्लीप, ब्रह्मचर्य मीन्स प्रॉपर लाइफस्टाइल. इन तीन चीज़ों के अगर ऊपर हम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा भी वर्कआउट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें हर वक्त पिल्स लेने की ज़रूरत है, हर वक्त हमें जो है वो फटीग और लो एनर्जी, मतलब ये आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, ये कर सकते हैं हम. क्योंकि मीठा जब हम जितना ज़्यादा खाते हैं इंस्टेंट तो हमें वो एनर्जी देता है.
1: सही.
0: वो

0: अंदर वो हमारा कितना डैमेज करता है वो हमें पता भी नहीं होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि एक कुछ मीठी चीज़ खा ली, अच्छा लग रहा है, थोड़ा हैवी मतलब एनर्जी लग रही है, पर वो अंदर जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है।
0: खाना चाहिए मीठा। देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 80% आप अपनी फिजिकल बॉडी के लिए टारगेट रखिए और 20% अपनी सोल को भी नरिश कीजिए। तो हमें अपने 20% सोल को भी नरिश करना है। ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल ही अपने आप को उन सब
1: लेट गो करना।
0: यस, हर चीज बैलेंस में रहते हुए।
1: बिल्कुल। तो बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम के लगभग समाप्ति तक हम आ पहुँचे हैं। वर्ल्ड आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा 23rd of September यानी 23 सितंबर को। जाते जाते डॉक्टर पूजा जी, आप फिर एक बार हमें बता दीजिए कि कौन सी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक, कहां पर जी। तो हमारी जो जनता है अगर वो विजिट करना चाहे तो कितने मतलब वो
0: जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी हमने स्टार्ट करी हुई हैं। हम अलग अलग विलेजेस में जा रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए आयुर्वेद के जरिए कि आयुर्वेद को अपनाएं और कैसे आप अपना आयुर्वेद को अपनाकर अपनी जीवन शैली को अच्छा रखकर एक स्वस्थ जो है वो एक मॉरिशियस हमारा जो है वो डिजीज फ्री रहे, तो उसके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज चल रही हैं। इसके साथ साथ हम जो है वो 23 सितंबर को IGCIC में हाई कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी जो है वो एक प्रोग्राम वहाँ पर हम कर रहे हैं। तो भारत में तो चल ही रहा है वहाँ पर, और भी सभी देशों में आयुर्वेदा डे को लेके बहुत अच्छे से सेलिब्रेशंस जो हैं वो हो रही हैं।
1: और यहाँ पर IGCI में कितने बजे से कितने बजे तक
0: होगा? सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक जो है वो पूरा प्रोग्राम है। एग्जीबिशंस भी रहेंगी और कॉन्फ्रेंस भी रहेगी उसमें।
1: बिल्कुल। तो जी हाँ, जनता से मांग है अगर आप भी आयुर्वेदा के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी उपलब्ध करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइए। और बिल्कुल 23 सितंबर जो मनाया जाएगा विश्व आयुर्वेदा दिवस के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, आज हमारे मंच पर डॉक्टर पूजा सबरवाल उपस्थित रहीं और बिल्कुल हाईकम ऑफ इंडिया की सहयोग से, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से वे यहाँ पर स्थित हैं और एज आयुर्वेदिक चेयर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में स्थित है, उसी के सहयोग से आज का ये कार्यक्रम हमने आप तक पहुंचाया। और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में सहयोग प्राप्त हुआ टेक्निक पर हमारे साथ बने रहे फैजान उरूसा हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, और रत्नमाला मंगरू जी जो हमारे साथ बनी रहीं एज अ प्रोड्यूसर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। मैं थी रत्ना और बिल्कुल आपका साथ दे रही थी इस वक्त रेडियो मनोरंजन पर, रेडियो मॉरिशस पर। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: कड़ी मिला लीजिए, दिन के 10 बज रहे हैं। सुनते हैं देश विदेश की खबरें, अदिति से आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के शोधकर्ताओं ने मॉरिशन समंदर में उतारे गए जहाज़ों के मलबों पर एक अध्ययन चलाया है। ये बात सामने आई है कि लंबे समय तक पानी में रहने वाले मलबे मछलियों का आश्रय बनते हैं, जबकि उतारे गए नए और मजबूत मलबे कोरल्स के विकसित होने के लिए उचित जगह बनते हैं। शोध कार्यों से ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार इस्तेमाल न किए जा रहे और जहाज़ों को समंदर में स्थापित कैसे किया जाए ताकि जैव विविधता के संरक्षण में भी प्रयोग मिलाए जा सके। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उसके डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में भारतीय सरकार की तरफ से समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसके तहत कर्मचारी

0: कर्मचारियों को नए उपकरणों के इस्तेमाल के लिए तैयार करने के वास्ते प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुरक्षित माहौल में बंदरगाह में अलग अलग कामों की प्रैक्टिस के लिए अगले अक्टूबर महीने से उनके लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इस ट्रेनिंग का मकसद है उनकी प्रतिभाएं बेहतर करना और उन्हें बंदरगाह सेक्टर में होने वाले बदलावों के लिए तैयार करना। याद रहे कि बंदरगाह के लिए नए क्रेन की खरीद के वास्ते कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन ने 7 सितंबर को पोर्ट लुइस में एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए 2.7 बिलियन रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। इस परियोजना के लिए एक दूसरा चरण भी निर्धारित है जिसके तहत नए उपकरणों की खरीद की जाएगी और उसका पूरा खर्च भारतीय सरकार वहन करेगी। स्कूली छात्रों के लिए जल्द ही एक नया प्रोग्राम शुरू होगा जो मिलिट्री अनुशासन से प्रेरित होगा। इस साल फिर से नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नामक ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 2 हफ्तों के लिए ये पायलट स्तर पर चलाया जाएगा जिसमें मॉरिशस रोड्रिग्स और अगालेगा के सरकारी और प्राइवेट माध्यमिक स्कूलों के 200 छात्र शामिल होंगे। इस परियोजना का मार्गदर्शन सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार ओंग बुन हुई चलाएंगे जिसका सैन्य क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। वे अनुशासन, सहन शक्ति, दृढ़ता, नियमों के पालन और टीम वर्क जैसे मूल्यों पर बल देंगे। छात्रों के अलावा शिक्षकों को भी जरूरी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि 2 हफ्तों के प्रोग्राम के बाद भी वे स्कूल में छात्रों के बीच इन सिद्धांतों को प्रोत्साहित कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ओमान मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर का कहना है कि हॉर्मुज जलमार्ग में कल एक तेल टैंकर पर हमला हुआ जिसके बाद 2 नाविक लापता बताए जा रहे हैं जबकि 23 अन्यों को बचाया जा सका है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड पेलगा सेबास्टोपोल में बासठ साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री झरीलाल रामसरन जो गिरीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी रामसरन के मकान रॉयल रोड पेलगा सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इमेजिन कॉन्डोमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड मिडलैंड्स में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती लक्ष्मी सिद्धयाल पैदाइशी नाम जगेसर जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके पोते श्री साहिल सिद्धयाल के मकान रॉयल रोड मिडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर
1: बुधवार 16 सितंबर घड़ी मिला लीजिए दिन के 10:05 हो चुके हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। भक्ति धारा ऐसे कार्यक्रम को लेकर हम जुड़ चुके हैं एक बार आपकी सेवा में। अभी से लेकर दिन के 11 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। और चलिए, आज बुधवार है, भगवान गणेश की आराधना होती है और कल हमने गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया। अभी भी बहुत से भक्तों के घर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना हो रही है। बहुत से लोग अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की उपासना करते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं। कहते हैं ना कि भगवान की जब हम बात करें, भगवान गणेश की बात करें, वो हमारे जीवन से विघ्नों को दूर करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं और जो है उनकी कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। और आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। तो अभी के लिए भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का शुभ

चलिए, ईश्वर को सच्चे मन से पुकारने की आवश्यकता होती है, ईश्वर को दिखावा करके प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी प्रार्थनाओं में जितनी सच्चाई होती है, हमारी प्रार्थनाओं में जितनी अच्छाई होती है, मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता होती है, उतना ही हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। और जब ईश्वर से जुड़ जाते हैं तब ऐसा लगता है कि जीवन में किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर ही है जो हमें पार लगाते हैं।

0: जी हाँ, ईश्वर ही है जो हमारा उद्धार करते हैं, ईश्वर ही है जो हमें पार लगाते हैं। अभी के लिए भक्ति सागर नहीं, भक्ति सागर में हम तो डूबे हुए हैं, लेकिन भक्ति धारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए, भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी के लिए समय हुआ है हम सुने कार्यक्रम विनय अंजलि डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में, और इस कार्यक्रम में उनके साथ हम सुनेंगे पंडिता सिरतन जी को भी। तो चलिए उनको सुनते हैं।
1: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
2: प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। विनय अंजलि सेवा में प्रस्तुत है। इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। शुभारंभ कर रहे हैं एक भजन से। गायक हैं श्री प्रकाश आर्य जी। आप रसास्वादन करें।

0: श्रोताओं, स्टूडियो में हम स्वागत करना चाहते हैं पंडिता प्रेमिला शिरतन जी को। आप बारंबार उनको सुना करते हैं, आज भी वे किसी संदेश को लेकर उपस्थित हो रही हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि मंत्र पाठ करें और उस मंत्र पर अपने विचार व्यक्त करें। पंडिता प्रेमिला शिरतन जी।
1: ओम भवस्वदेवायुष्गिन्द्र गच्छतु ते मद वायुमारोह धर्मणा जीव भ्रमे बहु योनि आयु अपनी भो परमेश्वर से प्रीत कर मिटे बहु विधरो प्राणायाम को साध कर उड़ले ऊँचे आकाश मोक्ष के सुख को ग्रहण कर जा प्रीतम के पास। सम्माननीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। श्रोताओं, जब हम शीत से आतुर हो जाते तो अग्नि के समीप जाने से शीत से छूट जाते हैं। वैसे प्रभु की समीपता पाकर सब दोष कष्ट रोग दुख से छूट जाते। हम परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव से पवित्र रहते हैं। सभी प्रेम भाव से जीवन यात्रा में असीम शांति पाते रहते हैं। हम जीव सदा अनेक योनियों में जन्म मरण पा चुके हैं। अब मानव योनि में जन्म लेकर पूर्ण आयु भोगना चाहते हैं। हे प्रभु, आपसे प्रीत जोड़कर प्रेम भाव से असीम प्यार से आकर्षक बनने की प्रार्थना है। आप की शुद्ध संस्कृत सुसंस्कृत सत्यपूर्ण मधुर ओजस्वी वाणी की सहानुभूति विनम्रता की जोश उत्साह उमंग से भरे रहने की चाह है, ताकि आपसे प्रीत बने तो रहे। हे परमेश्वर, आपको प्रीत कर महान परिश्रमी कर्मठ बलवान बनकर बहुत से रोगों से छूटना चाहते और लंबी आयु तक जीना चाहते। यदि हम रोग से बचने चाहते तो दुख के कांटे से दूर सुख के बीज बोकर शांति पाने की हमें प्रयास करनी चाहिए, ताकि हम प्रभुवर का सहयोग सुरक्षा तो पा सकें। श्रोताओं, बिखरने के लिए विकल्प बहुत हैं, संवरने के लिए एक ही संकल्प की चाह काफ़ी है, जो हृदय भेदने वाले न होकर शांति प्रदान करे। इसलिए शाम सवेरे संध्या करते हुए प्राणायाम को साध लेते पूरा जीवन जीने के लिए शारीरिक मानसिक बौद्धिक पारिवारिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय सुख शांति से संपन्न जीवन जीने की चाह रहती, हम योग्य बनकर शांति की दिशा में अपना कदम बढ़ाते रहते हैं। मन में शुद्ध पवित्र निर्मल विचार संजोए रखते हैं, जिसे इच्छित शांति से खुशी और आशा की पूर्ति की दिशा में परमात्मा प्रेरित कर तीव्र इच्छित वस्तु पाकर लक्ष्य के निकट पहुँच कर शांति पा सकें। परमात्मा के पास क्या कुछ नहीं, जिसे मोक्ष के सुख शांति के लिए लालसा तीव्र होती है। जो कुछ हम पाना चाहते, ईमानदारी के प्रयत्न और शांति सच्चाई की श्रेष्ठ बुद्धि से उसको पवस्व प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पवस्व देव आयुष गिंद्रम, हे शांति।

शांति के सागर परमात्मा हमें लंबी आयु के लिए चरित्रवान, विद्वान, गुणवान बनकर केवल आशा, उमंग, उत्साह, उल्लास और कर्मठता के विचारों से मन, बुद्धि, आत्मा को शांत कर आयुष्मान बनते हैं। शारीरिक बल के मानसिक शांति से अविश्वास, निराशा, कुविचार से उत्साह भंग, असफलता तथा पराजय का अनुभव न हुए देव समान दिव्यता पूर्ण आयु नहीं पा सकते हैं। इसलिए हम जीव अनेक योनियों में भ्रमण कर चुके हैं, इस मानव योनि में पूर्ण आयु जीने की कामना करते हैं। हमें वर्तमान जन्म में शांत पूर्वक सुख भोगने के लिए धर्मात्मा, महात्मा, सन्यासी समान महारथी बनकर लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, ताकि हमें प्रभु संग में रहने में घबराहट, न चिंता, न अशांति होगी। हम एकाग्रह चित होकर अपना भाग्य बदलना चाहते, जहाँ दीर्घायु तक परमात्मा विश्वास की लालसा से हर कार्य संपन्न कर सकें, अपनी तरक्की को स्थायी सुखदायी बनाने के लिए भौतिक आध्यात्मिक दोनों की आवश्यकता होती। जब भौतिकता थकाने, उलझाने, डुबोने लगे तो आध्यात्मिकता पतवार बन उबार सके। श्रोताओं, लंबी आयु के लिए प्राणायाम से शारीरिक बल, सुविचार एवं अच्छी सोच से मानसिक बल, श्रेष्ठ ज्ञान से बौद्धिक बल और परमात्मा प्रिय ध्यान से आत्मिक बल बढ़ाकर लंबी उम्र शांति से प्राप्त कर सकते हैं। आगे मंत्र का स्वर्णिम संदेश इस प्रकार है, गच्छतु ते मदह। हमें दिव्य गुण युक्त सोम की ओर जाने के लिए परमेश्वर दिव्य और महान ज्ञान युक्त कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ से हर्षकारक प्रभाव प्राप्त करना है, जिससे हमारे साथ सभी खुशी तो रह सकें। हम सर्वशक्तिमान के वंशज होने से हमारा उद्देश्य महान बने, जिसके लिए योग्यता एवं सामर्थ्य की आवश्यकता होती। अपने आत्मविश्वास से हर समय उत्साह में भरकर कार्य में लगे रहने से ऊंचे उठते हैं, जिसे खुशी शांति से भरे रहते हैं। गच्छतु ते विश्वास, आशा, निष्ठा जो आदर्शों की बाहरी रूपरेखा, जो ठोस सच्चाई के रूप में देना चाहती हैं। इसलिए अपने प्रयत्न से कर्म और सहारा लेकर प्रबल विश्वास के साथ अपनी कार्य शक्ति को बलवती होनी चाहिए, जिस ओर जाकर हम आनंदमय रहेंगे। इसलिए ईश्वर से हमारी लालसा पूर्ति के लिए उदात्त इच्छा, ऊंची आकांक्षा की चाह दी, ताकि हर्षित जीवन बनाने की कामना पा सके। सहर्ष ईश्वर तुल्य योग्यता धैर्य रखकर परिश्रम से सफलता की ओर जा सके। श्रोताओं, जीवन में प्रभु प्रेम सिंचित अवश्यमेव होगा, परमात्मा प्रीत समर्पण ही। गच्छतु ते मद, आनंद की ओर जाना है, इसलिए हमारा हर पल आपके बिना न बीते। हम लोग आपके प्रीत में डूबे रहें। अंत में मंत्र कह रहा है, वायु मारोह धर्मना। हे ईश्वर, हमें अनेक रोग से छुटकारा, वायु के प्राण शक्ति की चाहें, ताकि हमारे शरीर रोग से खाली तो रहे, रोग रहित जीवन जीने की विनय सदा तो करते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने की खुशी से बड़ी अनमोल दवा कुछ नहीं है। यदि एक अंग भंग या भ्रष्ट हो जाए तो संसार की सभी संपत्ति से हम खरीद नहीं सकते। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम एवं शाम सवेरे देव यज करते हुए प्राणायाम करना अति आवश्यक है। वायुर मा रोह, प्राण शक्ति से तन मन प्रभु कृपा से पाही लेते। हवा का स्वभाव ऊपर चढ़ना और फैलाना तथा विस्तार करना है, जिसके बिना हमारा दम घुट जाता, जो हमारे हर एक अंग में शक्ति भरकर स्फूर्ति देती। पूर्ण आयु स्वस्थता के लिए परमात्मा बल से भी भरपूर रहने की कृपा चाहते। जैसे सूर्य चमकने के लिए जल कर तपता रहता, उसी प्रकार स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रभु रत्न बन रोग के दाग लगने से बचे।

0: रहने पड़ते हैं। आज हम जितने तन से दुखी नहीं उतना मन से दुखी हैं, इसलिए परमात्मा संकल्प से प्रण करती हमारी अंतरात्मा में आपका संबंध गहरा रहे। श्रोताओं, हम हर्षकारक जीवन तो जीते हुए यज की सुगंध फैलाकर सभी कीट कृमि कीटाणु नष्ट करने में सहयोगी बने रहते। इसी कारण दिव्य गुण युक्त वायु से सांस लेकर हम शांत तो रहते। बीमारी दुख क्लेश बढ़ते तो सोम याग यज्ञ वेदानुकूल करने को ठानते हैं, ताकि सबकी इच्छा पूर्ण करने की प्रभु से विनय करते। जैसे वाजिना सुकाशः आरावह सोमासह बलिष्ठ वेग वाले वीरवर्धक वायु अग्नि से मिलकर सोम प्रदान करती, जिसे ऊर्जा पाकर आनंद से मोक्ष की सुख ग्रहण कर श्रेष्ठ योनि में जन्म पाकर पूर्ण आयु शांतिपूर्वक भोगते हैं। जो विनय अंजलि का संदेश रहा, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रोतागण, अभी आपने पंडिता प्रेमिला श्रीरतन जी को सुना। हम उन्हें बहुत धन्यवाद करते हैं। आशा है कि आपने उनके विचारों से लाभ उठाया होगा। इस कार्यक्रम में साथ दिया है श्रीमती अंजू लक्ष्मण जी, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। आपने सुना, धन्यवाद। पंडित महेश जी को भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप उनका एक भजन सुनने जा रहे हैं, और इसी भजन के बाद हम आपसे अनुमति लेंगे। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
1: तो श्रोताओं, डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में हम विनय अंजलि इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। भक्ति धारा इस कार्यक्रम से आप जुड़े हैं, चलिए साथ मिलकर ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं जीवन में जो है, हमें जो कुछ होता है हमारे साथ, जो कुछ हम पर व्यतीत होता है या जो कुछ हम अपने आसपास देखते हैं, इन सभी चीज़ों से, इन सभी घटनाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जो हालात होते हैं, जो परिस्थितियाँ होती है, जो व्यक्ति है जिनसे हम मिलते हैं, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, अच्छा बुरा। और हम पर निर्भर करता है कि इन सीखों को हम अपने जीवन में किस प्रकार उतारते हैं।

जी हाँ, सुख की कामना हर कोई करता है श्रोताओं, अपने जीवन में सुख हर कोई चाहता है, समृद्धि हर कोई चाहता है, और हर कोई इसके लिए प्रयास करता है। और जो भी प्रयास करता है वो प्रयास कभी भी विफल नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, कोई भी परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता है, आज नहीं तो कल परिश्रम का फल

अवश्य मिलता है। कभी कभार हम में जो है धैर्य कम हो जाता है, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि निराशा में भी कहीं ना कहीं आशा छुपी हुई है।

चलिए यहाँ पर भक्ति धारा इस कार्यक्रम में अब हम बढ़ते हैं इस अगले भक्ति गीत की ओर और इसके साथ जो है ईश्वर का ध्यान हम करेंगे। कहते हैं ना कि सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा जाए तो भक्तों की प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं।

चलिए ईश्वर भक्तों की पुकार, भक्तों की प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं। हमें कभी भी ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहिए, ईश्वर पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम आज के भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। इस अंतिम आरती के साथ आपसे हम विदा लेंगे। सवेरे के 6 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। 11 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद सैयदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा। अगली भेंट तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। पेंटागन की नई रिपोर्ट सागर समझौते में कानूनी तौर पर कोई बदलाव नहीं करती, लेकिन ये जिगो गौसिया के राजनीतिक महत्व को और मजबूत करती है। इस दस्तावेज में खास उल्लेख किया गया है कि ये सैन्य अड्डा अमेरिकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब के तौर पर काम कर रहा है, खासकर ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के संदर्भ में, जहां मॉरिशस और यूके सागर समझौते को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं ये नई स्थिति जिगो गौसिया मिलिट्री बेस से जुड़ी सुरक्षा और निगरानी गारंटी पर असर डाल सकती है। अक्टूबर महीने से पर्यटन क्षेत्र के कर्मचारियों का योगदान टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में दुगुना होकर मासिक तौर पर 20 रुपए से 40 रुपए होगा। एम्प्लॉयरों के लिए ये कंट्रीब्यूशन 60 रुपए से बढ़कर 80 रुपए किया जाएगा, जबकि स्वतंत्र कलाकारों का योगदान 80 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए किया जाएगा। इसके साथ ही इस फंड के अंतर्गत उपलब्ध 11 सुविधाओं में बदलाव लाए जाएंगे, जिसके लिए 14.5 मिलियन रुपयों का बजट निर्धारित किया गया है। ये ग्रांट्स शादी, मृत्यु, शिक्षा, रिटायरमेंट और विदेश में चिकित्सा सहायता जैसे खर्चों के लिए उपलब्ध हैं। सदस्यों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में टूरिज्म एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एक मेंबरशिप कार्ड और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू करेगा। दिसंबर 2024 से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने 450 मामलों की कार्रवाइयां चलाई हैं। इनमें से वर्तमान में 104 मामले अदालत के समक्ष हैं, जबकि 1800 मामलों की जांच चल रही है। कुछ मौजूदा संवेदनशील मामलों के चलते एफसीसी के जांचकर्ता और निदेशक कुछ समय से निशाने पर हैं। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान एफसीसी के निदेशक संजय दावधारी

0: ने बताया कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले मार्च महीने में उन्हें एक लिफाफा मिला था जिसमें दो गोलियां थीं और धमकियों से भरा एक पत्र भी था। ऐसी स्थिति जांचकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, लॉस एंजलिस में एक बस दुर्घटना का कवरेज करते हुए एक न्यूज हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, इनमें एक राहगीर भी शामिल है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रूट पेलगा सेबास्टोपोल में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री झरीलाल रामसरन जो गिरीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी रामसरन के मकान रॉयल रूट पेलगा सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए में जिनका उन्दमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे आर्ट ऑफ 2 PM रॉयल रोड मिडलैंड्स में 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती लक्ष्मी सिद्याल पैदाशी नाम जोगेसर जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके पोते श्री साहिल सिद्याल के मकान रॉयल रोड मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: शम्मे फरोजा

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सब चीजों का मालिक है, यानी वो कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और आखिरत में भी उसी की तारीफ है, और वो हिकमत वाला है खबरदार है। जो कुछ जमीन में दाखिल होता है और जो उसमें से निकलता है, और जो आसमान से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है, सब उसको मालूम है, और वो मेहरबान है बख्शने वाला है।

और काफिर कहते हैं कि कयामत की घड़ी हम पर नहीं आएगी। कह दो, क्यों नहीं आएगी? मेरे परवरदिगार की कसम, वो तुम पर जरूर आकर रहेगी। वो परवरदिगार गैब का जानने वाला है, जर्रा भर चीज भी उससे पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना जमीन में, और कोई चीज जर्रे से भी छोटी या बड़ी नहीं, मगर किताब रोशन में लिखी हुई है।

इसलिए कि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको बदला दे, यही हैं जिनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है, और जिन्होंने हमारी आयतों के बारे में हमें हराने की कोशिश की उनके लिए सख्त दर्द देने वाले अजाब की सजा है।

और जिन लोगों को इल्म दिया गया है वो जानते हैं कि जो कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो यकीनन हक है और उस अल्लाह का रास्ता बताता है जो गालिब है काबिल-ए-तारीफ है।

और काफिर कहते हैं कि भला हम तुम्हें ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम मर कर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे तो तुम नए सिरे से पैदा होगे, या तो उसने अल्लाह पर झूठ बांध लिया है या उसे जुनून है। बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो आफत और परले दर्जे की गुमराही में पड़े हैं। क्या उन्होंने उसको नहीं देखा जो उनके आगे और पीछे है, यानी आसमान और जमीन? अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। इसमें हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है एक निशानी है।

0: और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बरतरी बख्शी थी और कहा था, ऐ पहाड़ों इनके साथ तस्बीह करो, और परिंदों को उनका मुसख़र कर दिया, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा ज़िरहें बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो, जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूँ।
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

और हवा को हमने सुलेमान के ताबे कर दिया था, उसकी सुबह की मंजिल एक महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी महीने भर की होती, और उनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया था, और जिन्नों में से ऐसे थे जो उनके परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के खिलाफ करेगा उसको हम जहन्नम की आग का मजा चखाएंगे। वो जो चाहते ये उनके लिए बनाते, यानी कले और तस्वीरें और बड़े बड़े लगन जैसे तालाब और देगें जो एक ही जगह रखी रहें। ए आले दाऊद, शुक्र करते रहो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े हैं।

फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादिर किया तो किसी चीज से उनका मरना मालूम न हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनके आशा को खाता रहा। फिर जब वो गिर पड़े तब जिन्नों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ में न रहते।

अहले सभा के लिए उनके वतन में एक निशानी थी, यानी दो बाग, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। कहा गया कि अपने परवरदिगार का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र करो। यहां तुम्हारे रहने को यह पाकीजा इलाका है और वहां बड़ा बख्शने वाला मालिक। तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया, बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाऊ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां। ये हमने उनको नाशुकरी की सजा दी और हम सजा नाशुकरे ही को दिया करते हैं।

और हमने उनके और मुल्क शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी एक दूसरे के मुत्तसिल देहात बनाए थे जो सामने नजर आते थे और उनमें आमद रफ्त का अंदाजा मुकर्रर कर दिया था कि रात दिन बेखौफ खतर चलते रहो। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार हमारी मुसाफतों में दूरी पैदा कर दे और उससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया तो हमने उन्हें नाबूद करके दास्तान बना दिया और उन्हें बिल्कुल मुंतशिर कर दिया। इसमें हर साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं।

और शैतान ने उनके बारे में अपना ख्याल सच कर दिखाया कि मोमिनों की एक जमात के सिवा वो उसके पीछे चल पड़े और उसका उन पर कुछ जोर न था, मगर हमारा मकसूद ये था कि जो लोग आखिरत में शक रखते हैं उनसे उन लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं मुमताज कर दें। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज पर निगहबान है।

कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल करते हो उनको बुलाओ, वो आसमानों और जमीन में जर्रा भर चीज के भी मालिक नहीं है और न उनमें उनकी शिरकत है और न उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। और अल्लाह के हां किसी के लिए सिफारिश फायदा न देगी मगर उसके लिए जिसके बारे में वो इजाजत बख्शे, यहां तक कि जब उनके दिलों से इस्तेराब दूर कर दिया जाएगा तो कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है, फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है और वो आली रुतबा है, ग्रामी कद्र है।

पूछो कि तुमको आसमानों और जमीन से कौन रिस्क देता है, कहो कि अल्लाह, और हम या तुम या तो सीधे रास्ते पर हैं या खुल्लम खुल्ला गुमराही में। कह दो कि न हमारे गुनाहों की तुमसे पुरसिश होगी और न तुम्हारे आमाल की हमसे पुरसिश होगी।

कह दो कि हमारा परवरदिगार हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर देगा, और वो खूब फैसला करने वाला है, साहिबे इल्म है। कहो कि मुझे वो लोग तो दिखाओ जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बनाकर उसके साथ मिला रखा है। कोई नहीं, बल्कि वही अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।

0: और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हमने तुमको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।
1: सदकल्लाहु अज़ीम। अभी आप समात फरमा रहे थे इस सूरह सबा की तिलावत। सूरह सबा हमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों की तरफ मुतवज्जा करती है और ये पैगाम देती है कि नेमतों का हकीकी हक शुक्र गुजारी है। हमारी ज़िंदगी, सेहत, रिस्क, अमन व सुकून, हमारे घर वाले, ज़मीन व आसमान और वो तमाम नेमतें जिनसे हम हर लम्हा फैज़याब होते हैं, सब हमारे रब का फ़ज़ल व करम है। खुश नसीब है वो बंदा जो नेमत मिलने पर अपने रब को याद रखे और दिलो ज़ुबान से उसका शुक्र अदा करे।

करे। मोहतरम सामेईन, शुक्र सिर्फ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि नेमत देने वाले रब को दिल से पहचानने और उसके अताअत में ज़िंदगी गुजारने का नाम है।

मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:27 हो चुके हैं। बुध का दिन है, सितंबर की 16 तारीख है और माह रबीउस्सावल की आज 4 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेजना शुरू कर सकते हैं, 5251707005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। आपको बताते चलें कि जुम्मा 18 सितंबर, जी हाँ, जुम्मा 18 सितंबर एक बार फिर हमारे साथ शम्मे फरोज़ा में मौजूद होंगे मशहूर व मारूफ नातवां, जो कि पाकिस्तान

0: पाकिस्तान कराची से तशरीफ लाई हैं इशरत तस्नीम साहिबा, आप सुनना मत भूलिएगा जुम्मा 18 सितंबर। अब आप समात फरमाएंगे खतीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। अम्मा बाद, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم ولكم وعليه وبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे वो जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी रहे दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सुग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हुजूर गौसुल आज़म महबूब सुबहानी कुतब रब्बानी किंदील नूरानी फ्यूज़ यजदानी हज़रत सैदना गौस पाक मुहयुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रदियल्लाहु तआला। बारहवीं शरीफ का महीना मुकम्मल हुआ, उसी के साए में उसी के दामन में ग्यारहवीं शरीफ के महीने का आगाज़ हुआ। 12 रबीउल अव्वल में सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत बसआदत और हुजूर का जश्न मुबारक, और उसी से फैज़ हासिल करते हुए इस रबीउस सानी के मुबारक महीने में दूसरी कायनात की फसल बहार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हुजूर के जिगर गोशा इमामुल औलिया गौसुल अगवास फ़र्दुल अफराद जय्यदुल अजियाद इमामुल औलिया इमाम रब्बानी हज़रत सैयदना महबूब सुबहानी कुतब रब्बानी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अब्दुल क़ादिर जिलानी है। दुनिया खूब अच्छी तरह जानती है जिस तरह से अंबिया व रसूलों के दरमियान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है, इसी तरह से औलिया उलमा सुलहा के दरमियान गौसे आज़म का मकाम व मर्तबा है। गौसे पाक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अल्लाहु अकबर कबीरा आपकी सआदत और आपकी अज़मत और आपकी बरकत मुक्तदर औलिया इज़ाम में से आपकी ज़ाते गिरामी है, और औलिया का मर्जे और मरकज़ है आपकी ज़ाते गिरामी। आपका नामी नामी मुहयुद्दीन, आपका लकब अबू मुहम्मद और आपकी कुन्नियत अब्दुल क़ादिर यही बहुत मशहूर हुआ। हज़रत सैदना आपका लकब मुहयुद्दीन हुआ, आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद हुई और आपका नाम नामी अब्दुल क़ादिर जीलानी हुआ। आपका नसब मुबारक मुहयुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल क़ादिर बिन अबी सालेह जंगी दोस्त बिन अबी अब्दुल्ला यहया जाहिद बिन मोहम्मद बिन दाऊद बिन मूसा बिन अब्दुल्ला बिन मूसा अल जून बिन अब्दुल्ला अल महद बिन हसन अल मुस

0: छठा सातवां आठवां दसवां यहां तक के 18 पारों की तिलावत मुकम्मल फरमा दी। अल्लाहु अकबर। उस्ताद हैरत ज़दा हैं, कभी वालदा का चेहरा देखते हैं, कभी वालिद को देखते हैं और कभी बच्चे को देखते हैं और कहते हैं आपने कहा पहली बार आया है और ये बच्चा 18 पारों का हाफिज है। हुजूर गौसुल आदम ने फरमाया सदकल्लाहुल अज़ीम। आपने फरमाया उस्ताद जी मैं पहली बार ही आया हूँ, आज से पहले कभी मदरसे में नहीं गया। तो उस्ताद ने कहा ये तुमने 18 पारे कहाँ याद कर लिए? तो कहते हैं उस्ताद जी मैंने ये 18 पारे अपनी वालदा की गोद में याद किए हैं। कहा कैसे? कि मेरी वालदा जब तक मुझे दूध नहीं पिलाती, जब तक कुरान की तिलावत नहीं कर लेती, मेरी वालदा हाफिज़ा है, ये वुजू बना करके तिलावत करते हुए मुझे दूध पिलाती थी, मैं गोद में याद कर लेता था। सुभान अल्लाह, क्या शान है जब माएँ ऐसी तकवा तहारत वाली पाकीज़ा होती हैं तो उनकी गोदों में पलने वाले दूध पीने वाले बच्चे भी इतने पाए के बुज़ुर्ग और वली होते हैं। आज हमारी माँ और बहनों ने वो तरीक़ा और दस्तूर छोड़ दिया है, पाकी और नापाकी का हमारे यहाँ ख्याल बहुत कम रहता है। हम ये नहीं देखते कि हम दूध के ज़रिए बच्चे को क्या डिलीवर कर रहे हैं और उसके पेट में क्या डाल रहे हैं। तभी आज न माँ का वक़ार है न बहन की इज्जतें हैं। आज बच्चे जवान होने के बाद अपनी माँ को आंखें दिखाते हैं, बाप को आंखें दिखाते हैं। ये क्या वजह है? कहीं ना कहीं हमारी तरबियत की कमज़ोरियाँ हैं। जब हम तारीख़ पढ़ते हैं बुज़ुर्गों की तो हमें ऐसे बहुत वाकियात मिलते हैं कि माँ की इबादत और रियाजत और माँ की खलवतों के ज़रिए, माँ की तहज्जुद की नमाजों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी औलादों को वली बना दिया। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर को देखो, जब उनकी वालदा ने कहा बेटा नमाज़ पढ़ा करो तो कहा अम्मी नमाज़ पढ़ने से क्या मिलेगा? फरमाया अम नमाज़ पढ़ने से शकर मिलती है। तो नमाज़ के लिए मुसल्ले पर जाते, वुज़ू बनाकर तो माँ मुसल्ला बिछा देती, नीचे शकर की पुड़िया बना कर रख देती और दुआ करती, और जब वो मुसल्ला उठाते तो शकर मिलती। इस बहाने से नमाज़ पढ़ाने का सलीका। और एक दिन वो आया कि कहीं दूर चले गए, शकर रखना भूल गई, तो कहा बारी ताला आज मैं झूठी पड़ जाऊँगी, माँ ने अपने हाथ उठा दिए, बारी ताला आज तू मेरी इज्जत बचा। जब उन्होंने मुसल्ला उठाया तो एक नहीं कई सारी पुड़ियाँ शकर की रखी हुई थी। ये अल्लाह की तरफ से इनाम था। आप हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अली को देखिए, 12 साल तक जंगलों में घूमते रहे, इबादत और मुजाहदात करते रहे। घर वापस पहुँचे तो वालदा ने कहा पानी का प्याला लाओ, प्यास लग रही है। पानी लेने गए तो घर के मटकियों में और घर के मशकीज़े में पानी नहीं था। बाहर लेने जब चश्मे पर गए, चश्मे पर कुएं पर, तो देर हो गई, देखा वालदा सो गई। और जब वालदा सो गई तो ये दिल में ख्याल आया पानी रख दूँ, फिर दिल में ख्याल आना नहीं खड़ा रहता हूँ, जब वालदा उठेंगी तो पानी का प्याला पेश कर दूँगा। शिद्दत की ठंड थी, पानी जम गया। जब वालदा तहज्जुद के लिए विदार हुई तो देखा सामने बेटा बायजीद खड़ा हुआ है पानी के, अम्मी जान पानी मांगा था, पानी पी लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कहा बेटे मैंने पानी मांगा था। क्या? हाँ आपने मांगा, मुझे लाने में ताखीर हो गई, आप आराम करने लगी तो मैंने आपको उठाया नहीं, कहीं आपके आराम में खलल पड़ जाए। ये वफादारी है, ये इज्जत और अजमत है माँ की। अब उस माँ ने हाथ उठाए, मौला मेरे बेटे को वह मकाम अता फरमा दे जिसकी ये तलाश में है। हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं 12 साल की इबादतें, जंगलों का सफ़र, रियाजतें, रात की तन्हाइयाँ, रात का जागना धरा रह गया। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे माँ की दुआओं के ज़रिए वो मकाम अता फरमाया जो 12 साल की इबादत में नहीं मिल सका। इसी तरह से गौसे पाक रदी अल्लाह होता तो माएँ ऐसी होती थीं। गौसे पाक की वालदा फरमाते हैं गौसे आज़म के जब तक दूध नहीं पिलाती, जब तक वुज़ू बना करके कुरान की तिलावत ना करती, मैंने ये 18 कुरान के पारे अपनी माँ की गोद में याद कर लिए हैं। काश गौसे पाक का जिक्र सुनने वाली और गौसे पाक से मोहब्बत करने वाली मेरी माएँ बहनें इस सबक को सुनें और दर्स हासिल करें कि हम भी अपने बच्चों के साथ इस तरह की उनकी परवरिश करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चे हमारे वफ़ादार होंगे, दीन के वफ़ादार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर गौसे पाक से सच्ची अकीदत और मोहब्बत अता फ़रमाए। इसके आगे इंशाअल्लाह फिर बयान करेंगे। वमा अलैना इल्ल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौजूद सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब व इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपके दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। और आपको बताते चलें कि सनाख्वान मुस्तफ़ा इशरत तस्नीम साहिबा जो कि तशरीफ़ लाई हैं कराची पाकिस्तान से, वो महफिल नात की महफिल सजाएंगी जुमेरात 17 सितंबर। जी हाँ, जुमेरात 17 सितंबर बाद नमाज ज़ोहर यानी दिन के 1:30 बजे अब्दुल रज़ाक मोहम्मद हॉल फिनिक्स में। सनीचर 19 सितंबर, सनीचर 19 सितंबर दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर सुन्नी सेंटर हॉल कास्टेल में। और इतवार 20 सितंबर दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर मुस्लिम म्यूचुअल एड एसोसिएशन हॉल ग्लेन पार्क वाकवा में। इसके अलावा आपको बताते चलें कि मंगल 15 सितंबर से, मंगल 15 सितंबर से सुबह 10 बजे आलिमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में रबीउल आखिर की मजालिस का अहतमाम किया जा रहा है। और सनीचर 19 सितंबर और इतवार 20 सितंबर की मजालिस मुलतवी हो गई हैं, लेकिन 21, 22 और 23 सितंबर को मजालिस का अहतमाम किया जा रहा है। और आपको एक और बार बता दें कि इशरत तस्नीम साहिबा हमारे साथ रेडियो मॉरिशस में 11 से 12 बजे के प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा में लाइव होंगी जुम्मा 28 सितंबर को। इसके अलावा ये एक और ऐलान समात फरमाइए, आज 16 सितंबर, आज 16 सितंबर बाद नमाज ईशा दारुल उलूम फ्लाक में क़ारी फ़की अली नूरानी का ईसा अले सवाब का अहतमाम किया जा रहा है। ख़वातीन के लिए भी ख़ास इंतज़ाम किया गया है। जी हाँ, आज बाद नमाज ईशा।

मौज़ सामीन, इस कलाम की फरमाइश हमसे की गई थी मरहूमा जमीला इलाही वकस गनू के लिए उनके बेटे बेटियों पोते पोतियों ने, और वो लोग दुआगो हैं कि अल्लाह पाक मरहूमा की बख्शिश फरमाए, आमीन। इसके अलावा जी हाँ, गौबा से सुगरा का कहना है कि हमें रोज़ाना सुबह उठकर अपनी कब्र को याद करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी कब्र में नूर अता फरमाए और हमारे लिए कब्र की मंजिलों को आसान करे, आमीन। इसके अलावा हमें चंद और पैगामात भी मौसूल हुए हैं। जी हाँ, बुरन और रुगीत फैमिली मिडलैंड से दुआओं की, दुआ मगफरत की गुजारिश कर रहे हैं। वालिद मरहूम अब्दुल वहाब बुरन, अब्दुल अहमद रुगीत और मोहम्मद इकबाल जियन के लिए। इसके अलावा सैंपल से रियाज करीम बख्स, जी हाँ, रियाज करीम बख्स और रिहाना हुसैन बख्स ने एक मनकबत की फरमाइश की है। इसके अलावा जफीरा गुजारिश, दुआ की गुजारिश कर रही हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तालिबे इल्मों के लिए जो कि इम्तिहानात की तैयारियां कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो अपनी बहनों के लिए दुआ की गुजारिश कर रही हैं कि अल्लाह पाक तमाम तालिबे इल्मों के लिए आसानियां ता फरमाए, उन्हें हिम्मत ताकत और हौसला दे कि वो अपने इम्तिहानात की अच्छे से तैयारी कर सकें और उन्हें कामयाबियां अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा गिविया जोगोंपोस से शाहान, जी हाँ, गिविया जोगोंपोस से शाहान बेटियां समीरा हुमैरा सुहेला और नवासे नवासियां शाहान अफशीन आयान ने एक कलाम की फरमाइश की है नाना सऊद के लिए, और ये तमाम बच्चे दुआगो हैं कि अल्लाह पाक नाना को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी और ढेरों खुशियां अता फरमाए। आइए समात फरमाइए ये कलाम शाहान की फरमाइश पर।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी देर में ये मजलिस अख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। जो लोग बिछड़ गए वो दिल से कहाँ जाते हैं, यादों के चिराग बनकर दिल में सदा रहते हैं। दुनिया का सफ़र ख़त्म हुआ, मंजिले आखिर आई, रहमत हो तेरी या रब हर रूह पे बन कर जाए। ऐ रब करीम, जितने भी लोगों ने हमसे दुआए मगफ़रत की गुजारिश की मरहूमीन के लिए, तो तमाम मरहूमीन की ख़ताओं को माफ़ फरमा, अपनी रहमत के साए में उन्हें मकाम अता फरमा, कब्रों को नूर से भर दे, मंजिल को आसान कर और जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। सबसे आखिर में सुखरा की फरमाइश पर ये कलाम, अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 16 सितंबर आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। रिश्ते के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। रिश्ते के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक मौसल जेराज, स्कूल लेन, ओरिएंट लेन, सिदोयाल लेन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज ही बुधवार 16 सितंबर को अभी दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक जरूरी विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

इसे ज्ञान राजा और इसे अमेरिका धर्मा पत्नी पड़ते पाड़ कवर वाली वरी इसे ज्ञानी इलियाराजा और टामे पाड़ पाड़ इधर

0: 18 and 19 kilowatts. This is Radio Mauritius.
1: 819 kilohertz. ये है Radio Mauritius. Radio Mauritius.
2: गुजरात नी सुगंध, गुजरात नो रंग, गुर्जरी धराना मीठा झरना, MBC रेडियो पर।

की पसंद। नमस्कार श्रोताओ, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। जी हाँ, आप लोग सुन रहे हैं आपके पसंद प्रोग्राम, और आज बुधवार 16 सितंबर 2026, जी हाँ, ये कार्यक्रम आपके नाम हम करते हैं, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए हर बुधवार की तरह। जी हाँ, आप लोग साथ दीजिएगा, और यहाँ पर नंबर है 4028085402805। मैसेजेस आप भेज सकते हैं ऑन 5251700005। खूबसूरत गीत, जी हाँ, किशोरदा की आवाज़ में।

की पसंद। दो बजकर 35 मिनट हुए हैं दोस्तों, चली बढ़ती हैं आगे और यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे इंद्राणी जी के लिए जो हमें सुन रही हैं डिपिनेस से।

चले दोस्तों, चौकीदार फिल्म से लिया गया अगला गाना हम सुनेंगे, और ये गाना खासकर अनीता जी के लिए जो इस समय हमें सुन रही हैं फ्रॉम ट्रियोली। जी हाँ, आप ट्रियोली से हैं और

आप मांग रही है बेटियां जो दामाद वेद बेटा सचिन बहु पूजा दो नाती जो है शियांश और सिया के लिए और सभी परिवार के लिए और खासकर हमारे तमाम सुनने वालों के नाम।

जवान हो या बुढ़िया, जी हाँ, गाने के बोल हैं और फिल्म का नाम है भाभी, 1957 में रिलीज हुई है और ये गाना हम सुनेंगे रफ़ी साहब की आवाज़ में एक बार फिर से, उनकी मधुर आवाज़। और यहाँ पर गाना खासकर कुलन के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम नोवेल फॉन्सा, देने के लिए बहुत धन्यवाद आपको। ये गाना जाएगा आपके परिवार और आपके दोस्तों के नाम।

2:52 हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं आपके पसंद प्रोग्राम जी हाँ रेडियो मॉरिशस के लहरों पर, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। जो गीत हम चलाने जा रहे हैं वो है अखियों के झरोकों से, जी हाँ हेमलता की आवाज़ में, और ये गाना जाएगा यशवीर, नीता, शोभा, रणवीर और सीता माँ के लिए। जी हाँ बहुत धन्यवाद जो आप लोग सुन रहे हैं इस समय मेबग से, और ये गाना जाएगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए जो जुड़ चुके हैं। जी हाँ ये गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए, और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। रजनी से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। इन दिनों 2,73,000 से अधिक मॉरिशनों और रोड्रिक्स वासियों को बेसिक पेंशन प्राप्त हो रही है। इसी सप्ताह प्रकाशित समाज सुरक्षा मंत्रालय से प्राप्त हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में अगस्त महीने के अंत में लाभार्थियों से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। इनमें से 5,300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 90 वर्ष की आयु से कम के हैं और इनमें 242 ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष के हो चुके हैं। इस बुलेटिन में उन लाभार्थियों के नाम भी शामिल जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स और कई सोशल अलाउंस से लाभ उठाते हैं। स्टेट एज पेंशन के अमल में लाए जाने से आंकड़े भी प्रभावित होंगे। 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी हुई। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 सप्ताहों के एक सत्र में भाग लेंगे। वे कई विषयों के बारे में सीखेंगे जैसे कि अनुशासन, सेवा भाव, जिम्मेदारी और एक साथ जीना। इस पहले सत्र के बाद अन्य नौजवानों को भी इस तरह के सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को नेशनल क्राइम एजेंसी में परिवर्तित करने में कई चरण होंगे और मकसद भी इनमें से एक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना। ऐसा करने के लिए अलग अलग संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी है। ट्रांसपेरेंसी मॉरिशस के एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोरा जयमंगल ने आज सुबह लमाचिनल कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। साथ ही उन्होंने अतिरिक्त पारदर्शिता के लिए जानकारी उपलब्ध कराने के महत्व पर भी जोर दिया। विदेशी समाचारों में यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा ने ईयू का पहला सदस्य बनने के कनाडा के प्रस्तावों का समर्थन किया है। उर्सुला वॉन डर लेयन ने यूरोपीय संसद को बताया कि वे कनाडा के लिए दरवाजा खोलने के बारे में काम करना चाहती हैं, जिससे कि कई अहम सेक्टरों को लेकर घनिष्ठ संबंध कायम किए जाने की बात शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि वे ईयू के साथ एक अद्वितीय संबंध कायम करना चाहते हैं। और गाजा पट्टी में एक युद्ध से नुकसानग्रस्त इमारत के ढह जाने से कम 12 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लापता, इनमें बच्चे भी शामिल। मलबों तले से शवों और जीवित बचे लोगों को निकालने का काम जारी। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Yasuni, c'est Vicky Orsek Vigapti, Venua or Petit Belair, Jiha. Que Aspas Kerani Valoko, Jiha. Résidence Villenoir, Morcellement VOS, Villenoir, Morcellement Ruisseau Délice, Villenoir, Morcellement Vinprint, or NHDC, Petit Belair. Kerani Valoko, Yasuchit Kia Jata hai. Que Shukravar, 18 September 2026. सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. मरम्मत कार्य बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी. सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है.
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद.
0: चलिए प्यारे श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ. जी हाँ, आप लोग क्या कर रहे हैं ये भी

दादी जी जब आप फ़ोन कर रहे हैं और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ दे रही हूँ चार बजे तक आपकी पसंद प्रोग्राम आपके नाम। और इस सुंदर प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। यहाँ पर नंबर है 4028085402885 और चलिए गाना खासकर हम चलाएंगे अब सीता देवी राम टोहल के लिए जो रहती है काहोलिन और गाना वो मांग रही हैं अपनी बहन की मांग पर। अगला गाना हम चलाएंगे आशा देवी राम टोहल जो रहती है फौजी साकर। जी हाँ चले कभी हंसना है कभी रोना है यही जीवन का सफर है। ये गाना आपके नाम

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, जीवन सुख दुख का संगम है, हमें बस जीना है और वो भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं दिलीप जी। जी हाँ, आप रहते हैं कोंगोमा और इस समय हमें सुन रहे हैं। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। गाना आप मांग रहे हैं संगीता, योगेश, कविता, कृष्णवी, मनीषा, आरव, लक्ष, इंदिरा और दानन के लिए। चलिए क्रांति का ये खूबसूरत गाना लता जी और साथ में है नितिन मुकेश की आवाज़ों में।

चलिए अगला गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म का नाम है ऊंचे लोग और ये गाना खासकर विश्वानी डुमन जी की मांग पर वो रहती है वाकवा और गाना बहन इंदिरा शारदा सहेली नीला प्रतिभा शोभा और गीता गजाधर के लिए।

3:24 हुए हैं दोस्तों, चले बढ़ते हैं आगे। और बस उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर सुदेवी जी जी हाँ बोल रहे थे वाक्वा, और गाना वो मांग रही है दीदी ललिता, कुशल फैमिली, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, माला, बिंदु, मालेंगा के लक्षिका, कृषिका और रामरतन परिवार, हृदय परिवार, रघुबर परिवार, कुआहू परिवार और जालू परिवार के लिए।

3:30 बज चुके हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम अगला गाना चलाने जा रहे हैं, बर्थडे सॉन्ग, और ये गाना जाएगा माता जी सुनीता के लिए। आज उनका जन्म दिवस है और ढेर सारी शुभकामनाएं श्रवण, संदीप, प्रिया और माला और सभी प्यारी परिवार की तरफ से। वो रहते हैं दागोचिया। तो चलिए सुनीता जी, आपको जन्मदिन मुबारकबाद, और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं और आज अपना खास दिन मना रहे हैं,

की पसंद। जहाँ प्यारे दोस्तों 3:37 गीत आज जो हमें सुन रही है फ्रॉम यूनियन पॉक। चलिए गाना हम चलाएंगे आपकी मांग पर, और गाना खासकर आप मांग रही हैं भगिनी कविश्ता के लिए, आज उनका जन्मदिन है। और ढेर सारी शुभकामनाएं उनके पति विवेक की ओर से, मामा अमिता, पापा कविराज, भाई आदर्श, सभी दीनू बंधु और मोहर परिवार आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेडी लेक मंदिर का ये खूबसूरत गाना हम चलाएंगे अमीना जी के लिए, जो रहती हैं पोंफाले, और गाना वो मांग रही हैं अपनी बहनों के लिए फ़ाइमा, नाजमा, फ़ज़ीमा, मुनीजा और उनके दो भाइयों के नाम, और साथ में सभी दोस्तों और परिवार के लिए, और ख़ासकर हमारे पूरे MBC टीम के लिए भी, और यूनियन पार्क के रहने वाली ज्योति जी। हाँ जी, आप गाना मांग रही हैं अपने लिए, प्रीति के लिए, मयूर, आदर्श, वेदना, और साथ में है विमला, विवेक और केनिता, और शिमला जी। जी हाँ, नमस्ते आपको, और आप सुन रही हैं आपकी पसंद प्रोग्राम, गाना आप मांग रही हैं बहन रुमा, बहन आरती, इंदिरा, भाई जो है राकेश, धीरज और बेटा नमलेश, बेटी कीर्तिना, और सभी परिवार जो रहते हैं बेलरोज। और चलिए, खूबसूरत गाना हम चला रहे हैं आप सभी लोगों के नाम जो हमें सुन रहे हैं, दिलेक मंदिर का ये खूबसूरत गाना लता जी की आवाज़ में।

चलिए अगला गाना हम चलाएंगे शकुंतला भुसावन जो रहती है मोटाई लॉन्ग माउंटेन और आज चेष्टा का जन्मदिन है उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं भौजी गायत्री जी हाँ और आप रहती हैं नुवेल फ्रांस चलिए धन्यवाद आपको और खास गाना उनका जो उनके बेटिया जय बेटी सुनीता और सभी परिवार की ओर से

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनिए सीवी की ओर से कुछ विज्ञप्तियाँ। तमाह के आसपास के इलाके मोसेलमो कॉलस के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि गुरुवार 17 सितंबर 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बेलेया के आसपास के इलाके बिटिशम क्लेंसी रोड, रॉयल रोड, एमसीबी शेमे गाराज के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि गुरुवार 17 सितंबर 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और रिश्तिया के आसपास के इलाके मोसेलमो जिराज, स्कूल लेन, ओरिएंट लेन, सीदोयाल लेन के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि आज 16 सितंबर, क्षमा कीजिए। तो चलिए, ये थी सीबी की ओर से चंद विज्ञप्तियाँ। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। चलिए, इसी गीत के साथ किशोरदा की आवाज़ में ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, धन्यवाद। शाम के 5 बजे हमारी मुलाकात होगी अंताक्षरी प्रोग्राम में। तब तक ये गाना जाएगा रोहित जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबासा। चलिए ये गाना सुनते हैं, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग,
2: स्वर तरंग,

0: MBC रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: जी हाँ, आप और हमारे बीच जो दीवार है हमने कब का गिरा दिया है। 5:00

0: 16 मिनट
1: अंताक्षरी अंताक्षरी
0: प्यारे प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। आपसे एक और मुलाकात के लिए हम दोनों कब से थे बेताब, उषा और रोशन आ गए हैं आप लोगों की खिदमत करने के लिए।
2: जी हाँ, नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप?
0: जी श्रोतागण तो ठीक ही होंगे। और आपके लिए प्रोग्राम है
2: अंताक्षरी प्रोग्राम।
0: अंताक्षरी हर बुधवार की शाम को 5:15 से लेकर 6 तक।
2: हाँ जी, और आज खुशी की बात ये है कि आप ट्रैफिक में
0: नहीं
2: फंसे। नहीं है।
0: जी हाँ, हम स्टक नहीं हुए, ये सभी श्रोताओं की दुआओं का असर है। लेकिन गत सप्ताह तो क्या करें, इसके बारे में बातचीत ही ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
2: क्या
0: लेकिन
2: करें,
0: आपने क्या खूब संभाला।
2: इसीलिए कहते हैं जब हम उठते हैं ना सुबह, हमें पता नहीं है कि
0: क्या होने
2: दिन
0: वाला
2: के
0: है।
2: दौरान क्या होने वाला
0: क्या
2: है,
0: क्या होने वाला है, बिल्कुल। लेकिन हमेशा हम सकारात्मक सोच के साथ ही अपना दिन को आरंभ करना चाहिए हमें।
2: बिल्कुल।
0: तो चलिए इस पॉजिटिव नोट के बाद हम बढ़ेंगे हमारे विषय की ओर।
2: विषय की ओर, लेकिन इससे पहले हम नंबर बता दें।
0: बता दीजिए।
2: 4028085402808 और मैसेजेस आप घर पर बैठे बैठे ये भी बता सकते हैं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ में आप हमें देख सकते हैं लाइव ऑन टिकटॉक, जहां पर आप ये कार्यक्रम को, इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।
0: जी हाँ, इससे ज़्यादा और स्पष्ट रूप से हम नहीं समझा पाएंगे आपको। तीन प्रकार के की विधि है, आप इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। उषा जी ने खूब अच्छी तरह से आपको समझाया। तो चलिए आज आपका जो विषय है, पहला गाना हमेशा की तरह आप अपनी पसंद का गाइएगा और दूसरा गाना जो है, आज हमने फिल्मों के नाम में जो शब्द आता है हम, जी हाँ हम,
2: जी हाँ
0: उषा, एक करके एक के बाद एक आपको फिल्मों के नाम बताएंगी और उस फिल्म से आपको केवल एक गाना गाना होगा।
2: चले, जब तक हमारे श्रोता आए नहीं आए हैं तो यहाँ पर हम अपने उन लोगों के लिए हम कुछ डेडिकेशन करते हैं जो हमें सुन रहे हैं। हाय टू यू रीना दुकारन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और यहाँ पर माइकल है, उनकी बीवी है, उनकी वाइफ है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और साथ में जमैका क्रॉसिंग। थैंक यू सो मच आप लोगों को, स्टे ट्यून और हम आप लोगों का इंतज़ार करते हैं।
0: तो चलिए इंतज़ार कर रहे हैं हम 4028085 पर। और चलिए पहला गाना आपके लिए हम चलाएंगे, फिल्म हम हिंदुस्तानी, और हम हिंदुस्तानी में ये शब्द आता है हम।

0: चलिए हम श्रोता का इंतजार करते करते उसका स्वागत भी करना चाहेंगे अब। चलिए,
1: हेलो
2: हेलो रोशन जी एंड उषा जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: नीला
1: आपको।
0: जी कैसी
2: नीला
0: हैं?
2: है
0: नीला?
2: जी। हाँ
0: हाँ नीला जी, जो जी आप लगा
2: जी,
0: रहे हैं ना, हम समझ गए कि आप ही हैं।
2: सॉरी,
0: चलिए, हम जानते हैं कि
1: हमें
0: आप
1: पता
0: जी
1: लग
0: जी
1: गया कि ये
0: आप ही
1: आप ही
0: हैं।
1: नीला है।
0: हाँ
2: हाँ
0: जी।
2: जी।
0: अच्छा जी,
2: हाँ।
0: आप अपना पहला गाना गाइए जो आप बेहद पसंद करती हैं, प्लीज गाइए।
2: हे नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। हे नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही सुबह आती है जग में, ऐसे ही शाम

0: शेट्टी का प्यार पली।
1: जी हाँ, हमराज फिल्म का गाना आपने गाया है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए
0: हाँ
1: अब
0: जी,
1: उषा जी की ओर हम बढ़ेंगे। उषा जी,
0: ओके।
1: नीला जी के लिए कौन सी फिल्म है?
0: सनम तेरे हैं हम।
1: हाँ जी, सनम तेरे हैं हम, इस फिल्म का कोई भी गाना आप गा सकती हैं। ओके, गाइए सनम तेरे हैं हम फिल्म का कोई भी गाना।
0: नहीं जानती हूँ, मैं भूल गई, सब मैं भूल गई हूँ।
1: हाँ जी,
0: सनम
1: याद
0: नहीं आती है,
1: नहीं आ रहा
0: राग नहीं आ
1: आपको?
0: रही है।
1: चलिए उषा जी आपके लिए गाएंगे।
0: हाँ जी, उषा जी, हाँ।
1: गाइए।

0: ओके चलिए बहुत धन्यवाद
1: कोई
0: आपको?
1: बात नहीं लेकिन आपने
2: थैंक यू सर जी थैंक यू वेरी मच
1: ओके देन बाय बाय
0: हाँ जी तो फिर से हम यहाँ पर अपने दोस्त माइकल को वो रहते हैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया और वहाँ से वो हमें देख रहे हैं लाइव फ्रॉम टिकटॉक
1: क्या बात है
0: हमें बहुत ही खुश हुई और वेरी हैप्पी
3: एक हसीन सफर रेडियो मॉरिशस
1: आपने ऑस्ट्रेलिया वाले को बता दिया कि एक हसीन सफर है मॉरिशस में यहाँ पर
0: यस चलिए बहुत धन्यवाद और साथ में नाविद भी है जो हमें देख रहे हैं नाविद और उनकी बीवी हमें पता नहीं उनका नाम क्या है सो गाइस एंजॉय दिस शो और यहाँ पर और कुछ लोग हैं रीता देवी नामा श्यामा जी नर्वदा नमस्ते आपको इंदिरा लोटन हाय और शोभा जी मीनाक्षी हेलो टू यू डोंट फॉरगेट टू लाइक फॉलो और शेयर करें पेज को
1: ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
0: हाँ जी चलिए देखते हैं लाइन पर कौन है हेलो
1: हेलो जी हेलो हेलो
0: हेलो
4: हेलो नमस्ते रोशन भैया उषा बहना
1: नमस्ते इंदिरा बहना फ्रॉम मेबर्ग है ना
4: हाँ
1: जी चलिए आप फटाफट अपना गाना गाइए पसंदीदा गाना
4: आज उनसे पहली मुलाकात होगी आमने सामने बात होगी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर
1: जी बिल्कुल सही सही गाना पड़ेगा
0: फिर होगा क्या
1: क्या पता क्या खबर
0: क्या पता क्या खबर ओके
1: अब हमें भी पता नहीं कि उषा जी क्या कहने वाली है
0: ओके तो फिल्म का नाम है हम तुम
1: से कोई भी गाना आप गा सकते हैं फिल्म हम तुम बहुत ही आसान है याद आया आपको हम तुम वाला गाना
4: नहीं मैं तो ये फिल्म ही नहीं देखी
1: सैफ अली खान और रानी मुखर्जी और टाइटल सॉन्ग ही गा लेती चलिए उषा जी को सुनिए और साथ साथ गाइए उनकी
0: हम तुम आपने तो सुना है हाँ। सुना होगा ना
1: हाँ जी सासुन
4: से और
1: सासुन।
4: आगे उसकी याद नहीं ओके थैंक यू
1: कोई बात नहीं
4: थैंक यू शुभ संध्या बाय बाय
1: शुभ संध्या आपको भी
4: थैंक यू या बाय
1: ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना है जी
0: बहुत ही रोमांटिक है और कौन कहेगा कि ये गाना 20 साल के है
1: 20 साल के बिल्कुल
0: 20 years back और ये बहुत ही सुंदर मेमोरी है और यहाँ पर हम देखते हैं कौन है हेलो
1: हेलो जी नमस्ते हेलो
5: नमस्ते आप दोनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: नमस्कार जी कौन
5: जी,
1: बात कर रही हैं
5: मैं सरिता हूँ
1: कैटरबोन से जी। सरिता जी आपका स्वागत है
0: धन्यवाद
1: हाँ जी कैटरबोन तो शहर है ना
5: जी
1: तो आप शहर की लड़की निकली
5: हाँ।
1: चलिए आप अपना पहला गाना गाइए
5: जी

0: आपने सुना?
1: जी, मेरे
0: ओ,
1: पसंद है,
0: तो
1: मुझे ये गाना
0: आपको
1: बहुत पसंद है।
0: इसीलिए आपने यहाँ पर भी गा लिया।
1: जी
0: अच्छा, ओके, ये रहा पहला गाना आपकी ओर से। अब हम
1: जी
0: बढ़ेंगे फिल्म की तरफ। कौन सी फिल्म का नाम है आप बताना चाहती हैं उषा जी?
2: फिल्म की तरह, फिल्म का नाम है हम।
0: हम।
1: हम
0: हाँ जी, हम।
2: हम
0: सभी जो फिल्म हैं हम से शुरू होते हैं या हम उस फिल्म
1: जी
0: के टाइटल में आता है।
1: सनम मेरी सनम, कसम तेरी कसम, मुझे आज कल नींद आती है कम। सनम मेरी सनम, कसम तुझे कसम, तेरे लिए हुआ
0: बहुत ही सुंदर। सनम
1: जी
0: मेरे सनम, सचमुच आपको
1: जी
0: नींद आती है कम क्या? बहुत
1: जी
0: ही सुंदर सा गाना आपने गाया है, फिल्म हम से लिया गया, और
1: जी
0: आप बनती हैं फर्स्ट ऑफ द वीक। धन्यवाद आपको।
1: ओके,
2: स्टार
1: धन्यवाद,
2: ऑफ द
1: बाय,
2: वीक,
1: संजय आप दोनों को,
2: थैंक
0: बाय।
2: यू।
1: बाय।
2: गाइस प्लीज लाइव को आप शेयर करें, लाइक करें और फॉलो भी करें इस
0: फॉलो
2: पेज को,
0: करें,
2: ताकि हम
0: बिल्कुल
2: आगे चलकर और लाइव प्रोग्राम कर सकें।
0: बिल्कुल। ये जो प्रोग्राम है, खासकर जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है, अगर आपका प्यार बरकरार रहेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना।
2: और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि अब हमें पता चल गया कि रोशन जी कैसा है, क्योंकि
0: ओ
2: हमेशा हम हमेशा उनकी आवाज़ सिर्फ रेडियो पर सुनते हैं,
0: ओ उषा जी,
2: नॉट ऑन,
0: हाँ
2: हमें नहीं
0: जी,
2: पता कि वो कैसा दिखता है। अब
0: पता चल गया आप लोगों
2: टिकटॉक के
0: को।
2: द्वारा आप लोग देख सकते हैं।
0: बिल्कुल, हम दोनों को देख सकते हैं, और आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल प्यार से काम नहीं चलेगा, लाइक भी कीजिए। हाँ जी, फॉलो कीजिए।
2: हाँ जी, चलिए देखते हैं यहाँ कौन है। हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते जी।
3: नमस्ते रुसन जी, नमस्ते उषा जी।
0: नमस्ते जी, हंसती मुस्कुराती हुई देवी जी।
3: हाँ जी,
0: कैसी हैं आप?
3: ठीक है, ठंडी
0: ओके देन।
3: मौसम के साथ
0: हाँ,
3: ऐसे।
0: मौसम ठंडा है लेकिन कोई बात नहीं, आप
3: हाँ
0: अपने आप को गरम गर्मा
3: हाँ
0: गर्म
3: गरम
0: रखिए।
3: रखना चाहिए।
0: गाइए, गर्मा गर्म गाना गाइए
3: हाँ
0: गाइए।

0: विश्वास है हर मुश्किल से लिदाता निकालोगे तुम। हो गया।
1: क्या गाना आपने गाया है, बहुत ही सुंदर सा गाना है और ये एक भाव गीत है, हमेशा आप इसे गाते रहिए। तो चलिए ये गाना तो हो गया, अब कौन सी फिल्म है जिसमें हम शब्द है वो उषा जी आपको बताएंगी।
2: हम क्या बताएं आपको,
0: हम कोशिश करेंगे।
2: हम तुम्हारे हैं सनम।
1: हम तुम्हारे हैं सनम, गाइए।
0: नहीं आता। नहीं आता।
1: नहीं आता आपको? चलिए हम उषा जी को सुनेंगे आपकी आपके।
2: लेकिन आप क्यों हंस रही है? आप ज्यादा कम गाना कम और ज्यादा
1: हंसती रहती है ना,
2: तो हंसते मुस्कुराती जी आप सुनिए ये गाना, ठीक है?
0: ओके, साथ दूंगी।
1: साथ दीजिएगा प्लीज।
2: हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं
0: तुम्हारे सनम,
1: जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम, ना जुदा होंगे कभी हम। ओके, धन्यवाद आपको।
0: अंताक्षरी से कभी ना जुड़ा होंगे।
1: वेरी गुड, क्या बात, देता ली
2: संध्या आपको।
1: शुभ संध्या।
2: और देखते हैं यहाँ पर किसने हाय हेलो कहा है,
1: किसने जवाब भी दिया।
2: जवाब कोई नहीं दे
1: नहीं दे रहा है।
2: कोई जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं और आपके कमेंट के लिए बहुत धन्यवाद। आप है मनीषा, चलिए मनीषा हाय टू यू। अब्दुल रशाद हेलो। प्रीता प्रिंसेस, चलिए प्रिंसेस। आइलैंड से लता है जो हमें देख रही है। नाइस, अच्छा लगता है कि अब्रॉड से लोग हमें देख रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: हेलो

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते. नमस्ते
0: नमस्ते जी।
1: भाई जी. नमस्ते उषा जी.
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मैं ज्योति हूँ,
0: बॉम्बू की ज्योति जी।
1: बाबू बाबू से जी. मैं
0: हाँ
1: ज्योति बोल
0: जी,
1: रही हूँ.
0: अच्छा ज्योति जी, आप तैयार हैं?
1: जी जी बिल्कुल.
0: ओके देन, तो अपना पहला गाना गाइए।

0: बहुत ही सुंदर ज्योति जी, आपकी आवाज़ अच्छी है और आप गाती भी अच्छी हैं।
1: भैया।
0: धन्यवाद आपको। चलिए अब उषा जी की ओर हम बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे कि कौन सी फिल्म का नाम आपको देंगी वो।
2: उन्होंने कहा धन्यवाद भैया,
0: हाँ जी,
2: अब बहन आपको
1: बहन
2: आपको आपको टाइटल देंगे।
1: बहुत धन्यवाद बहन।
0: मस्का लगा रही है।
2: मस्का।
0: चलिए देखते हैं कि कौन सी फिल्म का नाम है।
2: एक गाना है ना, मस्कर शब्द है इसमें, मैं बाद में
0: हाँ
2: ये गाना गाऊंगी इसके बाद। और
0: अच्छा।
2: देख, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।
0: हम किसी से कम नहीं, हम जानते हैं कि आप भी किसी से कम नहीं हैं ज्योति जी। कोई भी गाना इस फिल्म से, ऋषि कपूर, काजल किरण।
1: हम किसी से कम नहीं।
0: हाँ जी,
1: अच्छा,
0: गाइए।
2: दिखाइए कि आप किसी से कम नहीं हैं,
0: हाँ
2: दिखाइए।
0: दिखाइए।
1: हम किसी से
0: बहना
1: कम
0: का नाम आपने नहीं लिया ना, देखिए अब भुगते हैं आप।
1: जी, मैं हमेशा आपको बहुत बहुत आदमाया करती हूँ।
2: नहीं
0: ऐसे
2: नहीं
1: हम दोस्त भी है,
0: दोस्त
1: ये फिल्म
0: है,
1: दोस्त भी है। किसी
0: मस्का लगा रही हैं आप।
2: हाँ, मुझे पता लग गया कौन सा गाना। चलिए हम
0: अच्छा
2: आप
0: गाइए।
1: कंसर्न कर। ऋषि वाला, ये गिटार वाला एक गाना है, ये मुझे
0: हाँ
1: याद नहीं।
0: गाइए, कोई भी गाना इस फिल्म का, बहुत सारे गाने हैं, गाइए।
1: देखे जरा,
0: नहीं जी,
2: परा परा परा परा
0: ये
2: पापा।
0: तो रॉकी है जी।
1: नहीं, इसमें
0: ओ
1: नहीं।
0: लला ओ लला।
1: यस, आई एम सो सॉरी, मुझे याद
0: कोई बात नहीं, उषा जी आपकी मदद करेंगी। कोई भी
1: जी।
0: गाना हम किसी से
1: थैंक
0: कम
1: यू।
0: नहीं।
1: जी।
2: चांद मेरा
1: अच्छा,
0: दे,
1: ये भी मैं सुनी थी।
2: चांदनी हो तुम।
0: चांद से है
1: यही
0: भला
1: वाला गाना मुझे
0: चांदनी
1: याद नहीं आ
0: का।
1: रहा था,
0: कोई
1: गिटार वाला
0: बात
1: गाना। चलिए,
0: नहीं,
2: आपके जाने से पहले मैं आपके लिए गाना गाऊंगी। जी,
0: गाइए
1: बिल्कुल
0: वो मस्का वाला गाना।
2: मस्का लगाओ ना, छोरो जे छोरो।
1: उषा धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत प्यार भेज रही हूँ।
2: थैंक यू
0: ओके,
2: सो मच,
0: धन्यवाद
2: बाय
0: बहन
2: बाय।
0: जी, बहुत धन्यवाद
1: आप
0: आपको,
1: धन्यवाद, सिर्फ
0: बाय।
1: उषा बहन के लिए।
0: शुभ
2: अच्छा,
0: संध्या।
2: सिर्फ मेरे लिए।
0: ओ क्या
2: ओहो,
0: बात है, क्या बात
2: ओके,
0: है।
2: बाय
1: अगली बार
2: बाय।
1: आपका नाम मैं जरूर आगे से लूंगी।
2: ओ
1: नहीं, ऐसा
0: नहीं,
1: कुछ नहीं, हम
0: हम
1: मजाक कर
0: मजाक
1: रहे
0: कर
1: थे
0: रहे थे
1: यार।
0: आपसे जी,
1: नहीं,
0: क्यों
1: जानती हूँ। अब दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, बहुत
0: नहीं।
1: प्यारे
0: आप भी
1: भैया, बहुत
0: बहुत
1: प्यारी
0: प्यारी
1: बहन।
0: हैं।
1: थैंक
0: ओके,
1: यू, बाय
0: धन्यवाद आपको,
2: बाय। धन्यवाद,
0: बाय
1: बाय बाय।
0: बाय।
2: कहते हैं ना, आदि बर्मन जी के गाने कुछ ऐसे ही है, वो हमेशा चिल्लाता है।
0: देखा आपने, सुनिए।
2: कहाँ
0: निकाल के लाता है ये सब कुछ वो।
2: चलिए, यहाँ पर कौन है? हेलो टू यू, सुनीता रामधानी जी। ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है,
0: नहीं है
2: यहाँ हम
0: जी।
2: सिर्फ गाते हैं, गाना बजाते नहीं
0: हाँ
2: है।
0: जी बिल्कुल।
2: वसंती गोकुल, नमस्ते दोनों को, नमस्ते आपको।
0: नमस्ते जी।
2: अच्छा, सर्वेश सीति जोरी, रोशन जी को
0: सर्वेश,
2: नमस्ते
0: नमस्ते सर्वेश जी,
2: सिर्फ।
0: उषा जी को भी नमस्ते कीजिएगा
2: जी,
0: आप।
2: अब यहाँ पर सानिश है। हेलो सानिश, हाउ आर यू? और नर्वदा जी जवाब दे रही हैं, ये लड़का हाय अल्लाह। हाँ
0: अरे
2: जी,
0: वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
2: ओके, देखते हैं यहाँ कौन है।
0: लौट के आ जाइए
2: लौट के
0: प्लीज,
2: कौन आया है पिछले सप्ताह?
0: देखते हैं।
2: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी, उषा जी।
0: नमस्ते मीनाक्षी जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: बिल्कुल।

0: हाँ जी
1: हर बुधवार की शाम आप बहुत ही उत्सुक हो
0: ठीक
1: जाती
0: हूँ।
1: हैं, है ना?
0: हाँ जी जी
1: चलिए देखते हैं, इस उत्सुकता को आप यहीं पर त्याग दीजिए और अपना गाना गाइए।
0: ओके। अब
1: गाइए।
0: दवा की जरूरत नहीं मुझको दर्द जिगर के लिए, एक नजर तेरी

0: बहुत ही सुंदर सा गाना मीनाक्षी जी ने गाया है सुंदर आवाज में। चलिए अब आपकी परीक्षा है। सुनिए,
1: हम है लाजवाब।
0: हम है लाजवाब फिल्म का गाना।
2: फिल्म
0: हम है लाजवाब, बिल्कुल। सुनील शेट्टी थे उस फिल्म में, 90s है। जी हाँ,
2: ये है दीवानगी। ये
0: गाइए तो।
2: दीवानगी ये जो है प्यार की,
0: क्या बात,
2: कम हो कभी मेरे सनम ये, रब ना करे। ओ दीवानगी ये जो है प्यार की, ये है?
0: क्या बात है।
2: Okay,
0: उषा जी एक और गाना आपको बताएंगे।
1: Okay. तुझे से क्या चोरी है, तुझे से क्या चोरी है, तुझे से क्या चोरी है।
2: तेरी आँखों की मस्ती मेरी कमजोरी है।
0: हाँ जी बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप बनती हैं सेकंड स्टॉप ऑफ द वीक।
2: थैंक यू, बाय
1: बाय।
0: चलिए, ये रहा मीनाक्षी जी फ्रॉम बुबासे, और उन्होंने बहुत ही सुंदर सा गाना गाया, और उषा जी ने एक दूसरा गाना भी गाया, हम है लाजवाब फिल्म का गाना। क्या बात है। तो चलिए अब हम देखते हैं टिकटॉक पर कौन हमसे।
1: चलिए यहाँ पर सुदेवी जी है। हेलो टू यू सुदेवी जी। वशिष्ठ जगन्नाथ है, हाय टू यू। और
3: जय श्री गुलाम।
1: मौका ही नहीं दिया कि हम यहाँ लोगों का नाम ले, लेकिन यहाँ पर रवि मैथिली कृपा है, हेलो, और वो इटली से हमें सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, हेलो टू यू।
0: ओके जय भाई, कैसे हैं आप? ठीक?
3: अच्छा भाई।
0: ओके, तो गाओ अपन गाना, लेकिन अंतरा नहीं गई है।
3: हाँ,
0: गाओ।
3: सब कुछ सीखा हमने ना सीखे होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखे होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन,
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सा गाना जय भाई ने गाया, और वो भी मुकेश साहब का गाना। हमेशा आप मुकेश साहब का गाना ही गाते हैं भाई जी।
3: आगे गाता तो जाता सुंदर हो जाता,
0: लेकिन क्या करें, समय नहीं है ना भाई।
1: लेकिन आप तो
3: मानते हैं, मानते हैं भैया,
1: आप तो बहुत ही चालाक हो।
0: हाँ जी, चालाक है।
1: आपने क्या किया आपको पता है? आपने दूसरे नंबर पर हमें फोन किया।
0: देखा, बहुत ही चालाक हैं आप।
1: चलिए, लेकिन क्या करें, हमें पता है
3: फोन नहीं अच्छा है।
1: हाँ जी, हमें पता है कि जब अंताक्षरी प्रोग्राम आता है तो आप लोग इतने उतावले होते हैं इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना? तो इसीलिए हम सबको मौका देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और
0: अच्छा
1: टाइटल है, टाइटल सुनिए।
0: कौन सी फिल्म?
1: कौन सी फिल्म? हम आपको क्या दे, हम आपके हैं कौन।
0: हाँ जी, हम आपके हैं कौन। ये फिल्म का, इस फिल्म का कोई भी गाना आप गा सकते हैं भाई जी। इसमें सलमान थे और माधुरी दीक्षित भी थे।
3: हम तुम्हारे हैं।
0: नहीं जी,
3: ये गीत नहीं है।
0: नहीं, ये तो उषा जी ने गा लिया है। और एक गाना है, आपको याद है वो गाना, दीदी और देवर वाला गाना।
3: दीदी तेरा देवर दीवाना,
0: हाय
3: राम, हाय राम, गुड़ियों को डाले दाना। ठीक है ना भैया?

0: अच्छा है जी, बिल्कुल अच्छा है। और आपने गाना गाया, हमने इशारा किया और आपने तुरंत गाने को पकड़ लिया, बहुत अच्छा। अजय भाई अगले सप्ताह मिलेंगे,
1: कभी फिर मिलेंगे।
0: मिलेंगे क्यों नहीं, मिलेंगे अवश्य मिलेंगे जी, क्यों नहीं। ओके बाय।
2: ओके बाय बाय। और यहाँ पर चलिए देखते हैं, हमारे साथ आश है, गाना मांग रही है, लेकिन आश ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम विक्षा और विदिशा का नाम ज़रूर लेंगे। और साथ में नुश है फ्रॉम थाईलैंड, और वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, अब वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, क्या बात है,
0: बहुत अच्छा।
2: लेकिन देखा जाए इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं विदेश से,
0: सो
2: वी फील वेरी वेरी प्राउड,
0: वेरी प्राउड, वेरी हॉनर्ड,
2: वेरी हॉनर्ड। और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि लाइन पर कौन है। हेलो
0: हेलो
3: हेलो,
0: नमस्ते जी।
3: नमस्ते
0: नमस्ते तारा जी।
3: हाँ हम हैं तारा
2: तारा।
3: नमस्ते उषा जी, नमस्ते भाई रोशन।
0: नमस्ते तारा जी, चलिए आप चलिए आई हमारी महफिल में यहाँ पर।
3: हाँ।
0: तो महफिल में आई हैं तो महफिल को जमा भी दीजिए, आप अपने पहले गाने के साथ गाइए।
3: हवा के साथ साथ,
2: अरे अरे अरे,
3: खटा के संग संग,
2: ना
3: वो साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथ में हाथ चल तू, ओ साथी चल।
0: जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, सही गाना आपने गाया, बहुत ही अच्छा। चलिए अब हम बढ़ेंगे उषा जी की ओर, देखते हैं कि कौन सी फिल्म आपको वो देंगी अभी।
2: कौन सी फिल्म? हम सब चोर
0: हैं। अरे बाप रे, हम सब चोर हैं। वो गाना गाइए जो कुमार सानू जी ने गाया था, बहुत ही सुंदर सा गाना।
3: हम सब चोर हैं, वो कुमार सानू। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे।
0: नहीं जी, ये गाना
3: ये नहीं है।
0: नहीं, ये तो कहाँ,
3: दूसरा नहीं जानते हैं,
0: ये तो आशिकी वाला गाना है। चलिए आपको उषा जी बताएंगी कौन सा गाना है।
3: हाँ।
0: बताइए उषा जी उनको।
2: सावनी सलोनी तेरी मीठी मीठी बातें कर दिया जाने कहाँ
0: खो गया है मेरा दिल। बिल्कुल, अब वो दूसरा वाला भाग गाना चाहती थी, है ना। बहुत अच्छा, और देखा आपकी सहायता हो गई।
3: हाँ।
0: और कहेंगे फिर से अपना होमवर्क,
2: फिर से हमारी मुलाकात होगी। तारा जी बोलो तारा रारा, धन्यवाद।
3: लाइन नहीं मिलते हैं, कितना दिन के बाद में याद मिला है।
0: क्या करें, बहुत से लोग फोन करते हैं ना।
3: हाँ,
0: इसीलिए।
3: हाँ।
0: नमस्ते तारा जी,
3: शुक्रिया।

0: और यहाँ पर कौन है? साविना, हेलो
1: साविना जी,
0: देवी होम डेको एंड फ्लावर, हाय. और साविना, हम गाना गाएंगे. हाँ जी, जरूर गाएंगे, लेकिन बाद में. नंबर नहीं है मेरे पास, नंबर नहीं है तो नंबर है 4028085. और चलिए देखते हैं यहाँ कौन है. हेलो,
1: हेलो जी, हेलो
2: हेलो रोशन जी,
1: कविता जी
2: और उषा जी, दोनों को प्यार भरा नमस्कार.
1: नमस्कार कविता जी, ठीक है कविता जी?
2: हाँ ठीक हूँ.
1: हंसती रहे ऐसे.
2: कविता मुझसे से बोल रही हूँ.
1: वैसे मैं काम करते करते आप फोन भी कर रही हैं.
2: हाँ क्या करें, थोड़ा मौका ढूंढना पड़ता है ना.
1: ओके, तो चलिए अपना पहला गाना गाइए.
2: पहला गाना अपनी पसंद की?
1: हाँ जी बिल्कुल गाइए.
2: मुझे

0: बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर सा गाना शमी कपूर साहब पर।
1: ये मेरी पसंद का
0: कितना
1: गाना है।
0: प्यार है
1: तुमसे
0: हाँ जी, तो उषा
1: अपने
0: जी
1: जमाने के गाना है ये।

0: हाँ जी,
1: आपके जमाने के गाने आई
0: ये गाना तो ये गाना जो है ना, ये तो
2: याद आ जाते हैं,
0: सदाबहार गाना है ये तो, आपकी आपके जमाने का नहीं है तो हमेशा ऐसे ही रहेगा नया, है ना। देखा उषा जी भी गाने लेगी आपके साथ।
1: चलिए आप रेडी हैं,
0: सुनिए फिल्म का नाम
1: दुल्हन हम ले जाएंगे।
0: ओ, दुल्हन हम ले जाएंगे, सलमान करिश्मा कपूर, गाइए।
2: दुल्हन हम ले जाएंगे।
0: याद आया आपको?
2: नहीं नहीं नहीं आ रहा है
0: आपको। दुल्हन, हाँ दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म का नाम है, आपको दुल्हन नहीं ले जाना है।
2: हम दुल्हन यहाँ ले जाएंगे।
0: चलिए उषा जी आपकी मदद कर देंगे।
3: प्यार दिलों का मेला,
1: प्यार दिलों का मेला है।

0: तब हम सलमान की तरह नाचेंगे. बहुत ही सुंदर सा गाना, और देखा आपकी सहायता हो गई.
1: हो गई, बहुत धन्यवाद इसके लिए.
0: हाँ जी, धन्यवाद
2: इसके लिए, बहुत धन्यवाद. और हमारी मुलाकात होगी
0: अगले सप्ताह. ओके कविता जी, बाय
1: बाय.
2: अभी तो और समय है हमारे पास, चलिए देखते हैं कौन है. हेलो,
0: समय है पास, लेकिन आपको बता दें उषा जी कि गत सप्ताह से एक फरमाइश है जो आपने पूरी नहीं की है. किसी ने फरमाइश की है कि आपको ये गाना गाना है.
2: कौन सा गाना
0: बताएंगे अभी?
2: हमें तो खुद भूल गई. नहीं, देवी होम डेको नंबर है 4028085.
0: बिल्कुल, बहुत ही आसान सा नंबर है ये,
2: बहुत ही आसान है. हेलो,
3: नमस्ते उषा जी.
2: नमस्ते शोभा जी.
3: उषा जी को भी नमस्ते.
0: नमस्ते,
3: कैसे हैं आप लोग?
0: ठीक है, आप कैसी हैं? ठीक,
3: मैं भी ठीक हूँ.
0: अच्छा जी, बताइए कौन सा गाना आप गाएंगी
3: जी? तो मैं शुरू करूँ?
0: क्यों नहीं, शुरू कीजिए.
3: रोकना है अगर रोक लीजिए, मगर चांद छुपने से पहले चली जाऊंगी, चली जाऊंगी. ठीक.
0: सचमुच चांद जब वो निकल आएगा तब चली जाएंगी. ओके, सुंदर सा गाना है. अब आपके लिए फिल्म का नाम बता दीजिए बहना.
3: कोशिश करूंगी.
0: हाँ जी, कोशिश ही
2: कीजिएगा.
0: हम दोनों देवानंद का गाना है, देवानंद फिल्म की फिल्म का गाना है.
3: ओ, मुझे हम तो ये गाना याद है, हम दोनों दो प्रेमी. ये नहीं
0: याद आया आपको?
3: नहीं
0: याद आया, कोई बात
3: नहीं. ये गाना मुझे याद है, हम दोनों दो प्रेमी.
0: ये तो अजनबी वाला गाना है.
3: हाँ, इसमें तो हाँ,
0: राजेश खन्ना जी है. चलिए आपके लिए उषा जी गाएंगे.
2: अभी ना जाओ छोर कर के दिल अभी भरा नहीं.
0: सुना आपने?
3: जी हाँ,
0: कोई
3: धन्यवाद.
0: बात नहीं शोभा जी, ऐसे ही आप प्रोग्राम में भाग लेती रहें.
3: ओके, धन्यवाद, शुभरात्रि आप दोनों को.
0: ओके, तो ये थी शोभा जी फ्रॉम पाकुआ, और उन्होंने हम दोनों वाला गाना थोड़ी देर में रिकॉग्नाइज किया जब उषा जी ने मदद की तो.
2: लेकिन ये गाना फिट इन दिस प्रोग्राम.
0: हाँ जी,
2: अभी अभी तो आए हैं.
0: हाँ,
2: और हमें अभी अभी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय है जल्दी जल्दी भागता जा रहा है,
0: भागता जा रहा है.
2: देखते हैं यहाँ पर कौन है. हेलो
0: हेलो
2: हेलो,
4: रोशन जी और उषा जी को आशा जानू की ओर से प्यार भरा नमस्कार.
2: प्यार भरा नमस्कार आपको भी.
0: नमस्ते आशा जी, ठीक है?
4: मैं अच्छी हूँ, आप दोनों कैसे? और बहुत दिनों की बारिश हो रही है यहाँ पर.
0: ओह, नौफ में
2: कोटेज में ना?
0: कोटेज में.
4: और अभी जोरों की बारिश हो रही है, यहाँ संगीत की बारिश हो रही है.
0: ओके, वेरी गुड.
2: लेट मी से हाय टू आवर कॉलीग सुमी. हाउ आर यू सुमिता?
0: ओके सुमी जी, आपका हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में,
2: और आशा जी को सुनते हैं. हेलो
0: आशा जी, गाइए.
4: हाँ जी, मैं अपने पसंद का.
0: हाँ जी बिल्कुल, गाइए गाइए आशा जी.
4: एक था गुल, एक थी बुलबुल, बुलबुल बोले सुन बाबुल. एक था गुल, एक थी बुलबुल, बुलबुल बोले

0: रब की कसम सच बोल मेरे मितवा, झूठ बोले तो उसे काट खाए बिचवा, दिल में है प्यार तेरे होठों पे गिचवा।
1: बहुत ही सुंदर गाना द हीरो फिल्म से लिया गया है ना। हाँ जी, झूठ कभी बोलना नहीं चाहिए, ये बात तो है, और आप सच बोलती हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो फिल्म उषा जी आपको देंगी, इसमें आप खड़ी उतरेंगी या नहीं।
2: हम दिल दे चुके सनम।
1: कौन सा गाना?
0: तरफ तरफ के इस दिल

0: निकलती रही, मुझसे सजा दे प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लिट गए।
1: ओके ओके ओके ओके आशा जी,
2: धन्यवाद आशा जी, और आप
1: सो मच,
2: आप भी बनती हैं स्टॉप द वीक,
1: बाय बाय,
2: ओके बाय, ओके। आशा जी के साथ ही आज का कार्यक्रम वहां पर समाप्त हो गया,
1: समाप्त हो चला,
2: वही अंतिम श्रोता थी, और 5:53 हो गए हैं, और ठीक 6 आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे। और इससे पहले हम चाहेंगे कि उषा जी कुछ हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करें।
1: जी आप, मैं सोच रही थी कि आज मैं एक गजल पेश करूं।
2: अरे वाह, क्या बात,
1: लेकिन थोड़ा हमें पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं, और जो लोग खासकर हम ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं टू माइकल, उनकी भी विनुष और नाउइड के लिए, और सभी लोग जो हमें सुन रहे हैं विदेश से, आयरलैंड से अंसुया, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग टू यू, ओके
2: गाइए।

0: क्या बात है, मेहंदी हसन जी की गजल थी, लेकिन आपने क्या बखूबी गाया ये गाना, बहुत ही कठिन है। और इसी गाने से इंस्पायर होकर वो गाना निकला था ना, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए।
1: हाँ जी,
0: और बहुत ही सुंदर सा गाना उषा जी ने गाया है, गजल है ये तो। क्योंकि हमेशा आप गाना गाती हैं अंत में, लेकिन आज आपने गजल गाना पसंद किया।
1: और आपको याद दिला दे कि हमने गजल कंपटीशन में दो बार 2013 और 14 में
0: अच्छा
1: भाग लिया था, और दोनों के दोनों
0: पेश की थी।
1: बिल्कुल नहीं, लेकिन लेकिन फिर भी हम फाइनलिस्ट है।
0: अरे
1: गजल के कंपटीशन में
0: बहुत अच्छा, फाइनल तक आना ये अपने आप में एक बहुत मामूली बात तो नहीं है। बिल्कुल
1: जी, फाइनल फाइनल तक पहुंचना,
0: इट्स नॉट इजी।
1: और यहाँ पर व्हाट्सएप पर हमें सुन रही है शिमला फ्रॉम बेलरोज, मेनी थैंक्स फॉर योर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच
0: शिमला जी, बहुत धन्यवाद आपको।
1: जी हाँ,
0: चलिए इसी बात पर हम आपसे अनुमति चाहेंगे। उषा जी और रोशन को आप इजाजत दें, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ते रहें रेडियो मॉरिशस पर
1: जी।
0: एक और अंताक्षरी प्रोग्राम तक हम दोनों फिर से आपकी खिदमत में पेश हो जाएंगे। और जाते जाते ये गाना आपके लिए तकदीर फिल्म से लिया गया,
1: और साथ ही साथ में टिकटॉक के हमारे सभी लिसनर्स देखने वालों के लिए भी थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द।
0: बहुत जल्द ये गाना खासकर श्रद्धा जी के लिए जो कौंजाब रहती है, उन्होंने मांग की थी कि उषा जी ये गाना गाए, लेकिन किसी और दिन ये गाना उषा जी आपके लिए गाएंगे।
1: ऑफ कोर्स हम गाएंगे।
0: धन्यवाद आपको, बाय
1: बाय।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: बुधवार 16 सितंबर 2026 इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं। पेश है सायंकालीन समाचार बुलेटिन। सुर्खियां इस प्रकार है, 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 9 ग्रेड 8 के 200 बच्चे सप्ताहों में एक सत्र में भाग लेंगे। 2 सप्ताहों के लिए निर्धारित हैं और कई वर्षों के बारे में वे सीखेंगे, अनुशासन, सेवाभार, जिम्मेदारी आदि। अगले 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस, इसके संदर्भ में प्रांतीय प्रशासन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से सभी से देश को साफ रखने की मांग। मंत्रालयों और नियमबद्ध अधिकारियों को भी अपनी पहल करने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्रवाई का नाम ओबेरासियों जीरो डिपो। आज पोर्ट लुइस में इससे संबंधित जानकारियां दी गई। क्या मॉरिशस में अतिरिक्त रूप से क्लिनिकल ट्रायल किए जा सकते हैं? पहले से ही एक कानूनी ढांचा है, लेकिन सरकार अब से सरकारी अस्पतालों में और आगे बढ़ना चाहती है। स्विट्जरलैंड की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी हॉश सैकड़ों देशों में मौजूद और उसने एक गैप एनालिसिस सरकार साकार किया ताकि ये पता लगा जा सके कि देश में किन चीजों की कमी। गोपियों इंटरनेशनल के एक डेलीगेशन ने आज शाम ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री के साथ

0: की मुलाकात मुख्य रूप से मॉरिशस को एक वैश्विक कैपिटल का स्टेटस निर्धारित करने के प्रस्ताव पर बातचीत, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन से संबंधित चर्चा। और विदेश समाचारों में 16 सितंबर विश्व एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मना रहा है। इस वर्ष का आयोजन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थायी विरासत और ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति में हुई प्रगति को रेखांकित करता है। नमस्कार, एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी हुई है। एक पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 सप्ताहों के एक सत्र में भाग लेंगे। वे कई विषयों के बारे में सीखेंगे, जैसे कि अनुशासन, सेवा भाव, जिम्मेदारी और किस तरह एक साथ जिया जाता है। इस पहले सत्र के बाद अन्य नौजवानों को भी इस तरह के सत्र में भागने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए अब पर्यावरण और सफाई की बात करते हैं। अगले 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस है, जिसके संदर्भ में प्रांतीय प्रशासन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से सभी से देश को साफ रखने की मांग की जा रही है। इसके अलावा मंत्रालयों और नियमबद्ध अधिकारियों को भी अपनी अपनी पहल करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस कार्रवाई का नाम ओबेगासियों से होडेपो रखा गया है। आज पोर्टलिस में इससे संबंधित जानकारियां दी गई। दासापल सोमी की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
1: भूमि की सीमित उपलब्धता, ऊर्जा और खाद्य पदार्थों के आयात पर भारी निर्भरता, बढ़ता जल संकट और तटीय कटाव मॉरिशस की पर्यावरणीय लचीलापन का विश्लेषण इस पॉलिसी ब्रीफ में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र कंट्री टीम के अनुसार मॉरिशस की 11% आबादी मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा से प्रभावित है। खेती योग्य भूमि की चुनौती से निपटने के लिए रिपोर्ट में बताया गया है कि 2026-2027 के बजट में कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। यदि मॉरिशस अपनी लगभग 75% उपभोग के लिए आयात पर निर्भर है, तो रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 25x35 पहल शुरू की है। इसके तहत प्रमुख कदमों में 2035 तक कृषि उत्पादन के लिए उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल दुगुना कर 25,000 एकड़ तक करना था और विदेशी श्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाना शामिल है। जल के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की टीम का कहना है कि मॉरिशस जल संवेदनशीलता के मामले में सबसे अधिक और सबसे कम संवेदनशील देशों के बीच लगभग मध्य स्थिति में है। हालांकि पूर्वानुमानों के अनुसार देश को 2030 तक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा 2050 तक वार्षिक वर्षा में 13% की कमी होने का अनुमान है। इससे जल की उपलब्धता और कृषि उत्पादकता पर दबाव और बढ़ेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सभी के लिए पानी तक पहुंच कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके साथ ही जल सेवाओं के लिए बजट में 338.5% की वृद्धि की गई है। वनों की कटाई भी चिंता का एक प्रमुख विषय है। देश का केवल 23% हिस्सा अभी भी वनों से ढका हुआ है। यूनाइटेड नेशन कंट्री टीम के आंकलन के अनुसार वन क्षेत्र में कमी हमें अत्यधिक गर्मी की लहरों से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सुरक्षा से वंचित करती है और जल संचयन और जल धारण क्षमता को भी कम करती है। मॉरिशस को तटीय कटाव की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। देश की 17.6% तट रेखा पहले ही इससे प्रभावित हो चुकी है। अध्ययनों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में 2050 तक तट रेखा 5 से 25 मीटर तक पीछे हट सकती है। हालांकि यूनाइटेड नेशन कंट्री टीम ने पहले से उठाए गए कदमों का उल्लेख किया है, फिर भी उसने जल के अधिक कुशल उपयोग के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर के विकास की सिफारिश की है। यूनाइटेड नेशन कंट्री टीम जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन को मजबूत करने और जल उपयोग की दक्षता में सुधार करने की भी वकालत करती है। इसके अलावा स्थल और समुद्री क्षेत्रों के एकीकृत नियोजन एवं प्रबंधन को भी बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है।
0: बच्चे स्कूल न जाकर अन्य जगह जाते हैं, ये समस्याएं नौजवानों में पाई जा रही है। इससे निपटने के वास्ते कई कदम उठाए जा रहे हैं। सिल्वाना पारी मामन की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।

0: फ्लक में फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड की इस शाखा में गुमशुदा मामलों की जांच की जाती है। इनमें 16 वर्षीय इस लड़की का मामला भी शामिल है। एक रात 7 बजे वो फ्लक स्थित अपने घर से क्यूपिप के लिए निकली थी। लापता मामलों में 75% मामलों में लड़कियां शामिल हैं। ब्रिगेड के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से स्कूलों में युवकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनके अनुसार कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई बच्चा अपना पारिवारिक घर छोड़कर चला जाता है।
1: Majorité, c'est une fille qui est fuguée et la raison principale qui fait se taler, c'est à cause de ça.
0: Sajid Bhanda qui dit que hiti hai, ज्यादातर लड़कियों के लापता होने की खबर मिलती है और ज्यादातर कारण बॉयफ्रेंड का मामला होता है। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के यहां चली जाती हैं। इसके पश्चात जब ये लोग अपने घर वापस लौटती हैं, तब नाबालिग का शारीरिक संबंध में पड़ जाने का मामला खड़ा होता है। दूसरे कारण भी पाए जाते हैं, जैसे कि पारिवारिक तनाव, अभिभावकों का ज्यादा सख्त होना, बच्चों पर दबाव डालना, माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार और आचरण पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बच्चों का ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना या शांत रहना आदि। ये सूचनाएं नियमित रूप से मीडिया में प्रसारित की जाती है। ऐसा ही एक मामला 17 वर्षीय लड़की का है जो पिछले 4 महीनों से लापता है। कई माता पिता अब भी ये मानते हैं कि किसी के लापता होने या घर से भाग जाने की सूचना देने से पहले 24 घंटे इंतजार करना जरूरी है। सर्जेंट भंडा केदू कहती है, नाबालिग के मामलों में जल्द से जल्द रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की जाती है, पर इसके साथ साथ अपनों के यहाँ जांच करने की भी सलाह दी जाती है जहाँ बच्चे अक्सर जाया करते हैं। हम लोग इन जगहों पर अपनी तलाशी शुरू करते हैं। अगर परिवार को इसकी जानकारी है कि लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लड़की के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। 8 सितंबर तक फैमिली प्रोटेक्शन ब्रिगेड ने लापता होने के 193 मामले दर्ज किए थे। इनमें से 181 युवकों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया, जबकि 12 अभी तक लापता हैं। 2025 में नाबालिगों के लापता होने के 199 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 9 नाबालिग अभी भी लापता हैं।
2: और सुर्खियों में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। 13 वर्षों की रुकावट के बाद नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस की वापसी हुई है। इस पायलट परियोजना के लिए ग्रेड 8 के 200 बच्चे 2 सप्ताहों के लिए सत्र में भाग लेंगे। वे कई विषयों के बारे में सीखेंगे, अनुशासन, सेवा भाव, जिम्मेदारी और किस तरह एक साथ जिया जाता है। अनाबेल वुल्बिया की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
3: नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन की वापसी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। आज सुबह से प्रशिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। 16 से 28 नवंबर तक इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से इस पहले संस्करण में ग्रेड 8 के 200 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। देश के निर्माण के लिए एक ऐसा प्रोग्राम सहायक होगा जो नौजवानों को साथ ले आए, ताकि वे सीखने के साथ साथ जिम्मेदारियों का अनुभव कर पाएं। संविधान या सरकारी ढांचों के बारे में जानने के अलावा वे देशभक्ति के बारे में भी सीख पाएंगे। ये कार्यक्रम 2 चरणों में है। पहले सप्ताह में देश के 4 क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियाँ और प्रशिक्षण होंगे। दूसरे सप्ताह में रेजिडेंशियल कार्यक्रम होगा।
4: हम नौजवानों को सामाजिक कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, कैसे वे नेक कार्य के लिए साथ आ सकते हैं और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान कर सकते हैं, हम ये सिखाएंगे।
3: इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में जिम्मेदारी की भावना, टीम स्पिरिट और समुदाय के प्रति जुड़ाव विकसित करना है। हम चाहते हैं कि छात्र खुद सीख कर दूसरों को समझाने में सक्षम हो। रेक्टर को भी नाइस में सिखाए गए मूल्यों की याद दिलानी होगी। इस पायलट संस्करण में कई संस्थाएं शामिल हैं और निजी क्षेत्र

0: की भी भागीदारी है। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा ताकि इसकी प्रगति और संचालन की समीक्षा की जा सके और इसे ज्यादा छात्रों के लिए आगे बढ़ाया जा सके।
1: चलिए स्वास्थ्य की बात करते हैं। मॉरिशस में लगभग 100 ऐसे शिशुओं का जन्म होता है जिन्हें हृदय में कोई कुरूपता होती है। पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के दो स्पेशलिस्टों की एक टीम इन दिनों मॉरिशस में है और वे मिनी इन्वेजिव सर्जरीज कर रही हैं। इस टेक्निक की बदौलत कुछ मालफॉर्मेशन का इलाज बिना थोराक्स खोले किया जा सकता है, साथ ही अस्पताल में रहने की अवधि भी घटाई जा सकती है। वे ज्यादा जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। अभिभावकों के लिए ये एक भारी राहत की बात है। पेश है ये विवरण।
0: 10 महीने के इस शिशु की सर्जरी मंगलवार को की गई। जब वो 21 दिन का था तो डॉक्टर को उसके दिल में छेद का पता चला। उसके माता पिता के लिए ये बहुत मुश्किल रहा। उसके दिल में 2 छेद थे। हमने इलाज जारी रखा और डॉक्टर ने बताया कि एक विदेशी टीम सर्जरी के लिए आएगी। डर तो लग रहा था लेकिन डॉक्टर ने ठीक से समझाया और हम आगे बढ़ पाए। 4 दिनों के अंतराल में कुल 25 मिनी इन्वेजिंग कार्डियक सर्जरीज की गई। दिल की धड़कन में अजीब आवाज थी, छोटी थी तो हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो बेहोश हो गई और परीक्षण करने पर दिल में छेद का पता चला। इलाज हो पाया है, ऑपरेशन सफल रहा। इनका संबंध मात्र बच्चों से नहीं, 39 साल की अनुष्का को उसकी बीमारी के बारे में बहुत बाद में पता चला। 2-3 साल पहले इसका पता चला, कल सर्जरी हुई और आज मैं खुद को बेहतर महसूस कर रही हूँ। दुनिया भर में हृदय संबंधी असामान्यताओं के मरीजों का मार्गदर्शन करने वाली बरतानी संगठन हीलिंग लिटिल हार्ट्स प्रोग्राम के तहत इन मरीजों का इलाज हुआ, जिसके जरिए स्पेशलिस्ट की टीमें सार्वजनिक अस्पतालों में स्वयं सेवा भाव से ऐसे ऑपरेशन करते हैं और अपनी विशेषज्ञता बांटते हैं। हमने करीब 4,000 सर्जरीज की हैं। कैथेटर के जरिए बच्चों की सर्जरी करते हैं। हम 2016 से मॉरिशस आ रहे हैं। ये हमारा 9वां या 10वां दौरा होगा। हर बार हम 25 से 30 ऑपरेशंस करवाते हैं, सभी इसी टेक्निक से। मिनी इन्वेजिव टेक्निक से सर्जरी की जाती है जिसके तहत मरीज को काटना नहीं पड़ता है। इस टेक्निक से दर्द कम होता है, बच्चे जल्द ही ठीक हो जाते हैं। सामान्य सर्जरी में बच्चों को कई हफ्तों या एक महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है, लेकिन कैथेटर से सर्जरी कराने वाले बच्चे दूसरे ही दिन घर वापस जा सकते हैं, कुछ उसी दिन वापस जा सकते हैं। मॉरिशस का ये 10वां दौरा इस बार बुबा सेंट रोज़ेल के रोटरी क्लब के सहयोग से संभव हो पाया है।
1: यासिन धर्मामोद की रिपोर्ट पर विवरण याचना मिश्रा का रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही रहते हैं, क्या हम मॉरिशस में अतिरिक्त रूप से क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं? पहले से ही एक कानूनी ढांचा है, लेकिन सरकार अब से सरकारी अस्पतालों में और आगे बढ़ना चाहती है। स्विट्जरलैंड की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी गॉश सैकड़ों देशों में मौजूद है और उसने एक गैप एनालिसिस साकार किया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि देश में और किस चीज़ की कमी है। तो क्या हम क्लिनिकल अनुसंधान में नया चरण पार करने के लिए तैयार हैं? अंजुराम गुलाम की रिपोर्ट पर विवरण करना लालू।
2: किसी नई दवा, वैक्सीन, चिकित्सा उपकरण या उपचार से पहले उसकी जांच करना, यही उद्देश्य है क्लिनिकल ट्रायल्स का। मॉरिशस में 2011 से क्लिनिकल ट्रायल्स एक्ट के तहत ऐसा किया जाता है। अब अधिकारी इस व्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं। 2026 में अपनाए गए क्लिनिकल ट्रायल्स एक्ट के सुधार का उद्देश्य क्लिनिकल रिसर्च की प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित करना, सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले परीक्षणों को बढ़ावा देना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसी संदर्भ में स्विट्जरलैंड की दवा और वैश्विक चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गोश ने अपना गैप एनालिसिस रिपोर्ट फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स प्रस्तुत किया। क्लिनिकल ट्रायल की बेहतर समझ के लिए गोश मदद कर सकती हैं। एक योजना बनाई गई है ये दिखाने के लिए कि कैसे ढांचे कायम किए जाए, कौन सी जानकारी सूचित करें ताकि मॉरिशस हॉस्पिटल अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को प्राप्त कर सके। क्लिनिकल ट्रायल्स को लेकर
3: set up, what should be reported on.

0: and what can really take Mauritian public sector hospitals to a standard that's internationally accepted for clinical trials.
1: काम पहले ही शुरू हो चुका है. पोम्पलेमुस के सचिव सागराम गुलाम हॉस्पिटल में हृदय रोग के 23 मरीज फिलहाल एक ऐसे परीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें एक नए चिकित्सा उपकरण की जांच की जा रही है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा इस रिपोर्ट से जान सकेंगे कि क्या बेहतर करना है. प्रशिक्षण, लैबोरेटरी, फार्मासी, मूल ढांचे और सुरक्षा को लेकर मकसद पब्लिक अस्पतालों में नए इलाज की बेहतर पहुंच है. लेकिन एक सवाल सबसे अहम है, मरीजों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए. डॉक्टर निशान नंदलाल ने कहा प्रतिस्पर्धा का मतलब सुरक्षा में ढील नहीं. ये रिपोर्ट यह आश्वासन देती है कि जो भी कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुकूल हो.
2: कॉन्फियंस की टू ने जाफे कि नू पे फेयर इट अपर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नू पावे कट कॉर्नर्स टिटुला.
1: दक्षिण अफ्रीका में उदाहरण के लिए स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं की जीवित रहने की दर करीब 40% है. वहीं अधिक विकसित स्वास्थ्य प्रणालियों वाले देश में ये दर 80% है. मॉरिशस में भी कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बीच नए क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत को सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है. शमीमा पाटिल कहती हैं मॉरिशस में साल में स्तन कैंसर के 700 नए मामले बहुत ज्यादा हैं. रोड्रिग्स में भी वृद्धि है. हम काफी पीछे हैं, इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा. करीब 6 महीने में क्लिनिकल ट्रायल्स का विस्तार मधुमेह से पीड़ित मरीजों तक भी किए जाने की उम्मीद है. आखिरकार इस शोध का मकसद सिर्फ एक नया उपचार खोजना नहीं बल्कि उन जिंदगियों को बचाने की कोशिश भी है जिन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है.
3: ग्रुप यू इंटरनेशनल के एक डेलीगेशन ने आज शाम ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ भेंट की. मुख्य रूप से मॉरिशस को वैश्विक कैपिटल का एक स्टेटस निर्धारित करने के प्रस्ताव पर बात की गई जैसे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन से संबंधित. इसके अलावा मॉरिशस में हर 2 वर्ष युवा संगठन की एक बैठक लगाए जाने पर भी बातचीत चली. फ्रांस के नए राजदूत अलेक्सिस लॉये और फ्रांस और थाईलैंड के नए राजदूत एकापल पुल पिपत ने आज स्टेट हाउस रेजी में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के साथ रस्मी मुलाकात की. फ्रांसीसी राजदूत समुद्री सुरक्षा पर आदान प्रदान मजबूत करना चाहते हैं. उधर थाईलैंड की तरफ से व्यवसाय, निवेश और कृषि एवं खाद्य सेक्टर में आदान प्रदान के विकास को बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया जा रहा है. इन दिनों 2,73,000 से अधिक मॉरिशनों एवं रोड्रिग्स वासियों को बेसिक पेंशन प्राप्त हो रही है. इसी सप्ताह प्रकाशित समाज सुरक्षा मंत्रालय से प्राप्त हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में अगस्त महीने के अंत में लाभार्थियों से संबंधित जानकारियां दी गईं. इनमें से 5,300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 90 वर्ष की आयु से कम है और इनमें से 242 ऐसे लोग हैं जो 100 वर्ष के हो गए हैं. इस बुलेटिन में उन लाभार्थियों के नाम भी शामिल जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स और कई सोशल अलाउंस से लाभ उठाते हैं. स्टेट एज पेंशन के अमल में लाए जाने से आंकड़े भी प्रभावित होंगे. इसी के साथ बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर. 16 सितंबर को विश्व एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मना रहा है. इस वर्ष का आयोजन मोंट्रियल प्रोटोकॉल की स्थायी विरासत और ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति में हुई प्रगति को रेखांकित करता है. संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूनेप की नवीनतम वैज्ञानिक आंकलनों से पुष्टि होती है कि यदि वर्तमान नीतियां बनी रहती हैं तो अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत के 266 तक, आर्कटिक के ऊपर 2045 तक और शेष विश्व में 2040 तक 1980 के स्तर पर वापस आने की उम्मीद है. ये उपलब्धि वैश्विक सहयोग की शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है. विवरण करुणा लालू.
1: विश्व ओजोन दिवस के मौके पर 16 सितंबर को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने अपनी ओजोन बुलेटिन जारी की. इस दिन 1987 में हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की उपलब्धियों को याद किया जाता है जिसके तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में सफलता मिली. इस वर्ष की थीम है ग्लोबल एक्शन फॉर ए कूलर प्लैनेट यानी कि ठंडी धरती के लिए वैश्विक कार्रवाई। प्रोटोकॉल में की गई किगाली संशोधन की 10वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करती है। 2016 में हुए किगाली संशोधन के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC के इस्तेमाल में चरणबद्ध कमी लाने का प्रावधान किया गया। HFC ऐसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जिनका इस्तेमाल ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों के विकल्प के तौर पर किया जाता है। इनका इस्तेमाल रोजमर्रा की कई कूलिंग तकनीकों में होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इंसुलेटिंग फोम और कुछ चिकित्सा तथा औद्योगिक उपकरणों में भी। पिछले 4 दशकों में वायुमंडलीय निगरानी से नियंत्रित ओजोन क्षयकारी पदार्थों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ अप्रत्याशित उत्सर्जन भी सामने आए हैं, इनमें CFC 11, HFC 23 का उत्सर्जन शामिल है। इसीलिए वायुमंडलीय निगरानी अभी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी से राष्ट्रीय प्राधिकरणों को जरूरत के मुताबिक लक्षित नियामक कदम उठाने में मदद मिलती है।
3: अन्य विदेश समाचार। कोसोवो के पूर्व अध्यक्ष हाशिम ताची को युद्ध अपराधों के लिए दोषी पाया गया है। इनमें हत्या, अत्याचार और कोसोवो युद्ध अपराध अदालत की ओर से गैर कानूनी रूप से हिरासत शामिल। 58 वर्षीय ताची को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 1990 में सर्बिया में इलाके के हिंसक हादसों के दौरान अल्बेनियन कोसोवो लिबरेशन आर्मी के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से किए गए जुर्मों के लिए उसे दोषी पाया गया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा ने EU का पहला सदस्य बनने के कनाडा के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उर्सुला वॉन डर लेयन ने यूरोपीय संसद को बताया कि वे कनाडा के लिए दरवाजा खोलने के बारे में काम करना चाहती हैं, जिससे कि कई अहम सेक्टरों को लेकर घनिष्ठ संबंध कायम किए जाने की बात शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नर ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि वे EU के साथ एक अद्वितीय संबंध कायम करना चाहते हैं। गाजा पट्टी में एक युद्ध से नुकसानग्रस्त इमारत के ढह जाने से कम 12 लोग मारे गए, दर्जनों लापता हुए, इनमें बच्चे भी शामिल। मलबों तले से शव और जीवित बचे लोगों को निकालने का काम जारी है।

मौसम संबंधी जानकारियां कुछ इस प्रकार है। मॉरिशस में ऊंची लहर उठने की चेतावनी जारी है, जो गुरुवार 17 सितंबर 2026 को दिन के 10 बजे तक लागू है। मस्कारिंस के दक्षिण में काफी जोरदार एंटी साइक्लोन है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर ठंड हवा बह रही है और मौसम भी हवादार है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रह कर बादल घिरे रहेंगे और रह कर बारिश भी होती रहेगी। मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके और सेंट्रल प्लेटू पर कुछ इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्व की ओर से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। ऊंचाई पर अगर कोई कार्य है तो इससे बचने की मांग की जाती है, साथ में सड़कों पर भी सावधानी बरतने की मांग की जाती है। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र बहुत खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में ऊंची लहरें उठेंगी, 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ये लहरें तटीय इलाकों तक भी और निचले इलाकों तक भी पहुंच सकते हैं। इस तरह मच्छरों से, प्लेजर क्राफ्ट चलाने वालों से और लोगों से मांग की जाती है कि वे समुद्र में न जाएं और तटीय इलाकों में भी समुद्र तटों पर न जाएं। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 18 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 23 एवं 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्योदय सुबह 6:04 पर, जबकि सूर्यास्त शाम 6:04 पर। मौसम संबंधी अन्य जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे अपने टेक्निकी सहयोगियों लुडोविक और कुविला को। कुछ ही समय में शोक समाचार।

तमिल टेंपल रोड क्लेमेंसिया में तमिल टेंपल रोड क्लेमेंसिया में 46 साल की 46 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुचिता मोती पैदाइशी नाम गोपाल सिंह, जो मीनाक्षी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल सुबह 10 बजे उनके घर तमिल टेंपल रोड क्लेमेंसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खुदोदूस

श्रीमती चूड़ामन लोहार, श्रीमती चूड़ामन लोहार पैदाशी नाम दुखी, जो मैडम जयराम नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री अजय लोहार के घर एमिली स्ट्रीट सेंचिलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचिलिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो 8:11 AM। जानकी स्ट्रीट होशनो में 42 साल के 48 ईयर्स ओल्ड के श्री धूसन रिडोई, जो जाकी नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके पिता श्री धर्मवीर रिडोई के घर जानकी स्ट्रीट होशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए होशनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो 8:11 AM। अटलास रोड गुडलैंड्स में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजकुमारी बोंदा, पैदाशी नाम गोकुल, जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री दिनेश बोंदा के घर अटलास रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआगोज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमारो 8:01 PM। शुक्र मेरुबिन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भक्ति धारा। तो चलिए, भक्ति की धारा बहने जा रही है आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। भजले प्रभु का नाम। सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, निष्ठा मन की वह ज्योत है जो कठिन समय में भी विश्वास जगाए रखती है। तो आइए श्रोताओं, इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का

भक्ति से संबंधित चंद प्यारे प्यारे भक्ति गाना आपकी सेवा में हम प्रसारित करने जा रहे हैं श्रोताओं। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। श्रोताओं, निष्ठा वह शक्ति है जो हमें बार बार प्रयास करने का साहस देती है। मंजिल चाहे कितने भी दूर हो, अगर मन में विश्वास हो और कदमों में निरंतरता हो तो रास्ते आसान लगने लगते हैं। तो आइए कदकम को हम जारी रख रहे हैं।

श्रोताओं, ईश्वर के प्रति निष्ठा हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन सच्चे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना ही जीवन की सुंदरता है। तो आइए श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम को हम

भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं श्रोताओं। कहते हैं कि निष्ठा वह मौन शक्ति है जो बिना शोर किए

इंसान को उसकी मंजिल के करीब ले जाती है। तो चंद भक्ति गान आपकी सेवा में आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। रात के हम सफर हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आइए

श्रोताओं, जब भक्त का मन ईश्वर के चरणों में सच्ची श्रद्धा से जुड़ जाता है तब प्रार्थना में गहराई आती है और जीवन में धैर्य बढ़ता है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। आप लोगों का साथ रहा, धन्यवाद। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी से मग़फ़िरत तलब करते हैं। हम अपने नफ्स के शर से और बुरे आमाल से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रेडियो मॉरिशस की उर्दू नशरियात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान अबीनाज जान अली। महफिल शब प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। इस पुरनूर वक्त में अल्लाह पाक को याद करने जा रहे हैं। आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करते हैं। बागौर व अदब समा

सौबान रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र को नेकी के सिवा कोई चीज़ नहीं बढ़ाती और तकदीर को दुआ के सिवा कोई चीज़ नहीं बदलती है और आदमी गुनाहों के इर्तकाब के सबब रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। बहवाला सनन इब्ने मा

सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ तकदीर से है, यहाँ तक कि आदमी का नाकारा और नाकाबिल होना और काबिल व होशियार होना भी तकदीर ही से है। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। आपकी तवज्जो के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। शब बख़ैर। सुभानकल्लाहुम व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: संगते लोग घड़ी मिला लो बखत रात के ठीक 9 बजे बाद तू सुन तो एमबीसी रेडियो मॉरिशस और एमबीसी रेडियो मनोरंजन
1: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस
2: कंटीन्यूअस म्यूजिक
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तोहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
4: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
0: सब संगतियों के और जी प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। भोजपुरी दर का प्रोग्राम प्रस्तुत बा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर अभी से लेकर रात के 11 बजे ले आज है बुधवार की रात बुधवार 16 सितंबर साल 2026 शाम के जब दक्षिण की ओर से आवत सीमा में पानी पानी कले रहल और हवादार मौसम बरकरार बा ठंडा भी बढ़िया लगता था बस थोड़ा मन करता को भोजपुरी गीत सुनने के तो नंबर वा घुमैया का जगह देवे जगह चैंक का जगह देवे जगह चैंक 4028085 पर और चलो शुरू कर ले जाए धमाकेदार प्रोग्राम के साथ मुकेश चेदी की गावल गीत के साथ नमस्ते नमस्ते

Namaste, namaste, namaste, namaste, pakoste, namaste, pakoste. नमस्ते नमस्ते हो सब भाई बहनों के, सब श्रोतालों के, सब संगीत प्रेमियों के नमस्ते. रात के 9 बजे के साथ में थोड़ा बुरा जरा संगत यारों की ढेर मना रिश्ता बाप धरती पर सबसे प्यारा रिश्ता है दोस्ती के रिश्ता. जैसे कि हमने के तुलों के दोस्ती के रिश्ता बा और हमने के तुलों के रिश्ता अभी से नहीं बा, जब MBC फोकस साइड कुपीप में रहा तब से आज से हमने कर तुलों के दोस्ती बा. तो दोस्ती खूब नहीं भाईला उतना बरिश से वैन साइकों से 25 बरिश से तुलों हमने के साथ दिया था रेडियो पर, MBC रेडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद. और बेशक जब MBC फोकस साइड में रहा तब वहाँ पर रहा वन वर्ल्ड FM, ताल FM, राजो मोगिस, रेडियो मोशिस और कूल FM. थोड़ा याद बना वन वर्ल्ड FM पर हर सामने के फजर के 5 से 9 बजे हम तुरके साथ देव थरी वन वर्ल्ड FM पर. याद बाकी नहीं आई है. और अभी अगला गीत चली आई लव यू. बाप रे बाप के बोलता आई लव यू हो सुनीता नन को. और देख सर कौन सा गति अभी लाइन पे बा, हमने के इंतजार करा था. वाह भाई विजय बेनी पर्सन कैसे भैया. और ये भैया हमने के इंतजार कर लगभग कैसे बतिया आप सर.

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते भाई जी।
0: हाँ भाई विजय, कैसे बस समाचार?
1: कैसे भाई जी, अच्छा हुआ ना?
0: हाँ हो भाई, कैसे? ठंडा थर थरी कप कपी लगा था,
1: ठंडा कर रहा था। हाइजा पड़ी तब सामुनी में बहुत ही ठंडा बा भाई।
0: ए रतवा के जस्ती ठंडा करे रहा ना?
1: हाँ रतवा के जस्ती अभी तनी सन पानी बरस गलबा ने हाइजा पड़ी।
0: बाप हवा हवा हो का
1: जस्ती ठंडा कर रहा
0: था। तो सुनते है देने फ्रेशियर है बस कि सुनते अभी सुख सामने से अब मूवी गई थी गर्म करे। अभी एलिनो के प्रभाव पर एलिनो कौन सी है ना, एगो सांस में क्लाइमेटिक हुआ था। अभी बड़ी गर्म करी है, जैसे मजबूत ठंडा का लगभग गर्म बड़ी करी। और बोले थे भाई विजय कौन गीत सुन रहे?
1: जिगरी
0: तो हमेशा तोहर बात करे रहा।
1: हाँ तब वो तो बेस्ट फ्रेंड है।
0: कितना कितना कितना बड़ी से काम आ दो हो
1: जानेला? हम हमरा से संसाक हो गल बाती तो हम गत गति हो गयी।
0: हाँ,
1: हम सिक्योरिटी काम कर चली।
0: हाँ,
1: फिर बनाने 7 बरिस काम कर ली सैटोबे में।
0: ओके ओके,
1: तो उस 7 बरिस शान फजी लोग का संगीत बजाते कर चली।
0: एता
1: हाँ, तो हमने जानेला एगो परिवार से जस्ती है,
0: जस्ती है जो दोस्ती के शायद परिवार से जस्ती कब कब परिवार नहीं थे तो हर काम आगा तो हर।
1: हाँ जस्ती मजे संगतिया बहुत ही संगतिया।
0: बोले हम तुम दोस्त
1: में सबके टेलीफोन करेला, वो टेलीफोन करेला हमरा।
0: अच्छा बा अच्छा बा अच्छा बा।
1: चाल के को बड़ी सुज के दिन को मजे हमेशा अभी रोज सामुनी में आवेला।
0: संगे जब भेटा तो संगे एक दो गुड़की मारे रहे ना।
1: नहीं तो जाने ला लेता ना मिलेला।
0: हाँ काम से
1: जाने ला वो सोफिया वान
0: ना। हाँ तब जिप्सी बा।
1: अब हमने देखा वो मोहताबा रहेला हम सामुनी तो ई कुमाजे एक दिन ओ गांधी से ओ मोए कुमाजे एगो शादी बिया ओकर यहाँ रही तब कुमाजे।
0: हाँ
1: हाँ हाँ तब सा कुमाजे ऐसे जाने ला ऐसे वो काम करेला तो बोल बा चले एगो गुड़की दिए तो वो कुमाजे कर देना।
0: डिफिसिल बात, डिफिसिल
1: बात, डिफिसिल बात है। ऐसे बैठाएला सी
0: कुमाजे बतौर के लामिची हमेशा इसने बढ़ती रही और जो प्यार अपनापन बा दू को भाई लिखा रहा तो सर भगवान से दिल की दोस्ती हमेशा बराबर रही।
1: हाँ वो उधर लग संगतिया में एगो बिहार संगतिया
0: एगो बेस्ट फ्रेंड है।
1: एगो बेस्ट फ्रेंड है कुमाजी उधर सुन
0: लिया। तब भाई विजय बहुत बहुत धन्यवाद बात कर ला। अगला गीत और कहते नाटक व सिनेमा व आली बंकवाज सामुनी में बड़ी ठंडा कर रहा था मौका में तो बड़ी ठंडा भी सुनाल बा मिठी बोलता से जी ठंडा करी और सकेला सुख सामने देख बड़ी गर्म कर दे शुरू करेगी। हाय अगला गीत नाटक बा सिनेमे बा के कर संगे जैब साइलेंट केयर से गीत चाहता और माँ रीता और मौसी रेणुका के नाम मोहताबा रेन से आशा जानू कोते से और नेफ्यू शुभम मामा कुमारी दीदी आरती जीजाजी और चीजों खतेर रतनी हाल गौबे से पापा विजय पत्नी करुणा चाची ललिता कुशल थयोली से अवन बोबा से भाई हरीश पौलो जैसे काला छोटे देवेन नदी वाला वनकूवर कनाडा से अवन और स्वीट एंड लवली रेहाना हसन अली के नाम आप रहेलन फेनिक्स। तो चलो ये सब श्रोता लोग के प्रसिद्ध पर गेट नब जा नाटक बस सिनेमा बा

रात के 9:20 तू सुनते हो भोजपुरी तड़का प्रोग्राम लाइव रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और बोले तो छोकरा छोकरी में कौन जस्ती माले या मालिन है उनसे मॉरिशस में एक सभी हो रहा फेकुआ सतीशिक बोला कि छोकरी लोग छोकरा से जस्ते मालिन रहे रंस हर एक क्षेत्र में छोकरी जो है आगे बा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो कोनो भी डोमेन में हमने के छोकरी छोकरा से जस्ती मालिन है उनसे वाओ क्या बात है। यार आगे के जमाना में जब छोकरा लेकर होता तो ढेर कोई बोले साहब वो फोमियालो सा छोकरी दे जम लो आजकल दोनों फोमियालो है भैया वो चाहे छोकरा लेकर थोड़ा भगवान दे रख भाई छोकरी लेकर ये दोनों फोमियालो है दे जम लो ना ये बोलिया लो के दिल दुखा जाए। तो छोकरा छोकरी अगर पढ़ी लिखी बड़ा आदमी बनियन से और देखिए ऐसे छोकरी लोग दस्ती नहीं मन गजल टाने का प्रीमियर प्रीमियर सेकेंडरी तेरे में भी छोकरी लोग दस्ती नहीं बनते छोकरा लोग से ज़्यादा काम करे रहें सर। तो छोकरा लोग हमनियों की इज्जत बा हमने की इज्जत गिराई ना छोकरा लोग भी पढ़िया लिखिया और आगे बढ़िया। और शिक्षा जो है लावीनिया के वो पासपो है सब कोई जहाँ पढ़ा निकल रहे कि समाज में तब सकब फोगे करे और आगे बढ़े। अगला गीत बरसेला और गए राम तोहर सीता देवी जहाँ बहुत ही प्यारा संगीत है और गीत हमने चावत चलावत इसे सब श्रोताओं के नाम ज्ञान और चित्रा विश्राम और दलबिया से कमला दिनू मोहताबा से और चीजों फुआ रोहित खातिर और ये गीत चली हरिदाल दिनू और सब दिनू परिवार राजमन्ना लोंग चिबुक राजा स्टीव प्रवीण भैरव संजू संजीव दिनू श्याम मंगल सुदेश जसवा और माँ राजकुमारी और हई गीत चली साइरेन की ओर से और बेस्ट फ्रेंड वीरानंद दीनदयाल के नाम तो चले एक साथ सुने गीतवा बरसेरा

ऐसे में देखा तो सब कोई बोलेला तो संगतिया वंस पर जब बेज आवेला जब दुख आवेला तब तू असियत में जन्म की तो हर संगतिया के बा और दुख के समय में जिन संगतिया काम आवेला वही सच्चा संगतिया कर जाला। अंग्रेजी में कहावत बा ना ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जरूरी नहीं बाकी तोहर तोरा चाहे ढे मना संगतिया खाली एक दुगो संगतिया रही और संगतिया सेंसे रही होने रही तो बस है ये काफ़ी बा हो कि नहीं कमागत कमागो नहीं बन अगर कोई सी दोस्ती कर ले तो हर हाल में अपन दोस्ती निभाई एगो दोस्त न एगो भाई लिखा रहेला एगो परिवार के सदस्य लिखा रहेला जौन हमने के सुख दुख में साथ देवेला और जब तू दुख में रह तो आके एगो सहारा दे थोड़ा एपुले करी ई कहाला सच्चा दोस्ती। अगला गीत सुबह रामचंद्र फकीर गेले वन कहा छोड़ के गीत चलाओ मिसेस बंधन मिसेस चंपा रघुनंदन मिसेस ओकल मिसेस रघुबा और मिसेस झमन के नाम साथ में गीत चली स्विट्जरलैंड के रंभा और तीन को बेटी घरोला और सब जानकी परिवार जो गुडलैंड रहे रह और है गीत चली रवि बंगारू और सब परिवार के नाम कहाँ छोड़ के। अब कहाँ छोड़ के कि कहाँ जाता चल एक साथ सुना जितना कोई उनके साथ जुड़ल बा रेडियो सुना था वह तय गीत तो नाम खासम खास

0: कहाँ छोड़ के जाते हो कहूँ नहीं जा बस हमने के साथ दे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर अभी चाची ललिता हमने के साथ देते हैं। चाची ललिता नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा, कैसे हो?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं, तू कैसे हो चाची?
1: कुशल मंगल बेटा।
0: पानी बरसाता तू जोरे में?
1: हाँ हाँ बरसाता।
0: चाची हम तुमसे कोई बात पूछ।
1: बोला
0: ठंडा करे तो हमें आम हो आता था, ये कैसे? बाजार में देखते हैं
1: बच्चा आम फरते रहे लाने आले लाने
0: बाजार में देखते हैं बहु बाप रे बाप हो बड़ा बड़ा थी आम बेचाता। तो और बगैर आम बाह भी हुआ था
1: बाटे आम तसल में अब सब सूखे मुंह डाल दे रखा।
0: हाँ यो चाची हम बोली आई थी तो हर लगे तो नौ चार कुछ अच्छा डाल देती
1: है। आई
0: रखे मगर एक साक है।
1: अच्छा हाँ
0: हाँ, और कैसे समाचार बोले था?
1: सब कुशल मंगल बाबा।
0: अरे कौन गीत सुन चाची बोला?
1: आज बेटा डाल दिया विनोद शिव दत्त के भोजपुरी भाषा।
0: भोजपुरी भाषा विनोद शिव दत्त? हाँ। के कर खातिर
1: डाल दिया हमार बहन सुदेवी ज्ञानी हमार छोटी दीदी दादी प्रभावती हरीश भैया आत्माराम भैया।
0: हाँ चाचा आत्माराम कैसे बाबा बोला तो कनु बे
1: तनी अच्छा हवन।
0: हाँ घर वाले देखे?
1: नहीं नहीं
0: देता नहीं मिला
1: मिल जाला।
0: हाँ हाँ हाँ राजू से। हाँ और बोला और क्या खातिर?
1: और शुक्लाल मौसी।
0: हाँ
1: तो हर खातिर बेटा
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कितना अभी याद के 11 बजे सुनिया है।
1: हाँ हाँ
0: अभी गमटा होते रही।
1: हाँ हाँ
0: अरे बहुत धन्यवाद चाची।
1: अच्छा बेटा शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि चाची। एम के चाची एम के प्यारे से चाची एम के जुलार के चाची ललिता कुशल हवन थ्रियोले से तो थ्रियोले में जितना कोई हमने सुना था सबको की प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते। कलकत्या परिवार जीराखंड परिवार महाराणा प्रताप ले थ्रियोले थ्रोविश के सब हर को परिवार के भी सलाम बा। और चाची मंगलक गीत विनोद शिवदत्त के बाप दादा लोग के बोली तो चला बाप दादा लोग के बोली हम यो सुनब जा तोरा सुनाब जा।

इरहल बाप दादा लोग के बोली और अब हम नहीं तोरा को ब्यूटी टिप्स देव सर। तू चाहे पुरुष हो या स्त्री हो और चाहत हो कि तोहर चेहरा ग्लो करी ओकर में कुछ चमक आए और चेहरा में अगर बूतों बा या सांवर बा चेहरा तो सकब के सफा करी कैसे देखो कुकुम लिया कुकुम जान ले ना ककम्ब जो नॉर्मल में खाया जा सर ओके छिल के ओकर दाग निकाल के गोल गोल कचिया होंदे फिर अपन चेहरा में ओके दलिया एगो 15-20 मिनट ले और फिर होंदेलवा के निकाल के ठंडा पानी से धोइया देखब तोहर चेहरा ग्लो करी ओकर में कुछ चमक चलाए तो कुकुम में औसन तत्व है तोहर लापों के थे कर अधे कोई हम दिख रहे हैं सर टीवी पर भी दिख रहे हैं सर और मीडिया पर भी सोशल मीडिया पर कि कैसे जो कुकुम जो हमने खाए ला सर ओके गोल गोल काट के अपन चेहरा में दलब तो बेशक चाहते इंतजार करके रोज के उसे करिए और देखब एक सप्ताह में तोहर चेहरा एकदम चमकी लगी ग्लो करी ओए होए। अब सुनब जाए अगला गीत मधु नीरज गुप मधु के गावल गीत है आधा रात और है गीत हमने चलावत है इस विशाल उजायब के नाम आप ग्रोव विशाल मंडा बिटली में हवन कर पत्नी और बेटी खातिर विशाल विशेष राफ्रो वासे कर पत्नी कर बेटा शालिनी हिरू कर घरोला कर डुगो बेटी और भाई कृष्णा खातिर प्रतिमा तीना दीना बानु रोशनी अपाया सजू ओसाई विरापेन खातिर एक गीत और MGI कॉलेज जुनमुका में स्थित वहाँ के सब स्टूडेंट और अध्यापक दोस्तों के नाम एंड विदाउट फॉरगेटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस

0: और देखे तू सपना में दिखेला गरु तो और सामने चलाए तो कितना अच्छा बात है यहाँ की नहीं रात की नौबत के 50 मिनट और संग लाइन पे कॉल से मिलब जा। हेलो जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी
0: के हवा जा
1: श्रीमती
0: सुयाक से
1: हाँ।
0: कैसे समाचार बा माता जी वहाँ पानी बरसता
1: हाँ,
0: का
1: हाँ, सब ठीक
0: सुनाता पानी बरसता वहाँ
1: हाँ, पानी उनी बरसता
0: ठंडा करता
1: पूजा पाठ सब अच्छा से हो
0: हाँ, सब गणेश चतुर्थी के पूजा हो ना निमन से
1: हाँ,
0: अब गोविंदन के पूजा हो वेंकटेश्वरा के पूजा हो
1: हाँ, अब

0: को गीत डाल दिए हमारे खातिर।
1: कौन गीत?
0: चिराई करी चुक चुक महलिया में चोर बा।
1: तो सुन गा दे हमने खातिर।
0: नहीं गा की नहीं आवला।
1: थोड़ा सुन चाची गा दे
0: ना। अरे गा दिला।
1: अरे बगा।
0: चिराई करी चुक चुक महलिया में चोर बा। पुलिया समार देवरवा बोले चोर बा। पुलिया समार देवरवा बोले चोर बा। देवरवा बोले चोर बा। देवरवा बोले चोर बा। पुलिया समार देवरवा बोले चोर बा। चोर बा चोर बा।
1: ब्रावो ब्रावो चाची, बहुत बहुत बधाई। देखे जोड़ी से गा दिला।
0: गीत वहाँ डाल दिया सब परिवार लोग खातिन। चंद्रमुनि परिवार, मोहित परिवार खातिन, और आपके लिए, आपके सब टीम के लिए डाल दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और गीत चली तुझ स्वीट। ओके आले नमस्ते। और एक गीत चिराई बोले चुकु चुकु सुनता गई है। गीत चली मिशन क्रॉस रोड लाल माटी के रविराज सिन्हा बिचुक की ओर से, ओकर पत्नी स्वयं प्रभा, बेटा प्रत्यक्ष और सब बिचुक परिवार के नाम। अमृता डुंगूर हवन लाल माटी से, ओकर बेटा अभिषेक और सब डुंगूर परिवार के नाम। और जितना कोई विराट के सुना था सबको एक बोला था, ऐजा अगर काम करे तो वह नाइट शिफ्ट में लगल हो। हमने देखा था बोंकुआ से ठंडा में काम करे के आसान नहीं बाए, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स बा, पुलिस अफसर बा, फायर सर्विसेज में काम करें, समितियों में, कॉल सेंटर में, जहाँ कहीं भी तो काम करे तो वह बोंकुआज। चला है गीत सबको के नाम, जन सुना था MBC रेडियो। चिड़ैया बोले चुकु चुकु। अभी रात के वक्त चिड़ैया कहाँ बा खोजते, चिड़ैया मिल जाते पकड़ के रखते, अभी आओ प्ले जाए। कहीं कौन कहते चिड़ैया बा रात के चुक चुक चुक चुक चुक चुक करता। सुनता ननकू की गावर गीत का जगह दे हुई जगह हुई सांक सब बजा टेलीफोनी करे। हमने की लाइव टिकटॉक चली रात के 10 बजे से 11 बजे तक। लाइव टिकटॉक ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: On the hour, every hour,
2: Radio Marches.
0: Bhojpuri, Tadka.
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
4: रात के 10 बजे तक और तू सुनते हुआ हमने के रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर और हमने के टिकटॉक पेज अभी खोला था इसे रेडियो मॉरिशस पर भोजपुरी का प्रोग्राम और जी प्रताप सिंह सितालू के साथ रात के 11 बजे रे अगला गीत नुमा ये कृष्णानंद से गीत हुआ गई लेवन और है गीत हमें चावत इसे सब संगतियारों के नाम जो हमने के साथ जुड़ल हवन जा और आप हवन स्मिता कहुपन नमस्ते मंती चितामु निर्मला स्वरूप शीला दामा मुतु जिया संध्या रोशन देवी राजेश उजिहारी नाजिम ब्लैक ब्यूटी जॉग बसने मनीलाल जुमंगू है गीतर नाम त्रिश एडोस है गीतर खातिर प्रिंस आकी जोशनी अक्षय टोकाबॉय जहीना नजीला लवना देवी रकीबाई इस्ता बिशनोत मीरा सावक बिपिन बी सीना देवजी प्रिया बाचू है गीतर नाम सुरेखा सुबाला इब्राहिम एस के येश रोशन तेलर दया लवना की ओर से गीत चली ओकर लव रोलान खातिर जो किन्या में काम कर बिपिन बी खातिर बहुत बहुत प्यार से माला मिदुन घर गीत चली मिदुन की ओर से सब संगत यारों के नाम और बुला तो उनकी भी खाना तैयार करता और हमने की भोजपुरी गीत के मजा ले हुआ था बिपिन बी है गीत तो हर नाम सेवानी नजन आशा पमा सिलवानी नजन धोआ आई गीत हो नाम माला जी गीत हर खातिर अलीशा आई गीत हो नाम इस्माइल सुबुआ वो भी हमने साथ देवत हवन तो चले एक साथ सुने हैं गीत हुआ ड्रागोस्ता ये नुमा नुमा ये एल्बम है जलसा बॉलीवुड गीत हुआ गेलेवन कृषि और नांसी

कब कब होला कि बात बात में कोई तोहर दिल दुखा देवेला और तू उदास हो जा रहा, तुहर मूड गाते हो जा रहा, तू फिक्र नहीं कर जा, गुस्सा में सकेला कबो कबो कोई थोड़ा कोनो बात बोल देवे तो दिल में नहीं रखिया, ओकर बात की गिनती नहीं लिया, तू जाने ना तू सही हो फिर काहे चिंता करेला। अरे भाई दिल तोड़ेरा ढेर बार दुनिया में, पर दिल जोड़ेरा कम थी बा, हाँ कि नहीं? और हमने तो हमेशा दिल जोड़ेरा सर, रिश्ता अगर कोनो प्रॉब्लम है तो रिश्ता के हमने अच्छी तरह से निभाएगा सर। मार छोंका भाई नमो सुनी तंग के भूख लगा था हम जाया कौन से खा के आई तब ले सुनाई गीत हुआ राजकमल चिंतामणि गैरवन कमल तरंगिनी 2 एल्बम से मार छोंका। और ये गीत चनी गीता के ओर से रोहन सुरजन के नाम रहरन रिविया जुरों पर सनशाइन के ओर से गपति आशीष और कल्याणी शाम है गीत हरो नाम चलावते सर मिस्टर बूबा है गीत हरो खातिर फिर माला जीवन और मिमी मिमी भी उनके साथ जुड़ल हवन और उनकी सुनते वन और दिखते वन रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर सुनब जा मार छोंका। भाई मार छोंका में कौन कौन जपीज बा, चल एक साथ सुनब जा।

एगो फोबिया एक इच्छा निकाल दे के जब मन में से डर निकाल दे भय निकाल दे तू सकब जिंदगी में आगे बढ़े पर जब ले भय तोहर संगे रही डर तोहर संगे रही तो कुछ नहीं सकब करे और समझदार के इशारा काफ़ी बा। और अगला गाना चंद्रदेव जी बोधन गैलेवन करक बोली ना बोलिया मीठा बोली बोलिया सच्चे कच्चा मीठा बोली बोले के और एक गीत चला दी सर फिनी की ओर से कर घर वाला और कर सब परिवार के नाम फिर विद्या है गीत तो और घर वाला और तो दुगो बेटा के नाम और है गीत तो डॉक्टर पूनम के लिए जो उनके साथ देवतवन रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर है गीत खासम खास तोरों खातिर करक बोली ना बोलिया।

बोली जा सकती माँ बाप के घर में तू राजा हुआ। माँ बाप थोड़ा सब चीज तोहर हाथ में देवेरा, सब कुछ चोरा करके देवेरा, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, माँ बाप के घर में हर सुख सुविधा मिलेगा, कर ले मजा भैया माँ बाप के राज में। काजी ने ऐसा राज मेरी फिर से कि नहीं। हाँ, और माँ बाप जो न बड़ी दुरार से पर निकालों के रखे लन सा है, आगे लिखा नहीं कि बार बार पर निकालों के ठप्पर पर मारे के, ये सब नहीं बा। आजकल माँ बाप अपन निका के बड़िए दुरार से प्यार से पूछे लन सा। बुरा जमाना है भाई, है तो सच्चा है बुरा जमाना बा आजकल। और है कि तो हमने चाहो सब रेजमोशस रेज मनोरंजन के संग चालों के नाम और खास हम खास है गीत चली विद्या की ओर से कर बहिन और जीजाजी खातिर। और है गीतवा चलावत विनोद की ओर से कर भाई और भौजी खातिर। और है गीत चली वीरेंद्र की ओर से रवीना के नाम है गीत, बहुत बहुत प्यार के साथ पूरा जमाना।

एक से एक बेहतरीन भोजपुरी गीत तोहर पसंदीदा कार्यक्रम में भोजपुरी धर का और ही चलता अभी रात के 11 बज रहे और 10 मिनट में प्रोग्राम समाप्त हो जाए और सब कोई के जना अपन जिंदगी अपन तरीका से जिए के और कोई के दुआ नहीं या तो के जज करे के तू जाने रहा तो अपन जिंदगी कैसे जिया था वो हो कि नहीं तेई खाती बोई रहा सर कि जिंदगी त्योहार है और कोई के हक नहीं बा तोहर संगे को लोट डाली के तो अपन जिंदगी जिया जी भर के और प्यार से जिया। जिंदगी चार दिन के भैया कोई के जिंदगी में दखल नहीं करे दिया ये जिंदगी त्योहार है और ऐसे में चला सुनम जाएगी तो सुबह रामचंद्र फकीर गावल गीत दुल्हन के दादी है गीत चलावत राकेश रामचंद की ओर से कर पत्नी और दुगो बेटा सब रामचंद्र परिवार के लिए प्रेम मायों से फिर अमर साधेवत हो नमर है गीत तोहर पत्नी तोहर लेका लुखा देर और है गीत हमें चलावत प्रतिभा की ओर से और बहन ज्ञानती खतेर और को मॉडल के सब भैरव परिवार के नाम रिव्या जी पोसेवन उदय दनी राम और पत्नी बेटा पतो बेटी जामाद फिर भाई अभिलक हवन अभिलक सिंगिंग ग्रुप है गीत और खतेर साथ में प्रीतम राज मिला है गीत तोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ तो चले के साथ सुनम जाएगी तो सुबह फकीर रामचंद गैलेवन सुबह रामचंद फकीर गैलेवन दुल्हन के दादी अब दुल्हन की दादी क्या बोलता है चले एक साथ सुने

हाय रे हमर भौजी सुनन नयन के गावल है गीतवा के संगे भोजपुरी तरह का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता। रात के 9 बजे से अभिलेम के साथ दिला जाए हमके रेडियो पर सुनना, टिकटॉक पर देखला, बहुत बहुत धन्यवाद। और रात के 11 बजे सुन बजा गिनीचा से अगला कार्यक्रम सुनहरे पर, रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तौर के मुलाकात हुई सामने के फजर के 6 बजे से 9 बजे MBC रेडियो मॉरिशस पर 819 किलोहर्ट्ज पर। तब तक हमने की इजाजत अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम, शुभ रात्रि, बाय बाय।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार जी, और गणेशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और शुरू हो चुका है आपका सुनहरे पल। तो आइए लौट चलते हैं उन खूबसूरत दिनों में जब बॉलीवुड के गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल में बसा लिए जाते थे। अगले कुछ घंटों तक साथ रहिए और महसूस कीजिए पुरानी यादों का जादू सिर्फ सुनहरे पल में।
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

0: कभी तो हंसाए।
1: हर गीत एक कहानी है, हर सूर्य की याद है। दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वो अमर बॉलीवुड गीत जो आज भी दिल को छू जाते हैं। तो चलिए मिलकर यादों के इस सफर का आनंद लेते हैं। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बसी होती हैं हमारी जिंदगी की खूबसूरत यादें। तो तैयार हो जाइए सुनहरे पल के साथ, जहां हर नगमा दिल को सुकून देता है और पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं।

कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बसी होती हैं हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत यादें। तो तैयार हो जाइए सुनहरे पल के साथ, जहां हर नगमा दिल को सुकून देता है और पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं।

कुछ और थी दोस्त। और रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में आज भी सजेगी यादों की महफिल, तो साथ बनाए रखे और बस हर एक गाने को आप दिल से महसूस कीजिए।

बॉलीवुड के सुनहरे दौर के लाजवाब गीत, दिल को छू लेने वाली आवाजें और यादों से भरा सफर। बिल्कुल जी, ये सब कुछ लेकर हाजिर है सुनहरे पर, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और अगला गाना हम उन लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे जो शायद इस वक्त काम पे हैं। एंड इफ यू आर वर्किंग राइट नाउ, आपको हम विश करना चाहेंगे बो कोराज माय डियर। तो चलिए, ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, पुरानी फिल्मों के गीत, पुरानी यादें और वही पुराना एहसास। चलिए कुछ पल के लिए वक्त को पीछे ले चलते हैं दोस्त, और अगला गाना हम ऐसे पेश करना चाहेंगे जो हम चाहते हैं कि आप आराम से बैठे, आंखें बंद करके अपने इन खूबसूरत यादों में खो जाइए, उनको याद कीजिए। होंठों पर आम प्रेटी मच्छों की छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट जरूर आएगी। तो ये रहा अगला गाना खासकर आपके लिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. बिल्कुल, इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय. आपको विश करना चाहेंगे टू हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम अहेड, लेकिन बस यूं ही साथ देते रहना ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल. फिर से लौट आएंगे एक और खूबसूरत से शो के साथ. तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Came to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: रेडियो मॉरिशियस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशियस।
1: रेडियो मॉरिशियस
2: रेडियो मॉरिशियस।

0: एमबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: माय दिस इज रेडियो वॉइसेस।
2: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे
1: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे
2: माय दिस इज रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

0: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।
1: This is Radio Voices.
2: निहाओ,
3: अस्सलामुअलैकुम,
4: किमचू मॉरिशियस,
5: नमस्कार,
6: श्रोतलंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कारम,
7: उंगल अनेवरुक्कुम वणक्कम।
8: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

0: एमबीसी रेडियो वजह मुस्कुराने की।
1: माय दिस इज रेडियो वॉइसेस।
2: आप सभी का

0: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: My, this is Radio Marches.
2: अस्सलाम वालेकुम। केम चो मॉरिशियस।

0: MBC Radio, वजह मुस्कुराने की।
1: My, this is Radio Voices.
2: निहाओ,
3: Assalamualaikum.
4: Kim Chumarishes.
5: नमस्कार.
6: श्रोतरंदरी की हृदयपूर्वक नमस्कारम.
7: उंगल अनेवरुक्कुम वणक्कम.
8: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग
1: This is Radio Marches.
2: निहाओ अस्सलामुअलैकुम
3: केमचू मॉरिशियस
4: नमस्कार
5: श्रोतृंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कारम
6: उंगल अनेवरुक्कुम वणक्कम
7: रेडियो मॉरिशियस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: NBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ। 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।
2: भाई सपना, इतने मेहमानों को छोड़कर कहाँ छुप गई? बाहर कब आओगी? जब हम चले जाएंगे तब।

0: MBC रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन
1: रेडियो मॉरिशियस
2: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशियस
1: रेडियो मॉरिशियस
2: रेडियो मॉरिशियस